लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी चाहे ज्यादा लंबी ना हो, पर जितनी भी हो बेहतर हो, जिसमें ईर्ष्या द्वेष वैर भाव ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। आइए सुनते हैं सच्चाई फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कर्म से।

दोस्तों, हम चाहते हैं कि समय धीरे धीरे चले और यहीं पर थम जाए और हम आपके साथ बातें करते रहें, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समय तो अपनी ही गति से चलता है और हमें भी अब जाना होगा। अब भोर सुहानी से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026 सुबह की 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का रहेगा कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का। 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी।

दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। तस्वीर, इस कार्यक्रम को सुनिएगा सुबह 11:10 पर।

12:10 का समय रहेगा आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो कार्यक्रम का घर आंगन। दोपहर 1:10 पर सुनेगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा किसान की बात दोपहर 2:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Nina Raquel. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy, on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. The committee was constituted by Lok Sabha Speaker on 12th August last year. West Bengal government has granted formal sanction for the prosecution of Sandeep Ghosh, former principal of R.G. Kar Medical College and Hospital in Kolkata. The legal action follows an order passed by the Calcutta High Court on 23rd of August in 2024 in the case of Akhtar Ali versus the state of West Bengal and others. The investigation pertains to alleged financial irregularities in various procurements and related matters at R.G. Kar Medical College and Hospital involving Sandeep Ghosh and three other entities. Since these offences fall under the schedule offences listed in the Prevention of Money Laundering Act,

संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान के स्मरण से, इनकी भक्ति से जीवन के संकट टल जाते हैं। आइए मंगल की प्रभात प्रथम वंदन करें श्री हनुमान के चरणों में। अर्पण का भाव लिए मुक्ता है आज आपके साथ। सुप्रभात।

महादेव के त्याग, वैराग्य और आत्मज्ञान को जीवन में उतारना ही भक्ति है। एक भक्त जानता है कि खुशी बाहर की वस्तु नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है। कैलाश का सुकून हो या मृत्यु रूपी शांति, भगवान शिव हर हाल में आनंदित है और यही वैराग्य है।

0: ऐ मन धीरज धर तू, तेरा राखा तेरे साथ है। धीर धरे जो उसके सर पर, सदा हरि का हाथ है। अर्पण का भाव बना रहे, भक्ति के ये कुछ क्षण हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। जुड़े रहिए अर्पण के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग।

0: रंग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
0: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एहमारक संसारी नानक थिर न कोए। एक भक्त जानता है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी कुछ तो नश्वर है, तो फिर चिंता किस बात की। चिंता तो तब हो जब अनहोनी हो, कुछ असंभव हो। सब कुछ तो चलायमान है, इसीलिए मानव हर परिस्थिति में सहज रहे और उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना करता रहे।

एक भक्त हमेशा शुक्राना ही करता है। वो जानता है कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना, हर सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर सब कुछ करने में समर्थ है, क्योंकि वो तो हमारे भीतर काम करने की शक्ति रखता है। परमेश्वर का भय हो या परमेश्वर से प्यार हो, परमेश्वर को किसी ने यार भी मान लिया, यही तो ज्ञान का आरंभ है। बस ये हमेशा हमारे अंग संग है, इसकी रजा में हम रह रहे हैं, तो आनंद के द्वार अपने आप खुल जाते हैं।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: Prime Minister Modi highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. Defence Minister Rajnath Singh has described the Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Singh invited the international community to partner with India for global peace, shared growth and prosperity, while urging the Indian diaspora to contribute to nation building. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal chaired a review meeting in New Delhi on the rollout of the much-anticipated water metro services in the country. He said the centre has advanced plans to roll out water metro services in 18 cities with Guwahati among those identified for phase 1. Cities including Srinagar, Patna, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj are also part of phase 1, while Tejpur and Dibrugarh in Assam have been proposed for phase 2 of the project. Highlighting the initiative, Mr. Sonowal said the proposed water metro systems is significantly less capital intensive as it utilizes existing waterways with minimal civil infrastructure. The Reserve Bank of India has discontinued the requirement for commercial banks to maintain the investment fluctuation reserve, an additional buffer created to protect against depreciation in the value of investments. In a statement, the RBI said the balance available in the fluctuation reserve as of last Sunday will be transferred to the statutory reserve, general reserve or the balance of profit and loss account. West Bengal government has granted formal sanction for the prosecution of Sandeep Ghosh, former principal of RG Corps Medical College and Hospital, Kolkata. The legal note action follows an order passed by the Calcutta High Court on the 23rd of August 2024. The investigation pertains to alleged financial irregularities in various procurements and related matters at RG Corps Medical College and Hospital involving Sandeep Ghosh and three other entities. Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. U.S. President Donald Trump has said he's holding off a planned military strike on Iran after request from the leaders of Qatar, Saudi Arabia and the UAE as serious negotiations are now underway. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद को समझने की होती है। तो जनाब, पहचानिए खुद को, समझिए अपनी ताकत को और कीजिए खुद से प्यार। सुबह की ताजगी करेगी ना आपकी मदद। जी हाँ, क्योंकि ये गोल्ड सुप्रभात है। 7:11 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मुक्ता है आपके साथ सुप्रभात।

जी हाँ, यकीन जानिएगा, अगर खुद को पहचान लेंगे ना तो हो जाएगा खुद से प्यार, क्योंकि आपके अंदर है बहुत खासियत। चलिए आज के तापमान की बात करते हैं। 40 से पार हो चुका है और पूरे सप्ताह 43-44 यही रहने वाला है। आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। खिली धूप रहने वाली है, अच्छी खासी धूप रहने वाली।

लिए तो वाटर इनटेक अपना अच्छा रखिए। सूर्योदय हो चुका है सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त का समय है 7:07 का। दिल्ली की अगर वायु की गुणवत्ता की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है 121। 100 से ऊपर अगर ये जाता है तो खराब की श्रेणी में आता है। लेकिन आप अपनी वॉक मत छोड़िएगा, सुबह जब सैर के लिए निकलें तो पानी साथ लेकर निकलिए। पानी की कमी इन गर्मियों में बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। फिलहाल हवा तो नहीं चला सकती मैं, लेकिन हाँ आपको महसूस जरूर करवा सकती हूँ कि हवा मस्तानी चल सकती है। और ये दिल की तो बात है, मन को अच्छा लगे तो सब अच्छा है।

0: जी हाँ, ये समय तो यूं ही चलता रहेगा, बस डिसाइड हमें करना है कि इस बीते लम्हे को हमने खुशी से बिताना है या फिर तकलीफ के साथ। डिसाइड कर लीजिए। वैसे सुबह का ये वक्त तो पूरी तरह से कहता है हंसते खेलते बिता दीजिए अपने जीवन को। 7:20 और ठीक हुए हैं 25 सेकंड। जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ और सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ बिल्कुल, जिनसे हम प्यार करते हैं बाहर उन्हीं की जैसी होती है। लेकिन हाँ एक रिमाइंडर, आपको याद है कि आप कितने खास हैं, ये बात याद रखिएगा। देखिए हर एक को आदत होती है रोजाना के कुछ कामों की, जो चाय पीते हैं चाय ना पिए तो लगता हो आज कुछ कमी रह गई है। रोजाना कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें किए बिना हमें कुछ कमी लगती है। अब उन्हीं कामों की लिस्ट में इस बात को भी शामिल कर लीजिए कि रोज आपने खुद से कहना है कि बहुत खास है आप। अगर अभी तक आपने नहीं कहा है तो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, आईना देखिए और देख कर कहिए बहुत खूबसूरत हैं आप।

जी हाँ, आप महफूज रहें हर बला से, आप रहें खुश और दूसरों को भी रखें खुश। इसी कामना के साथ फिलहाल गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम को करते हैं यहीं समाप्त। और अब समय हो चला है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। आपसे मैं मिलती हूँ ना म्यूजिकल दिल लगी लिए 8:45 पर। आइए सुनते हैं अब आज सवेरे।

0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग मनोज। माया एंजेलो सेज नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन्स फ्रॉम विद इन। द पावर इज इन योर थॉट्स एंड द लाइट इज इन योर हार्ट टू मेक टुडे अ मीनिंगफुल वन। With that thought, Manoj, we welcome our listeners to a brand new and bright morning into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we bring the morning vibes to give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 19th of May 2026. Let's begin with the news headline.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत विकास गति, जनसांख्यिकी लाभांश, प्रतिभाशाली युवाओं, सुदृढ़ व्यापार प्रथाओं, निवेश अनुकूल नियामक ढांचे और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना का उल्लेख किया। श्री मोदी ने भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नॉर्वे के अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा निवेश, समुद्री डीकार्बोनाइजेशन, महासागर स्थिरता और जलवायु वित्त में नॉर्वे के वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में आई तेजी को शिखर सम्मेलन में चिन्हित किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और नॉर्वे की कंपनियों और संस्थाओं के बीच कई व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उच्च स्तरीय व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन से पहले ओस्लो में विभिन्न स्थानों पर 4 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सत्रों में स्वास्थ्य सेवा में नवाचार, समुद्री सहयोग, बैटरी और

0: ऊर्जा भंडारण प्रणाली, डिजिटलीकरण और विद्युतीकरण तथा पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
1: On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy, on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries, and members of the Indian diaspora in Italy have welcomed the visit. Foreign-born first Padma Shri awardee artist and renowned Odissi dancer Ileana Sitharisthi said the visit reflects the strong cultural bond between India and Italy. Diaspora members Vijay Topo and Vichitra Singh said stronger cooperation in technology and dairy sectors could create new opportunities for Indian youth.
2: हमारे प्रधानमंत्री का यहाँ आना यह हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, खुशी की बात है। विशेषकर भारतीय जो यहाँ रहते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना यहाँ पर एक न केवल पॉलिटिकल रिलेशनशिप को बढ़ाएगा, साथ साथ ये मानवीय और कल्चरल रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा।
3: मेरा नाम विचित्र सिंह है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझको यहाँ इटली में रहते हुए 25 साल हो गए। मैं शुरू से ही डेयरी फार्म में जॉब कर रहा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं इटली में, तो जैसे जानकारी है कि वो इसी सेक्टर में और कुछ और सेक्टर में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके जाएंगे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है।
1: Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. The committee was constituted by Lok Sabha Speaker on 12th August last year. Presiding Officer of Judges Inquiry Committee, Supreme Court Judge Justice Arvind Kumar, along with Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Sri Chandrasekhar, and Senior Advocate Karnataka High Court, B.B. Acharya, presented the report of Judges Inquiry Committee to Mr. Birla.
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। सरकार ने उस यूट्यूब वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा भ्रामक है। जांच इकाई ने बताया कि भारत के पास लगभग 60 दिनों के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। जांच इकाई ने बताया कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है और ईंधन आपूर्ति की स्थिति स्थिर, सुरक्षित और लगातार निगरानी में है। जांच इकाई ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घबराए नहीं और ईंधन तथा गैस की उपलब्धता के संबंध में केवल सरकारी सूत्रों द्वारा जारी जानकारी पर ही भरोसा करें।
1: Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal chaired a review meeting in New Delhi on the rollout of the much-anticipated water metro services in the country. He said the centre has advanced plans to roll out water metro services in 18 cities, with Guwahati among those identified for Phase 1. Cities including Srinagar, Patna, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj are also part of Phase 1, while Tezpur and Dibrugarh in Assam have

0: been proposed for phase two of the project. Highlighting the initiative, Mr. Sonawal said the proposed water metro system is significantly less capital intensive as it utilizes existing waterways with minimal civil infrastructure.
1: आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। और अब आपको महानगरों का हाल बताते हैं, शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों से। पहले दिल्ली की खबर। भारतीय संत महापरिषद का वैश्विक सम्मेलन कल नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाना, सभ्यतागत एकता को आध्यात्मिक संवाद से जोड़ना और भारत में निहित साझा परंपराओं के माध्यम से भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार करना था। सम्मेलन के दौरान संतों ने भारत भर में संस्कार केंद्रों की स्थापना पर चर्चा की। इसके अलावा सम्मेलन में भाग लेने वालों ने भावी पीढ़ियों के लिए भारत की आध्यात्मिक और सभ्यतागत विरासत के संरक्षण पर बल दिया। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली नगर निगम MCD ने करोल बाग जोन में धूल नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने और प्रमुख लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर स्वच्छता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए 15 दिवसीय धूल मुक्त सड़क अभियान शुरू किया है। ये अभियान निरंतर मशीनों द्वारा सड़क सफाई, मैनुअल सफाई और बड़े पैमाने पर धूल हटाने की गतिविधियों के माध्यम से सड़कों को नो डस्ट स्थिति में बनाए रखने पर केंद्रित है। इस सफाई अभियान में MRS मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर, ASG पानी के टैंकर, ऑटो टिपर और साथ ही 40 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़क मार्गों की नियमित निगरानी, कचरे का त्वरित उठान और निरंतर रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि दीर्घकालिक धूल नियंत्रण और बेहतर सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।
0: Moving over to Chennai, the Tamil Nadu government carried out a major reshuffle in several departments including municipal administration, energy, transport, water, resources and Greater Chennai Corporation and Chennai Metropolitan Development Authority. Gagandeep Singh Bedi has been transferred and posted as additional chief secretary to government municipal administration and water supply department. Dr. G.S. Samiran has been appointed as commissioner of Greater Chennai Corporation, replacing J. Kumar Guru Baran. Satya Brata Sahu has been transferred as Principal Secretary to Government Youth Welfare and Sports Development has been transferred to Government Water Resources Department. P. Amuda, Additional Chief Secretary, has been posted to Government Corporation Food and Consumer Protection.
1: Ab Mumbai, Maharashtra ki khabar. Maharashtra Awas aur Vikas Pradhikaran MHADA ke Mumbai Board ne 2640 फ्लैटों के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इन फ्लैटों को 30 मार्च 2026 को बिक्री के लिए पेश किया गया था। सोमवार को मुंबई से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब आवेदन 28 मई 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉटरी में शामिल कन्नमवार नगर विक्रोली पूर्व परियोजना के 1221 फ्लैटों में से MHADA ने बताया कि 610 फ्लैट अब विशेष रूप से उच्च आय वर्ग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। बोर्ड ने बताया कि अब तक 78,976 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि आवेदनों के अंतिम सूची 10 जून को प्रकाशित की जाएगी जबकि अंतिम सूची 16 जून को MHADA की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। फ्लैटों की बिक्री के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ की तारीख, स्थान और समय की घोषणा बाद में की जाएगी। महाराष्ट्र मुंबई की एक और खबर। महाराष्ट्र सरकार ने 6 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 993 करोड़ 72 लाख रुपए की फंडिंग की मंजूरी दी है। इन स्थलों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, देहू में संत तुकाराम महाराज जन्म स्थान, सतारा में

0: intention of the government will be marked by handing over title deeds of properties to 1.52 lakh beneficiaries at a public event to be held in Tumkuru tomorrow. The opposition party BJP in the state has criticized the government for holding the event when scores of farmers are committing suicide in the state. The leader of the opposition, R. Ashoka, charged that the convention is organized by misusing the tax money of the people. Vishveshwaraya Technology University of Karnataka has joined hands with Newski Company to train their engineering students with a DGCA remote pilot certification to procure a drone license. The Directorate General of Civil Aviation, DGCA, issues the drone license for the trained engineers. This one-week training will help them to operate drones.
1: अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान कोलकाता में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जन स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल उपस्थित थे। अपने वीडियो संबोधन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन को पूरी मुस्तैदी के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत हर घर को पाइप से पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को भी पाइप से पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।
0: News from Hyderabad. Oil marketing companies in Telangana have confirmed that petrol, diesel and cooking gas supplies are sufficient and stable across the state. There is no shortage of any fuel product anywhere. The companies said they are closely monitoring supply and improving delivery systems. During the first half of May, petrol supplies increased by 14.2% and diesel supplies went up by 15.7%.
1: और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। राजधानी दिल्ली में आज लू चलने और दोपहर बाद और शाम को तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: Weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between minimum of 29 degree and a maximum of 40 degree Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 19 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
0: इन
1: स्पेनिश विजेता मिगुएल लोपेज डी लेगाजपी ने मनीला शहर की स्थापना की। इसे स्पेनिश ईस्ट इंडीज की राजधानी घोषित किया गया।
0: In 1743, French scientist Jean-Pierre Christin developed the Lyon thermometer, introducing the centigrade scale based on the freezing and boiling points of water.
1: 1780 में आज ही के दिन न्यू इंग्लैंड का काला दिन तब हुआ जब दोपहर के समय अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा गया। इसकी वजह संभवतः बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग और घना कोहरा था।
0: In 1862, President Abraham Lincoln signed the Homestead Act, allowing citizens to claim 160 acres of surveyed government land. And in 1919, Mustafa Kemal

0: Of Turk landed at Samsun, launching the Turkish War of Independence and beginning the creation of modern Turkey.
1: 1911 में आज ही के दिन डोमिनियन पाक्स ब्रांच या पाक्स कनाडा की स्थापना हुई, जिससे ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान सेवा संगठन बना। 1950 में आज ही के दिन मिस्र ने इसराइली जहाजों के लिए स्वेज नहर बंद कर दी, जिससे पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया।
0: In 1959, the North Vietnamese Army established Group 559 to build and maintain the strategic Ho Chi Minh Trail.
1: 1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपना पहला पनडुब्बी बेस INS वीर बाहु शुरू किया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
0: Frederick Ogden Nash was an American poet well known for his light verse, of which he wrote more than 500 pieces. With his unconventional rhyming schemes, he was declared by the New York Times to be the country's best known producer of humorous poetry. If that doesn't make you smile, I'm sure this poem by Ogden Nash will sprinkle some humor to make your morning bright.
2: How wise I am to have instructed the butler, to instruct the first footman, to instruct the second footman, to instruct the doorman to order my carriage. I am about to volunteer a definition of marriage. Just as I know there are two Higgins, Walter and Copen, I know that marriage is a legal and religious alliance entered into by a man who can't sleep with the window shut and a woman who can't sleep with the window open.
1: आज पुण्यतिथि है विजय तेंदुलकर की। उनका जन्म 6 जनवरी 1928 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका नाम आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में अग्रणी है। 5 दशक से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंगमंच और फिल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियां और उपन्यास भी लिखे। विजय तेंदुलकर ने 50 से भी अधिक नाटकों की रचना की है। हिंदी में उनके 30 नाटकों का अनुवाद और मंचन किया जा चुका है। खामोश अदालत जारी है, गिद्ध, सखाराम बाइंडर, जात ही पूछो साधु की, घासीराम कोतवाल, कन्यादान, कमला आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर की जो छवि नाट्य जगत में स्वीकृत हुई, वो मराठी नाटककार की ही सीमा में बंधकर नहीं रह सकी। निशांत आदि कई समानांतर सिनेमा आंदोलन से जुड़ी फिल्मों की पटकथा उन्होंने लिखी। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में उनका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव आदि से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे का संवाद।
3: आरोपी मिस लीला बेनारे, तुमच्यावर ठेवण्यात आलेला आरोप तुम्हास मान्य आहे की अमान्य?
4: तुमच्यावर तो ठेवला तर तुम्ही मान्य कराल।
3: ऑर्डर ऑर्डर, कोर्टाचा आदर कोणत्याही परिस्थितीत राखला गेला पाहिजे।
5: कोर्टाचं काम
4: की भ्रूण हत्येचं कामकाज, त्यापेक्षा तुम्ही माझ्यावर सार्वजनिक मालमत्तेच्या अपहाराचा का नाही आरोप?
0: टुडे इज द बर्थडे ऑफ अ बॉन्ड, Ruskin Bond, the bond of words and books in the literary sense. Lovingly addressed as Rusty, he is an Indian author and poet. Bond has authored more than 500 short stories, essays and novels, which include 69 books for children. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dera. He was awarded the Padma Shri in 1999, Padma Bhushan in 2014. He attended Bishop Cotton School in Shimla, graduating in 1951. There he won several writing competitions, including the Irwin Divinity Prize and the Haley Literature Prize. He has written essays and novels including The Blue Umbrella, Funny Side Up, A Flight of Pigeons and more than 50 books for children. Coming from Rusty, every word is a pearl of wisdom to be remembered and be joyous and happy. His books are a delightful, unputdownable read. His style may be simple but carry the depths of the most sought after thing of called happiness. So let's hear from the bond.
6: As I walked home last night, I saw a lone fox dancing in the bright moonlight. I stood and watched, then took the low road, knowing the night was his by right.

0: Sometimes when words ring true, I'm like a lone fox dancing in the morning dew.
1: आज पुण्यतिथि है शंभु मित्रों की। उनका जन्म 22 अगस्त 1915 को हुआ था। वे रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे। उन्हें मुख्य रूप से बांग्ला थिएटर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1939 में व्यावसायिक रंगमंच में प्रवेश किया। 1948 में उन्होंने मनोरंजन भट्टाचार्य के नेतृत्व में बहुरूपी नामक रंगमंच मंडली की स्थापना की। 1949 से 1971 तक बहुरूपी ने उनके निर्देशन में रविन्द्रनाथ टैगोर, सोफोक्लीज, हेनरिक इप्सन, तुलसी लाहिड़ी और अन्य प्रमुख नाटककारों की रचनाओं का मंचन किया। शंभु मित्रा को उनकी फिल्मों धरती के लाल और जागते रहो से विशेष तौर पर पहचान मिली। उन्हें पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका कविता पाठ।
2: हवा बय शनशन तारारा कांपे, हवा बय शनशन तारारा कांपे, हृदय की जंग धरे पुरोनो खापे, कार चूल एलो मेलो किवा ताते एलो गेलो, कार चोखे कत जल केवा ता मापे, हृदय की जंग धरे पुरोनो
3: खापे। सिद्धार्थ Sid Sriram is an Indian Carnatic musician, music producer, playback singer. He's an R&B songwriter and has been working in the Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Marathi and English music industry. He regularly collaborates with his sister Pallavi Sriram, a Bharatnatyam dancer and music director. Let's listen to this melodious song sung by Sid Sriram.

0: आज जयंती है गिरीश कर्नाड की। उनका जन्म 19 मई 1938 को माथेरान महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे। उन्होंने हिंदी में उत्सव, मंथन, इकबाल, डोर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में काम किया। उनके लिखे नाटकों में ययाति, तुगलक, है वदन, अंजू मल्लिगे, अग्निमतु, माले, नागमंडला, अग्नि और बरखा आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए सुनते हैं उनकी अंतिम फिल्म टाइगर जिंदा है का संवाद।
1: विच इज नॉट जस्ट एक्शन ओरिएंटेड बट विच ऑल्सो गिव्स स्कोप फॉर थॉट, फॉर इमोशन, यू नो, टू एक्सप्लोर द होल सिचुएशन, नॉट मेयरली इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर एंड इमोशन, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस। दैट प्रॉब्लम हैड बीन ब्रोकन फॉर मी विद दैट स्टोरी बाय थॉमस मॉन ऑलरेडी, सो इट वॉज अ मच इजियर प्ले टू राइट। ऑल्सो द फॉर्म वॉज सिंपलर।
2: हेलो
3: Independence Day Mubarak, sir.
2: तुम्हें मालूम था कि अगर उस दिन तुम हमारे साथ निकलते तो रॉ तुम्हें कभी नहीं छोड़ता।
3: लेकिन एक बात याद रखिए सर, कि अगर देश को कभी भी मेरी जरूरत पड़े।
0: आज जन्मदिन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, सिद्दीकी का। उनका जन्म 19 मई 1974 को बुढ़ाना, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का प्रशिक्षण और अध्ययन करने के बाद सिद्दीकी ने सरफरोश, शूल और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। आइए सुनते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म मंटो का संवाद।
4: नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।
0: और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की।
5: हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।
6: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्वे

0: एक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे।

0: यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में

0: वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद यह छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at 3rd India-Nordic

0: यूरोप के सभी पांच मुल्कों के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने, बढ़ती हुई तवानाई की जरूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तहत अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेजी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीकेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाल यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभाजाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। यह सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज दो रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाकवामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें की। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निजाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता।

0: सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है, जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मुशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की जरूरत खत्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ्फुज़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मंसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतालिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफे अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युवावाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यह जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी।
1: जी हाँ, एक लंबी यात्रा, और इस यात्रा में बहुत से महान कलाकारों की ढेर सारी यादें। ये है आकाशवाणी का सफर जिसने भविष्य की यात्रा को सुरीला और सरल बनाने की कोशिश की, और इसी कोशिश के तहत म्यूजिकल दिल लगी आज लेकर आई है मंगल की मुक्ता 8:47 और ठीक 55 सेकंड पर।

0: हर रोज आज। जी हाँ, और ये आज का प्यार बना करके रखिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनाब, हमारी एक लाइफ है और उसे जीने का हमारा एक स्टाइल। हमने डिसाइड किया हुआ है कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है और कितना स्ट्रेस लेना है। लेकिन आप जानते हैं, ये डिसीजन कुछ लोगों का गलत हो रहा है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार हम में से 50% लोगों का ये लाइफस्टाइल उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन चेक करते हैं और फिर घंटों कब निकल जाते हैं मालूम नहीं। सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर ऑफिस या दुकान पर जाते हैं तो घंटों कुर्सी से चिपके रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलो ऑर्डर कर दिया जाए कुछ बाहर का, या फिर हो जाए एक एक कप चाय। अब यही लाइफस्टाइल है बीमारी का घर। करना पता है क्या है? थोड़ा सा अलर्ट होना है। एक ताजा शोध कहती है कि जादुई सॉल्यूशन के साथ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यानी रिसर्च के अनुसार रोज अगर आप

11 मिनट भी तेज चलते हैं यानी ब्रिस्क वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो बीमारियों का खतरा आप कई गुना तक कम कर सकते हैं सिर्फ 11 मिनट। तो करें ना कोशिश, बस 3 छोटे से बदलाव। लिफ्ट की जगह सीढ़ी का प्रयोग, रात को 10 से सुबह 6 तक यानी तकरीबन 7-8 घंटे की पूरी नींद। जंक फूड को कहना है बाय और होममेड फूड को कहना है हाय। जी हाँ, याद रखिए दवा से बीमारी संभलती है लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल से हमारी पूरी जिंदगी संवर सकती है।

ऐसा ही कोई साथ जीवन में बना करके रखिएगा और संगीत को साथ लेकर चलिएगा, देखिए कितना हल्का होगा जीवन। 8:59 और ठीक 25 सेकंड हो चले हैं और अब समय है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। म्यूजिकल दिल्लगी की यात्रा समाचारों के बाद नाज आपके साथ रखेंगे जारी। मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के

0: निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस होकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 98.64 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये प्रति लीटर हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai. और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदल

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंगली ब्यूटिफुल एंड हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज, लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल्ली की

जहां ढेर सारी बातों के बीच माहौल होगा म्यूजिकल दिल लगी वाला, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है म्यूजिकल दिल लगी। और मैं पूछूंगी आपसे आज का सवाल भी, तो जुड़े रहेंगे मेरे यानी नाज के साथ और एंजॉय करेंगे फिलहाल प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग। फिर जल्दी से लौट कर आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए।

लेकिन बस एक शर्त पर, न घड़ी तुम पहनोगे और न वक्त हम देखेंगे। अब देखिए, वादा आपसे कर दिया है मैंने, तो स्टूडियो की घड़ी तो अब मैं नहीं देखूंगी, लेकिन हाँ, आज का सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, जिसका जवाब आप मुझे लिखकर भेजेंगे। कहाँ और कैसे आप सभी जानते हैं वैसे, लेकिन अगर आपका हमारा साथ है अभी नया, या फिर गलती से भुला दिया गया हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर, तो मेरा फर्ज है आपको याद दिलाना। fmgoldair@gmail.com पर करेंगे ईमेल, या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868686853 पर। और अब कानों के साथ साथ अपने ध्यान को भी पूरी तरह से मेरी तरफ लगाइएगा और जल्दी से मुझे बताइएगा कि कौन सी थी वो तारीख और कौन सा था वो साल जब आपका अपना प्यारा FM गोल्ड अस्तित्व में आया। जी हाँ, आज का सवाल है यही कि आकाशवाणी के तहत FM गोल्ड की शुरुआत कब हुई थी, ये आप मुझे बताइए। और साथ में एंजॉय करिए ये अगला ट्रैक। और हाँ, गुजारिश मेरी ये है आप सबसे कि अगर पैर थिरकना चाहें इस गाने पर, तो उन्हें रोकिएगा मत, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत डांस भी कर लीजिए मेरी तरह।

अच्छा, टेम्परेचर क्या है आज का, ये मालूम है आपको? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अभी है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो दोपहर में 44 डिग्री तक जाने का अंदाजा है, और रात तक 31 डिग्री तक ही गिरेगा। जी हाँ, बारिश की संभावना है 0% और मौसम रहेगा पूरी तरह ड्राई और एरिड, माने शुष्क। यानी गर्मी भरपूर है, तापमान का अनुमान तो यही बता रहा है। और एक खास बात बताऊं आपको, जिस तापमान को खुद पर इतना हो रहा है अभिमान, उसे नापने का हथियार हमें आज ही के दिन मिला था। जी हाँ, आज यानी 19 मई ही वो तारीख है जब तापमान यानी टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटीग्रेड पैमाने को विकसित किया गया था। और साल था वो 1743, जब फ्रेंच वैज्ञानिक जीन पियरे क्रिस्टीन ने ये कारनामा कर दिखाया था। और इसी वजह से आज की तारीख विज्ञान की दुनिया में आम से खास हो गई। पानी जब आइस बन जाए, वो पॉइंट डिसाइड हुआ 0 डिग्री, और जिस पॉइंट पर जाकर पानी उबलकर भाप में बदलने लगे, वो डिसाइड हुआ 100 डिग्रीज। और क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन जानेंगे, मगर पहले एक और गाना सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी के आज के पिटारे से।

जी हाँ, बिल्कुल कतरा कतरा ही मिलती है जिंदगी, जिसे जी भर के जी लेना चाहिए। और कुछ गिले शिकवे हो भी जाएं कभी, तो उन्हें दिमाग में भले ही कुछ वक्त के लिए जगह दे दें, लेकिन दिल में बिल्कुल स्पेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दिल बड़ा नाजुक होता है जनाब। इसमें वही यादें और वही बातें स्टोर कीजिए जो आपको खुशी देती हैं। ये आपको मेरी राय है। और फिलहाल मेरी दरख्वास्त आपसे ये भी है कि आप सभी अपने फोन अपने बिल्कुल पास रखें, एकदम नजरों के सामने, क्योंकि आप में से किसी एक लिसनर को जाएगी फोन कॉल और जिसके जरिए आप जुड़ेंगे सीधा मेरे साथ और फिर हम करेंगे बातें एकदम सीधे सीधे। हाँ जी, बस शर्त इतनी सी है कि आज के सवाल का सही जवाब आपने भेजा हो अपने नाम, शहर और बिल्कुल सही फोन नंबर के साथ। सवाल क्या है आज का, दोहरा देती हूँ आपके लिए। बताएंगे आपकी आकाशवाणी के तहत आपके हर दिन के साथ ही यानी FM गोल्ड की शुरुआत कब हुई थी, कौन सी थी वो तारीख और कौन सा था वो साल, ये बताना है आपको। और भूलिएगा मत, अभी सुनिए ये अगला गाना। बैठे हैं तो खड़े हो जाइए और खड़े हैं तो डांस करिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31

0: मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम, जहां मैं यानी के नाज हूँ आपके साथ और आपको बता रही हूँ आज के दिन यानी 19 मई के बारे में। तो भाई आज है वर्ल्ड फेयर प्ले डे, हिंदी में बोलें तो विश्व निष्पक्ष खेल दिवस है आज, जिसे मनाने के पीछे मकसद है खेल जगत में ईमानदारी, सम्मान, दोस्ती और एकजुटता के साथ साथ खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप को बनाए रखना। 7 सितंबर साल 2020 से ब्रुसेल्स में इसकी शुरुआत हुई थी और खेल संगठनों ने इसकी शुरुआत की थी। फिर जुलाई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 19 मई यानी आज की तारीख को ऑफिशियली वर्ल्ड फेयर प्ले डे यानी विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। जीत की अंधी दौड़ से ऊपर उठकर सभी खिलाड़ी ईमानदारी से खेलें और खेल के सभी नियमों का पालन करें, ये संदेश आज का दिन हमें देता है। और इसी के साथ खेल के मैदान में किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना होने पाए, ये भी आज का दिन हमें याद दिलाता है। और वैसे याद तो आपको ये अगला गाना भी होगा, क्योंकि हम आपको भूलने ही नहीं देंगे।

सुख और दुख, ये तो मन के विकल्प हैं। सुखी वो है जिसका मन उसके वश में है, और दुखी वो जिसका मन परवश है, यानी किसी और के वश में है। और इसी जीवन में प्रेम एक पवित्र अपवित्रता है, ये जिसे छू दे उसे मर्यादा से पार ले जाता है, और फिर भी ये अमर्यादित नहीं होता। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक और श्रेष्ठ शोधकर्ता रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी ये चंद लाइनें थीं जो मैंने आपके लिए पढ़ी, और वाकई जीवन का सार एकदम सटीक। लेकिन साधारण भाषा में जानना हो तो जरूर पढ़िए इन्हें। आज यानी 19 मई को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्मृति दिवस है, और साथ ही एक अवसर है हिंदी साहित्य को दिए उनके योगदान को याद करने का। कबीर और तुलसीदास जैसी महान विभूतियों के गहरे जानकार आचार्य जी माने जाते थे, और हिंदी गद्य को एक आधुनिक दिशा देने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। मशहूर उपन्यासों में शामिल है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा। इसके अलावा निबंधों की अगर बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और आलोक पर्व आप पढ़ेंगे तो ज्ञान दर्शन और अपनी आम सी जिंदगी के बीच एक अनोखा तालमेल आप महसूस कर पाएंगे। जैसे ये अगला गाना, ये भी तो कुछ यही बताता है।

0: सांस्कृतिक विरासत को संजोना, साथ ही उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन बनाना। और अब बारी है आज का सवाल। मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं और साथ ही बताऊं उसका सही जवाब भी। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे पूछा था कि आकाशवाणी के तहत FM गोल्ड की शुरुआत कब हुई थी। कुछ लोगों ने जवाब लिखकर भेजा है 15 अगस्त। जनाब, साल तो ठीक लिखा है आप सभी ने, लेकिन तारीख गलत है। अब आप कहेंगे जी इंटरनेट पर तो यही दिखा रहा है। थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो एक और तारीख आपके सामने आएगी, जिसे भी कई लिसनर्स ने लिखकर भेजा है। उनके मैं जल्दी से नाम शामिल कर लेती हूँ। नवीन भाटिया मोतीनगर नई दिल्ली से आज भी इन्होंने बाजी मारी है और सबसे पहले सही जवाब लिखकर भेजा। अरुण अरोड़ा दिल्ली से, अनिल त्यागी उद्योग कुंज गाजियाबाद से, राजेश खेतु, प्रकाश जोगिया दिल्ली से, सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, राजा दिल्ली से, अनु बड़जात्या मुंबई से, धीरज यादव गुरुग्राम से, महावीर खत्री गुरुग्राम से, सतीश घनाटे मुंबई से, SK खन्ना गुरुग्राम से, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से ही, भगवान सूर्यवंशी हिंगोली महाराष्ट्र से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा से, सत प्रकाश गोयल रोहिणी दिल्ली से, पंकज मोहोड अमरावती महाराष्ट्र से, संतोष सक्सेना वीरेंद्र गांधी सुनील तुपतेवार, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, मनीषा साखर दांडे जबलपुर मध्य प्रदेश, रामकृष्ण घोटीकर नवी मुंबई से, लीलाधर सोनी आशीष गायकर अशोक विद्यार्थी प्रकाश गोया मधु किरण दिल्ली से। देखिए कितने सारे नाम थे और मुझे बहुत ही खुशी हुई इन सभी नामों को कार्यक्रम में शामिल करके। और सवाल का जवाब क्या है? जी हाँ, साल आप सभी ने सही लिखा है, साल था 2001, लेकिन तारीख क्या थी? ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको बताएंगे सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम टू म्यूजिकल दिल्लगी।
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सिस्टर जी।
0: जी सर, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताइए।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमेशा ही प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है
0: जी,
1: और यकीनन प्रोग्राम के साथ बने रहते हैं हम।
0: चलिए बातें आगे बढ़ाएं, उससे पहले दीजिए आज के सवाल का सही जवाब क्या है।
1: आज का सवाल का सही जवाब है जी 1 सितंबर 2001।
0: बिल्कुल सही जवाब, 1 सितंबर 2001 को हुई थी FM गोल्ड की शुरुआत। तब से ही है हमारे साथ या कब से नाता जुड़ा है?
1: आकाशवाणी गोल्ड से तो करीब मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी,
1: और वैसे आकाशवाणी केंद्रों के साथ मैं ऐसे लगा लूँ 1978 से जुड़ा हूँ।
0: अच्छा,
1: और जुड़ा गया, हम तो पूरी शिद्दत से जुड़े हुए हैं।
0: अरे वाह,
1: खुद को समर्पित कर चुके हैं आकाशवाणी को।
0: अरे वाह, तो कौन कौन से प्रोग्राम पसंद करते हैं कुछ बताइए कि कैसे दिन शुरू होता है और कैसे आकाशवाणी आपके दिन का साथी बन जाता है?
1: बस सुबह जब उठते हैं, सुबह का आगाज होता है बड़े अच्छे अच्छे
0: जी,
1: कई ऐसे आकाशवाणी केंद्र है वहाँ जो सुगम संगीत चलते हैं, भजन चलते हैं
0: जी,
1: तो ऐसा लगा लो दिमाग में बड़ी सकारात्मक सोच सी आती है, उस टाइम सारा दिन ही बहुत अच्छा रहता है।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे ये म्यूजिकल दिलगी भी सुनते हैं, चूरू के भी प्रोग्राम सुनते हैं, इंद्रप्रस्थ का भी चैनल शुरू हो जाएगा।
0: ओके,
1: तो लगभग जितनी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
0: अच्छा,
1: आज जो भी हम किसी से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, तो ये रेडियो से सुन सुन के हमें काफी ऐसा जो सीखने को कुछ मिला है। तो मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे को 10,000 की भीड़ के अंदर भी बोलने के लिए स्टेज पे खड़ा कर दो तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ।
0: अरे वाह सर, वो तो पता लग ही रहा है। और खास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, मुझे याद आ रहा है कि कविताएं आप बहुत अच्छी लिखते हैं और
1: ये बिना सब ये मोहब्बतों के सिलसिले हैं, क्योंकि हम रेडियो से प्यार करते हैं
0: जी जी जी,
1: तो ये अल्फाज जो है ना, ये एक मोहब्बत के रूह से निकलते हैं, जो हम उसको अपनी कलम के जरिए लिख के और आपको भेज देते हैं
0: जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें भी आपकी कविताओं को, आपके विचारों को पढ़कर, और एक जोश बढ़ जाता है कि अगला शो और भी अच्छे से करना है और आपको खुश करना है। और सर, अब जैसे कि आज के सवाल की हमने बात की और आकाशवाणी की हम बात कर रहे हैं, 90 साल पूरे हो गए हैं, और क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले भविष्य को लेकर, और किस तरह से देखते हैं आप कि आकाशवाणी और आने वाली जनरेशन को किस तरह से अपनी तरफ खींचे, और आने वाली जनरेशन को भी किस तरह से रेडियो की तरफ देखना चाहिए?
1: जी, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं और सभी श्रोताओं को भी और जितने भी प्रेजेंटर लोग जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं सबको।

0: अनंत शुभकामनाएं दूंगा
1: जी। बहुत बहुत
0: पिछले जो बिल्कुल जी पिछले 90 साल का सफर बहुत अच्छा रहा आकाशवाणी का
1: जी।
0: एक वक्त था जब रेडियो दीवार पर रख के सुना जाता था और चार घरों में सुनाई देता था, वो भी एक दौर था
1: जी।
0: और आज चलो हमें थोड़ी सहूलियत मिल गई है, हम किसी भी देश में रहे तो ऐसे लगा लो भी बिल्कुल FM गोल्ड के साथ ही है। अगर हम अमेरिका में बैठे हैं तो FM गोल्ड हमारे बिल्कुल साथ है, अंग संग हो गया, हमारा हम सफर बन गया एक ऐप के जरिए। तो बस मैं तो यही कहूंगा क्योंकि आकाशवाणी ने पहले भी हमें हमारे रिश्ते ऐसे मजबूत कर दिए हैं, क्योंकि श्रोताओं के प्रति और जो प्रेजेंटर है उनके प्रति ऐसे रिश्ते बन गए हैं। तो मैं तो हमेशा पहले भी बोला करता हूँ कि ये खून के रिश्ते जो पीछे हो गए हैं ये जो रेडियो की आवाज के जरिए जो रिश्ते बने हैं ये बहुत अच्छे हैं और बहुत मजबूत हैं
1: जी। बिल्कुल
0: जिनका पता ही लगता है सुबह दिन किधर से निकला है, किधर से शाम को निकला है, आपने छुप रहा है। तो ये हम सारे दिन रेडियो की बातें करके हमने ग्रुप भी बना रखे हैं।
1: अच्छा।
0: तो आपसी बातें करना, उसमें हंसी मजाक करना, किसी का सुख दुख में शामिल होना।
1: अच्छा।
0: किसी के लिए कोई तकलीफ है उसके लिए दुआ भी करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है सर ये। और अब चलते चलते आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: गाने से पहले ये बताऊंगा अभी आने वाले जो आगे साल आएंगे उसके लिए मैं ये मेरी दिल से दुआ रहेगी
1: जी,
0: मैं उसके लिए सजदा करता हूँ।
1: अच्छा।
0: ये पहले जैसे जैसे आकाशवाणी का सफर अच्छा रहा, ये आने वाले आकाशवाणी के सब दिन और भी अच्छे होंगे और हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे और नए नए परिवार नए नए श्रोता इसमें जुड़ेंगे और आप लोगों की जी मधुर वाणी है मिठास है ये सब उसके सदके होता है, इसका क्रेडिट और श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत करता गुजरता है
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा। आप तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: बस आज आप लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम जी ने बहुत प्यारा गीत गाया और मेरा तो बड़ा फेवरेट सॉन्ग है।
1: अच्छा।
0: मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो गाड़ी में 3 बार तो रस्ते में ये गीत जरूर सुनता हूँ, नी में यार मनाना नी,
1: ये नी में यार मनाना नी जी। वाकई बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है,
0: चाहे लोग बोलियां बोले।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम तो आपको ये गाना सुना कर रहेंगे और हम सब भी सुनेंगे और साथ ही खूब एंजॉय करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहना, आपको आपने मेरे से रूबरू बात की और शहर में आपसे हम गोल्ड पे पहली बार बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगा लो भी आपने मेरा दिन बना दिया और इसका जो सुकून है इसका जो नशा है आने वाले काफी टाइम तक मेरे को रहेगा।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद।
1: तो ये थे सतीश जी हमारे साथ जुड़े और मैं सुनाऊं इनका फेवरेट सॉन्ग। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि म्यूजिकल दिल लगी का सफर अब अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनेंगे देश और दुनिया से जुड़े समाचार हिंदी और अंग्रेजी में और फिर ठीक 10:30 बजे रहिएगा तैयार, दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा और रहेगा आपका इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के

0: माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arkel. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion and the consequent creation of 1 million jobs in India.
0: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: On the second day of his visit to Norway, Prime Minister Modi, along with his counterparts from 5 Nordic countries, will attend the 3rd India-Nordic Summit in Oslo today. The summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since a previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc is currently at $19 billion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the 3rd India-Nordic Summit. On the last leg of his five-nation visit, Mr. Modi will arrive in Rome, Italy on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with the Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. The committee was constituted on August 12 last year by the Lok Sabha Speaker to inquire into allegations against former High Court Judge Justice Yashwant Verma. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. The West Bengal government has sanctioned the Enforcement Directorate ED to prosecute Sandeep Ghosh, former principal of RG Kaur Medical College and Hospital. The official government order released by Chief Minister Suvendu Adhikari clears the deck for ED to prosecute Ghosh for alleged financial irregularities and money laundering. Petrol and diesel prices in Delhi has been increased by around 90 paise per litre today. According to Indian Oil, petrol prices in the national capital rose to 98.64 rupees per litre from 97.77 earlier, while diesel rates increased to 91.58 rupees per litre from 90.67. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. A California jury ruled against billionaire entrepreneur Elon Musk in his high-profile lawsuit against OpenAI, delivering a major legal victory for OpenAI in a closely watched courtroom battle over the future of artificial intelligence. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर और सैम ऑल्टमैन तथा ओपनएआई ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट।

0: एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख भी किया।
0: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आज रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रोम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे।
3: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक ऐसा समझौता जल्द ही हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। अमेरिका 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के G20 के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमरीका 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोरल के मुख्य G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अमरीका सरकार ने क्यूबा के 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें वहां के संचार मंत्री, कई सैन्य नेता

0: और मुख्य खुफिया एजेंसी शामिल हैं। ये कदम क्यूबा के कम्युनिस्ट नेताओं पर ट्रंप प्रशासन द्वारा दबाव बढ़ाने का एक हिस्सा है। ये कार्रवाई क्यूबा के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत वेनेजुएला से आने वाले अधिकांश तेल खेपों पर प्रतिबंध के प्रयास भी शामिल हैं। ये कदम जनवरी में वेनेजुएला के नेता को पकड़ने के लिए अमरीकी छापे के बाद उठाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से चीन की दो दिन की यात्रा पर हैं। श्री पुतिन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। रूस ने कहा है कि पुतिन और शी चिनफिंग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पुतिन का यह दौरा 2001 में हुए चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई के खिलाफ एलन मस्क के दावे को खारिज कर दिया है। मस्क ने आरोप लगाया था कि ओपनएआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। ओकलैंड की संघीय अदालत ने माना कि मस्क ने यह मुकदमा करने में देर कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्क के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपनएआई इंसानियत की भलाई के लिए काम करने के अपने शुरुआती वादे से मुकर गई है। 28 अप्रैल को शुरू हुए इस मुकदमे में मस्क ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने पुराने आदर्शों को छोड़कर सिर्फ मुनाफा कमाने और अपने निवेशकों को अमीर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इटुरी और उत्तरी किवू प्रांतों में 118 और लगभग 30 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी एक मौत और एक संदिग्ध मामले की पुष्टि हुई है। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने एक आदेश में 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at the Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at the 3rd India-Nordic summit today. US President Donald Trump postpones planned attack over Iran at request of Gulf allies. Russian President Vladimir Putin embarks on 2-day visit to China beginning today. And Sam Altman and OpenAI wins lawsuit against Elon Musk in California. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under the consequent creation of 1 million jobs in India.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai aur Bharat mein aapke investment ko आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है।

नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूँ आपसे बातें करने और बॉलीवुड गानों से जुड़ी आपकी नॉलेज टेस्ट करने भी। आपको क्या करना है वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन नए लिसनर्स की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि fmgoldair@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868868753 पर व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लिखना है अपना नाम और अपने शहर का नाम भी, साथ ही कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये भी आप लिख भेजेंगे, और साथ में शेरो शायरी, कोई अच्छी बात, जो भी आप फील कर रहे हैं इस वक्त जरूर लिखिएगा। मैं कर रही हूँ बेसब्री से इंतजार।

आगे बढ़ें, बातें करें, आपके ईमेल्स और मैसेजेस शामिल करें, उससे पहले मैं आपको सुनवाने वाली हूँ एक आइडेंटिकल म्यूजिकल पीस। सुनिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक बार और सुनिए। तो उम्मीद है कि आपने पूरे ध्यान से सुना होगा ये म्यूजिक पीस। अब आपको बताना है कि ये किस गाने का हिस्सा है, किस गाने की स्टार्टिंग में, किस गाने के बीच में ये आता है, और लिख भेजना है वहीं ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, ठीक है। और मुखड़ा आप लिखकर भेजेंगे और फिलहाल एंजॉय करेंगे ये मस्ती भरा गीत मेरी ओर से।

जी बिल्कुल, मतवाला जिया तो बोलेगा ही, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स, जहां आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। और अब मैं जिन्हें करने वाली हूं कार्यक्रम में शामिल भी, उससे पहले एक बार और आपको सुना देती हूं वो म्यूजिक पीस जिसे सुनकर और पहचानकर आपको लिखकर भेजना है गाने का मुखड़ा।

तो जो भी जानकारी है आपके पास लिख भेजिए जल्दी से, मैं कर रही हूँ इंतजार। कार्यक्रम के अंत में शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने बिल्कुल शत प्रतिशत सही इस गाने को पहचाना होगा। चलिए, और एक गुजारिश तो और भी की थी मैंने आपसे कि शेरो शायरी या कोई बात जो भी आप लिखकर भेजें, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर मेरा जोश हो जाए दोगुना और आपको भी आए मजा। तो पंजाबी बाग दिल्ली से ईमेल भेजा है परमजीत कौर जी ने दिलबाग सिंह, दिलजोत सिंह और दिलजोत सिंह जी के ही साथ, और सवाल का जवाब भेजा है, फरमाइशी गीत भी भेजा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करेंगे। तो मैं ढूंढ रही हूँ वो ईमेल जिसमें हो कुछ खास, कुछ ऐसी बात। मिल गई। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। ओहो, जनाब पहले ये बताइए कि ये कविता, ये शायरी माफ कीजिए, किसके लिए लिखी है आपने, कौन सी कविता के लिए? सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप के साथ, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी इस मैसेज में शामिल है। अरे बाबा, इतने सारे लोग एक मैसेज में, थोड़ी सी शायरी और लंबी नहीं होनी चाहिए थी इस हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, फिर से भेज दीजिए, मैं तो यही हूँ। अगला मैसेज आया है भारत भूषण जी की ओर से, लिख रहे हैं जरा नजरे इनायत मेरे मैसेज पर भी कर दीजिए। बिल्कुल जी, कर दी है मैंने नजरे इनायत और शामिल कर लिया है आपका मैसेज। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से लिखा है अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ इन्होंने ये मैसेज लिख भेजा है। और इसके साथ ही अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी का। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ शामिल हैं और इन्होंने भी कोई शायरी नहीं लिखी है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अब मेरी नजरें ढूंढ रही हैं बहुत तेजी से वही मैसेज या वही ईमेल जिसमें लिखा हो कुछ खास, जो कि मुझे फिर मिल गया है। अनु बड़जात्या जी ने लिख भेजा है आप जैसी दोस्त होना ही शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथ ऐसी लकीर होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डियर यू मेड माय डे एनर्जेटिक एंड मैम यू आल्सो मेड माय डे एनर्जेटिक। अगला मैसेज खोल लिया है मैंने फैसल इमाम साहब का, मोहम्मद अफजल इनके साथ शामिल है, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से लिखकर भेजा है कि कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। नाज जी बहुत ही उम्दा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, गीतों का चयन भी लाजवाब है। थैंक यू सो मच सर। एक और मैसेज आ गया है गोल्ड के गीतों में हम खो जाएं, हमारी बातों में आप खो जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, कृपया कोई भी प्यारा सा गीत सुना दीजिए। रवि, लता, प्रिया और विनिशा ने भिलाई से ये मैसेज भेजा है और भाई अब तो मुझे गीत सुनाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। तो ये जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं इसकी फरमाइश आई है हमारे पास मास्टर अशोक वर्मा जी की ओर से। अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, सुदामा नगर खंडवा से इन्होंने ये फरमाइश भेजी है और सच बताऊं बहुत ही प्यारा गीत है, हम सब एंजॉय करने वाले हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये कुछ देर में बताऊंगी। फिलहाल शामिल कर रही हूँ आप ही के मैसेजेस और ईमेल्स जो मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा महसूस करवा रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से एक मैसेज आया है और लिखा है कि आपकी आवाज में छुपा है कोई मीठा सा अफसाना, सुनकर जिसे दिल मेरा हो जाता है पूरी तरह दीवाना। जब भी आप धीरे से मेरा नाम बोलते हो, यकीन मानो आप इस धड़कते हुए दिल को जीत लेते हो। कोयल की कूक भी आपके आगे अब फीकी सी लगती है, आपकी हर एक बात सीधे इस रूह में उतरती है। खामोश सुबह में जैसे कोई सुरीली सी बांसुरी बाजे, आपकी आवाज का जादू मेरे कानों में हर पल साजे। और आपकी आवाज पर हमें बड़ा नाज है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी तारीफ। उफ, आज का दिन तो बन गया। तो किसका है मैसेज ये भी बता देती हूँ। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ ये मैसेज आया है। दिनेश चौहान भी इसमें शामिल है रामदेवरा से। बाबूराम जयपाल शामिल है डांगरी से। और खलीफों की बावड़ी से शामिल है खुदा बख्श खलीफा। रेडियो दीवाना कहते हैं ये खुद को। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी शायरी, बहुत ही अच्छी बात आपने लिखकर भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगला मैसेज है कृष्ण कुमार गुप्ता जी का, भटीपुरा महोबा यूपी से लिख रहे हैं कि वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं तो किस काम की तेरी जवानी। ये शेर क्रिकेटर सिद्धू जी ने फरमाया था, ये भी इन्होंने बता दिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अगली जो मैं लाइनें पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए, वो दरअसल एक कविता है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन शामिल किए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सतीश अनेजा जी ने लिखकर भेजा है चंडीगढ़ से कि आगाज हो चुका है प्रोग्राम का, चमक उठा आसमान, सबको भागीदारी मिलेगी, होगा सबका सम्मान। आज फिर 10:30 बजते ही खुशियों की लहर छा गई, देखो देखो नाज बहना मोहब्बतें बांटने जो आ गई। वाह क्या बात है, मौसम ने ली करवट, 3 दिन से तबीयत रही नासाज, उफ यकीनन राहत सी मिल गई जब सुनी बहना की आवाज। सभी श्रोता शिद्दत से इस वक्त का इंतजार करते हैं, खुदा गवाह है गोल्ड से हम बेपनाह प्यार करते हैं। ईमेलों से सुर है टपके, व्हाट्सएप से सुरीला साज, दोनों के तरन्नुम से प्रोग्राम पेश करती बहना नाज। आपकी निष्ठा और मेहनत से प्रोग्राम बन चुका सरताज, हमें आप पर गर्व है और रहेगा प्यारी बहना नाज। जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है सबका प्यारा गोल्ड, खुशियों की बरखा कर दी, गमों को कर दिया फोल्ड। बहन मेरी का इसने हम सबको मिलता भरपूर रहे, मांगो दुआ रब से गर्म हवा भी बहन से दूर रहे। क्या बात है सर, सब कुछ लिख डाला आपने तो और दिल खुश कर दिया। सतीश अनेजा जी, विमला अनेजा जी के साथ चंडीगढ़ से ये खूबसूरत कविता आई है हमारे पास। और भाई अगला मैसेज भी हम पढ़ लेते हैं जो कि आया है रवि जी की ओर से। लता, प्रिया और विनिशा इसमें शामिल हैं। लिखा है कि गोल्ड के गीतों में हम खो जाएं, हमारी बातों में आप खो जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये तो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों अगला मैसेज आया है राजेंद्र जटोलिया जी का, लिख रहे हैं सुबह की पहली किरण कहती है मुस्कुराइए, हर दिन को नए सपनों से सजाइए, जो बीत गया उसे दिल से भुलाइए, आज की सुबह को खुशियों से अपनाइए। बिल्कुल सही बात और अपनाने लायक भी। दिल्ली नागलोई से ये मैसेज आया है और फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजा है, भाई बहुत बढ़िया। अगला मैसेज एक और मैं शामिल कर रही हूँ, अनु जी ने ही लिखा है ये। और अनु बड़जात्या मुंबई से शमशुल खान और अनुराज बिनारा के साथ लिखती हैं कि फूलों की सुगंध से सुगंधित हो जीवन तुम्हारा, तारों की चमक जैसा चमके सदा जीवन तुम्हारा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और दोस्तों वक्त का तो पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया, बताइए 10:52 हो गए, आपको पता चला क्या? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लगा क्योंकि अभी भी मेरे सामने आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, लगातार आप लोग भेज रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं बस पढ़ती ही जाऊं, कोई मुझे ना रोके। लेकिन ये कमबख्त घड़ी
इसके लिए तो रुकना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा मुझे साथ में आज के सवाल का जवाब भी। वो बताऊं इससे पहले एक बार और सुन

ये म्यूजिकल पीस। जी हाँ, ये म्यूजिकल पीस हिस्सा है एक बेहद बेहद बेहद खूबसूरत गीत का, जो कि हिस्सा था साल 1994 में आई सुपरहिट फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का। और इसके गाने हुफ, वैसे तो हर गाना एक से बढ़कर एक है, लेकिन स्पेशली ये गाना जिसे आपने है पहचाना, ये तो चार्ट बस्टर सॉन्ग था, है ना। और 90s की मशहूर जोड़ी कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। हसरत जयपुरी साहब के बोल हैं और अनु मलिक साहब की जादुई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन आप इसमें सुनते हैं। उस वक्त का सुपर हिट सॉन्ग जो 90s के नॉस्टैल्जिया को ताजा कर देता है और समझाता है रोमांस की नई परिभाषा। फिर चलिए आप और मैं इंजॉय करें ये खूबसूरत सॉन्ग। उससे पहले जान लेते हैं उन होनहार लिसनर्स के नाम जिन्होंने पहचाना इस धुन को और दिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो सईद अब्बासी साहब का सबसे पहला मैसेज आया था, मैंने नोट किया था, चौखुंटी बुलंदशहर से। अनीता वर्मा दिल्ली से, आफताब अंसारी, जयराम खोरवाल होली चौक उत्तम नगर से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से, प्रदीप डिमरी देहरादून से, भारत भूषण बेंगलुरु से, धीरज यादव गुरुग्राम से, जगदीश कुमार नांगलोई दिल्ली से, सुभाष दिल्ली से ही, संजय ढींगिया बागपत से, सुदर्शन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, धर्मेंद्र छीपा राजस्थान से, और मुझे पता है कुछ नाम शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत तेजी से स्क्रीन मेरी दौड़ रही है और जल्दी से मैं लास्ट के कुछ नाम कोशिश कर रही हूं कि शामिल कर लूं ताकि आप लोग थोड़ा सा कम नाराज हो मुझसे। तो अभी अभी मैसेज आया है मनोहर लाल गांधी जी का चाणक्य चौक विजयनगर गाजियाबाद से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। इसके अलावा हिसार से भी मैसेज आ गया है राजकुमार डूडी जी का, प्रमोद कुमार डूडी इनके साथ शामिल है फरासी जिला हिसार से, इन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। और जॉन डिकेस्ट्रो साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब के साथ जनकपुरी सहारनपुर से जवाब भेजा है और किसी भी गीत में शामिल होने की ख्वाहिश रखी है, तो बिल्कुल आप शामिल हो चुके हैं। और ईमेल पर भी नजरें डाल लेते हैं तो राशिद हुसैन साहब का मैसेज आया है अभी अभी, लिखा है कि प्यारी सिस्टर आरजे नाज जी, आपको प्यार भरा आदाब, दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। जी बिल्कुल आमीन, आप ही खैरियत से रहें ऐसी हमारी दुआ है। किसी भी सदाबहार नगमे में शामिल होना चाहते हैं और ये मैसेज लिखा है इन्होंने जैन मंदिर वाली गली खुरावली से। मोहम्मद कैफ अंसारी, आसना अंसारी, नौरीन और नसरीन के साथ ये मैसेज इन्होंने भेजा है और फिलहाल माफी के साथ अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको वही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जिसे आपने पहचाना और बहुत अच्छी तरह से पहचाना। लेकिन दोस्तों एफएम गोल्ड का साथ आपको नहीं छोड़ना है, यूं ही बने रहना है। इस गीत के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और फिर मैं होंगी आपके साथ, फिर मिलेंगे, प्रोग्राम होगा तस्वीर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री

0: मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रुजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement TEPA.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai aur Bharat mein aapke investment ko आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है।
1: On the second of his visit to Norway, Prime Minister Modi, along with his counterparts from 5 Nordic countries, will attend the 3rd India-Nordic Summit in Oslo today. The summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the 3rd India-Nordic Summit. On the last leg of his five-nation visit, Mr. Modi will travel to Rome, Italy, on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Union Home Minister Amit Shah will chair the meeting of the Central Zonal Council today in Jagdalpur, the divisional headquarters of Bastar in Chhattisgarh. The meeting will be attended by chief ministers and senior officials of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. During his visit to Chhattisgarh yesterday, Mr. Shah inaugurated a public service centre at Netanar village in Bastar district. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted his report to Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त आ गई हूँ लेकर तस्वीर। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:11:25। एंड एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर चलने का, जो बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ सदाबहार गीतों से भी सजा होगा। तो अब से लेकर ठीक 12 बजे तक आप करेंगे मेरे साथ ऐसी जगह की सैर, जहां आपको मिलेंगे खूबसूरत पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत मौसम भी। यानी नेचर के करीब पहुंचने के लिए ये जगह बेस्ट है। और हिंट आपके लिए ये है कि इस जगह का कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है खूबसूरत ऊटी से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का ऊटी कहा जाता है इस जगह को। और नाम क्या है ये आपको गेस करना है। जल्दी से लिख भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। कहाँ? 9868

8687533 पर। फिलहाल क्या करना है ये भी बताऊं? सुनना है ये खूबसूरत गाना, जिसे सुनते और एंजॉय करते हुए ही आपको इस खूबसूरत जगह का नाम है बताना।

जी हाँ, कोशिश भी करनी है और वादा भी करना है आपको मुझसे यानी नाज से कि आप बने रहेंगे मेरे और एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि तस्वीर में आज हम चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन हॉर्सली हिल्स के सफर पर। और जिन्हें थी पहले से ये जानकारी, अब है उनका भी नाम इस तस्वीर में शामिल करने की बारी। तो भाई, कुछ लिसनर्स ने लिखकर भेजा कि आप हमें लेकर चल रही हैं अराकू वैली। माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश में ही है और इत्तेफाक ये है कि इसे भी आंध्र प्रदेश की ऊटी ही कहा जाता है। आपका जवाब भी गलत नहीं है, लेकिन आज चूंकि तस्वीर मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रही हूँ हॉर्सली हिल्स की, तो उस हिसाब से सही जवाब तीन लिसनर्स का आया है। राज लक्ष्मी मुरलीधरन दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुप्ता भट्टीपुरा महोबा यूपी से और सुदर्शन मुखी सोनीपत से। जी हाँ, इनके आए बिल्कुल सही जवाब। और आखिर में अभी कुछ पल पहले एसके खन्ना जी ने भी कर दिया सही जवाब का मैसेज और गुरुग्राम से। चलिए वापस लौटते हैं और बात करते हैं हॉर्सली हिल्स की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शहर मदनपल्ली के करीब मौजूद हॉर्सली हिल्स साउथ इंडिया की सबसे शांत और सुंदर जगहों में से एक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आंध्र प्रदेश का ऊटी कहकर इस जगह की खूबसूरती को एक खास पहचान दी जाती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा के पास मौजूद है ये पहाड़ी इलाका, स्थानीय रूप से एनुगु मल्लम्मा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। कहानी इस नाम के पीछे क्या है ये मैं आपको सुनाऊंगी जरूर, लेकिन उससे पहले चढ़ जाने दीजिए इस अगले बेहद खूबसूरत ट्रैक का सुरूर।

एनुगु मल्लम्मा कोंडा, इस नाम से हॉर्सली हिल्स को यहाँ के लोकलाइट्स यानी स्थानीय लोग पुकारते हैं। और कहानी इसके पीछे की जुड़ी है एक लड़की से जो कई साल पहले यहीं रहा करती थी और जिसका नाम बताया जाता है मल्लम्मा। वो लड़की यहाँ के हाथियों को चारा डाला करती थी। फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गई। बहुत ढूंढा गया लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। और फिर लोगों ने उसके नाम का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया और उसी लड़की के नाम पर इस जगह का नाम रख दिया गया एनुगु मल्लम्मा, जिसका हिंदी में मतलब होता है हाथियों को पालने वाली मल्लम्मा। फिर आगे चलकर साल 1870 में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के कलेक्टर W.D. हॉर्सली के नाम पर इस जगह का नाम हॉर्सली हिल्स पड़ गया। अच्छा, वैसे आम बोलचाल में इस जगह को ना हॉर्सले हिल्स भी कह दिया जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश में

नाम की स्पेलिंग और कलेक्टर साहब के नाम पर गौर करें तो सही प्रोनंसिएशन होगा, यानी सही उच्चारण होगा हॉर्सली। और एफएम गोल्ड पर मेरे यानी नाज के साथ आपको बने रहना होगा जानने के लिए कि कैसे और कहां से पहुंचेंगे आप हॉर्सली हिल्स। फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक एवरी टाइम, जिसे सुनने के बाद मूड हो जाता है एकदम चिल।

अच्छा, कैसे पहुंचेंगे हॉर्सली हिल्स? इस ट्रैक से पहले छोड़ा था मैंने ये सवाल, और जनाब बड़ा ही सिंपल है इसका जवाब। बाय एयर आने का अगर आप बजट रखते हैं तो सीधा टिकट बुक कर लीजिए तिरुपति एयरपोर्ट का, जहां से हॉर्सली हिल्स की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है। इसके अलावा बाय ट्रेन अगर आप आते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा मदन पल्ले रेलवे रोड, जो हॉर्सली से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बाय रोड भी इस जगह की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। मदन पल्ले सबसे नजदीकी शहर है, और इसके अलावा बेंगलुरु, तिरुपति या फिर चेन्नई, आप कहीं भी हों, आराम से बस या फिर टैक्सी के जरिए हॉर्सली हिल्स पहुंच सकते हैं। सवाल अगर आपके मन में ये भी हो कि किस मौसम में यहाँ आना चाहिए, तो उसका जवाब है कभी भी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का मौसम लगभग हमेशा ही सुहाना और सदाबहार रहता है, ठीक वैसे जैसे ये अगला गाना। मानो वक्त बीतने और जमाने बदलने का इसकी मेलोडी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माय यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने

जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर है प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी नाज के साथ। और हम निकले हैं आज आंध्र प्रदेश और पहुंच गए हैं खूबसूरत हॉर्सली हिल्स। पहाड़ी इलाका है तो जाहिर है कि खूबसूरत नजारों की तो यहाँ कोई कमी है नहीं। परिवार के साथ यादगार और आरामदेह छुट्टियां आप यहाँ पर बिता सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको जरूर होनी चाहिए यहाँ के फेमस स्पॉट्स की जानकारी। कैसे मिलेगी? अरे यहीं और अभी मिलेगी जनाब। मेरा सजेशन फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए हॉर्सली हिल्स की मशहूर चेन्ना केसवा मंदिर और लेना चाहिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद। 16th सेंचुरी में चोल साम्राज्य के दौरान इस इलाके के स्थानीय प्रमुख ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और ये बता दूं आपको कि साउथ इंडिया के रिच कल्चर और आर्किटेक्चर का बेहद खूबसूरत नमूना आप इस जगह को मान सकते हैं। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा काफी बड़ा है जहां रामायण से जुड़े कई चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप निकलिए करने नेचर का सफर, जिसके लिए झरनों और झीलों से बेहतर और कुछ भी नहीं। हॉर्सली हिल्स के ऊपर की ओर मौजूद तलकोना फॉल्स आप जाइए, जो कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के हरे भरे नजारों में अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। आंध्र प्रदेश के सबसे ऊंचे झरनों में से ये एक है। 270 फीट की ऊंचाई से गिरता ये घुमावदार झरना वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। वैसे अगर आपको लगता है कि लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई है, सब कुछ बड़ा यूजुअल सा है आसपास, तो ये अगला गाना जरा गौर से सुनिएगा। कितनी खूबसूरती से जावेद अख्तर साहब ने बताया है कि अजूबे तो हर तरफ हैं, बस देखने और समझने की देर है।

और अगर एक और अजूबा देखने की है आपकी ख्वाहिश, तो बिना देरी पहुंच जाइए केगल फॉल्स, जो अगेन हॉर्सली हिल्स की बेहतरीन जगहों में से एक है। बड़ी सी चट्टान से गिरता करीब 40 फीट ऊंचा ये झरना है और नेचर की अनबिलीवेबल कलाकारी का एक शानदार नमूना भी। इसके बाद आप पहुंचिए विस्पर व्यू पॉइंट, जो हॉर्सली हिल्स के मस्ट गोइंग प्लेसेस में से एक है। हरे भरे जंगल जिनके बीच खूबसूरत पहाड़ियां और गहरी घाटियां, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए ये जगह बेस्ट है जनाब। हॉर्सली हिल्स में मौजूद गंगोत्री झील की सैर भी आपको जरूर जरूर जरूर करनी चाहिए, जहां का शांत माहौल आपको वो सुकून यकीनन देगा जिसकी आपके मन और तन को जरूरत है। ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ों से घिरी ये जगह वाकई आप कभी नहीं भुला पाएंगे। और एक जगह के बारे में सुनते जाइए जिसे भी आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो है कल्याणी। असल में कल्याणी एक यूकेलिप्टस का पेड़ है जिसकी उम्र 150 सालों से भी ज्यादा है। जी हाँ, साल 1859 में इस पेड़ को लगाया गया था यहाँ, और अब इसकी ऊंचाई करीब 40 मीटर के आसपास है। 5 मीटर के इलाके में फैला यह ऐतिहासिक पेड़ पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है और एक बार देखने लायक तो जरूर जरूर है। फिलहाल साथ छोड़कर जाइएगा नहीं कहीं, सुनेंगे ये अगला गाना और जल्दी से वापस आएंगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर से मदनपल्ली शहर और फिर हॉर्सली हिल्स की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी गैली बंदालू, जो वैसे तो एक उबड़ खाबड़ और ढलानदार इलाका है, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से यह हॉर्सली हिल्स का सबसे पसंद किया जाने वाला स्थान है। बस जंक्शन से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद इस जगह का नाम गैली बंदालू क्यों पड़ा, ये जानने के लिए आपको समझना होगा यहाँ की ज्योग्राफी को। असल में तेलुगु भाषा के शब्द गैली का मतलब होता है हवा और बंदालू माने चट्टान या पथरीला ढलान। तो मेहरबान, मसला कुछ यूं है कि ये जगह बेसिकली एक विशाल प्राकृतिक और मखमली ढलान वाली चट्टान है, और जिसकी सबसे बड़ी खासियत है ये कि यहाँ साल के 12 महीने और दिन के 2400 घंटे बेहद तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं। कई बार हवा का झोंका इतना तेज भी हो सकता है कि आपको अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ जाए, लेकिन यहाँ से नजर आने वाले खूबसूरत नजारे वाकई उस मेहनत और मशक्कत को वसूल कर देते हैं। एडवेंचर का अगर आप शौक रखते हैं तो भी ये जगह आपके लिए है, क्योंकि आखिरी छोर पर थोड़ी खड़ी ढलान है यहाँ, जिस पर एक छोटी सी हाइक का मजा आप आराम से ले सकते हैं।

और फ्रॉम हॉर्सली हिल्स नेचर लविंग, अगर आपका है नेचर तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में होनी ही चाहिए, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। द फेमस जू यानी चिड़ियाघर की मैं बात कर रही हूँ। क्यों ऐसा है ये आप अभी जान जाएंगे। हरे भरे पेड़ पौधों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरा ये चिड़ियाघर घर है कई वन्य जीवों का। मोर, जंगली बंदर, मगरमच्छ, चित्तीदार हिरण और रंग बिरंगे तोतों के साथ आपको यहाँ कई तरह के कबूतर भी दिखाई दे जाएंगे। और कल्याणी नाम के जिस विशाल और 150 सालों से भी पुराने यूकेलिप्टस पेड़ का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो भी यहीं पर आपको मिलेगा। छोटा सा एक तालाब भी है जहां आप पैडल बोटिंग का मजा ले सकते हैं और इसके साथ ही घने पेड़ की छांव में बिता सकते हैं परिवार के साथ कुछ सुकून के पल। और इतना कुछ करने के बाद जाहिर है कि जरूर लगेगी आपको भूख। तो जनाब, उसके लिए भी कुछ खास नहीं करना है। पूरे हॉर्सली हिल्स में आपको हर जगह साउथ इंडिया का बेहतरीन और ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाएगा। साथ में नॉर्थ इंडियन और चाइनीज डिशेस भी वैरायटीज के तौर पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। फेमस आइटम्स में शामिल है यहाँ की आंध्र थाली, जिसमें केले के पत्ते पर आपको चावल, पप्पू यानी दाल, सांभर, रसम के साथ पचड़ी यानी चटनी और खुरमा यानी सब्जी के साथ ढेर सारा शुद्ध घी परोसा जाता है। नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो यहाँ की मसालेदार आंध्रा स्टाइल चिकन बिरयानी और गोंगूरा के खट्टे स्वाद के साथ बनने वाली यहाँ की स्पेशल चिकन या मटन करी जरूर टेस्ट करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म इडली, क्रिस्पी डोसा, वड़ा, उपमा और मैसूर बोंडा आपको हर जगह मिलेगा। साथ में यहाँ की ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी का गिलास तो बनता है बॉस। और फिलहाल घड़ी का इशारा मैं समझ रही हूँ और मुझे कहना चाहिए अब आपको अलविदा। ये वादा रहा आपसे कि बहुत जल्द फिर किसी नई तस्वीर के साथ जरूर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय और एक प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक

0: संस्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
3: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Oslo.
2: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the

London. आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। ऐसे में अगर आप तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत यानी म्यूजिक से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब यह है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो संगीत सुनिए। संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहे जैसा चाहे सुने और फिर अपना मूड बदल लें। कह सकते हैं कि संगीत हमारी जिंदगी के हर पल का साथी है, हमारा हमसफर है। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, हम यही कहेंगे कुछ समय अपने लिए निकालिए, संगीत का संग अपनाइए। वजह कई शोध भी यही बताते हैं कि संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोते वक्त आपको गाना सुनना चाहिए या खाते वक्त गाना सुनना चाहिए, तो बस संगीत के लिए सोचिए मत।

हर वक्त आप संगीत सुन सकते हैं। सोते समय सुखदायक संगीत सुनना शुरू कर दीजिए। एक सुखद नींद के लिए सोने से पहले अगर आधा घंटा आप संगीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप पाएंगे कि तनाव मुक्त नींद और पर्याप्त नींद में ये कितना सहायक है। धीमा संगीत सुनने से आप आराम महसूस करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, संगीत से चिंता भी दूर होती है और इससे आपको स्वस्थ जीवन मिलता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। संगीत के इन सुनहरे पलों को और भी शानदार बनाने के लिए बना रहे आकाशवाणी का साथ। जी हां, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत में ढेर सारे बदलाव आए हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आधुनिकता के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1936 में अपनी स्थापना के बाद से संगीत में आए बदलावों को ऐसे समझा जा सकता है कि हम कह सकते हैं 1950 का जो दशक था वो शास्त्रीय संगीत का संरक्षण का दौर था। राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम 1952 में 20 जुलाई 1952 को राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक को आम जनता तक पहुंचाना और संरक्षित करना था। नेशनल ऑर्केस्ट्रा, दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भी हुई, जिसका नेतृत्व महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया था। शास्त्रीय संगीत के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया और आज तक इसके 67 से ज्यादा संस्करण पूरे हो चुके हैं। सुगम और फिल्म संगीत का उदय होता है तब आकाशवाणी की बात करें तो विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को शुरू की गई विविध भारती सेवा। इसके माध्यम से फिल्मी गाने, सुगम संगीत और हवा महल जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने संगीत के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम शुरुआत किया गया। ये कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटक और स्किट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय और रोचक अंदाज में पेश किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि आकाशवाणी का ये सफर इतना लंबा आपके साथ यानी श्रोताओं के साथ के बगैर तो हिट हो ही नहीं सकता। आपकी पसंद ही तो आकाशवाणी के सफर में साथी बनी। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आकाशवाणी ने भारत के दूर दराज के इलाकों के लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्तमान में यह 23 भाषाओं और 189 बोलियों में संगीत और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। हाल ही में 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर पूर्व भारत की संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक कंसर्ट भी आयोजित किए गए। अब आधुनिक बदलावों की बात करें तो डिजिटल और एप्स में ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ संगीत का सफर आज मोबाइल एप्स यानी न्यूज ऑन AIR और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है। नई सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता रखी गई। अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने नए युग के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए एक नई सिग्नेचर ट्यून और जिंगल्स बनाने की प्रतियोगिता भी शुरू की। आधुनिक श्रोताओं के लिए अब संगीत और बातचीत को आकाशवाणी पॉडकास्ट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। आकाशवाणी आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सच्चा संवाहक माना जा रहा है। तो वही हम आपसे बातें कर रहे थे आकाशवाणी के 90 सालों के सफर की कि संगीत में कैसे कैसे बदलाव हुए, लेकिन आकाशवाणी हमेशा अपने श्रोताओं से जुड़ा रहा। और हम तो यही कहेंगे आकाशवाणी का ये सफर हमारे साथ यूं ही चलता रहे।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। दौर बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और बदलता है समाज। आज के भारत में महिलाओं की शक्ति और उनकी भूमिका में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। नारियां, महिलाएं अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि देश के विकास का मुख्य आधार बन चुकी हैं। आज की नारी शक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निर्णय लेने की शक्ति। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राजनीति की बात करें तो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त और रक्षा का कार्यभार संभालकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो देश की दिशा तय करने में सक्षम है। प्रशासन की बात करें तो आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या और उनके काम करने के जज्बे ने व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बढ़ाई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज की महिला सिर्फ नौकरी नहीं कर रही बल्कि नौकरियां दे भी रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत के कई सफल स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बहुत सफलता से कर रही हैं। ग्रामीण सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों और के माध्यम से गांव की महिलाएं छोटे उद्योगों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। जी हां, एनजीओस में इतना काम होता है, इतनी सारी महिलाएं हैं जो गांव की, पंचायत की और आसपास के एरिया की सारी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति हैं, उनको पहचान दिलवा रही हैं और विश्व यानी वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रही हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे, सुनते हैं, साथ साथ गीत भी सुनते चलते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत दिलीप मंदिर फिल्म से था और बात चल रही थी महिलाओं की आज की नारी शक्ति की। अब मंगलयान हो या चंद्रयान, इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भी इनसे दूर नहीं है। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती रुचि नए भारत की आधुनिक सोच को दर्शाती है। डिफेंस की बात करें तो एक समय था जब सेना में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, लेकिन आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सीमाओं पर तैनात हैं और युद्धक भूमिकाओं में अपनी बहादुरी का परिचय दे रही हैं। ओलंपिक हो या विश्व चैंपियनशिप, देश को सबसे ज्यादा गर्व के क्षण महिला खिलाड़ियों ने दिए हैं। जी हां, खेल के मैदान में परचम लहराया है हमारी महिला खिलाड़ियों ने। क्रिकेट से लेकर कुश्ती और बैडमिंटन तक भारतीय बेटियां वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रही हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आज की महिलाएं शिक्षा के माध्यम से पुरानी कुरीतियों को चुनौती दे रही हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और समाज में समानता, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं। आज की नारी बेचारी नहीं बल्कि शक्तिशाली है। वो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आधुनिकता के पथ पर अग्रसर है। जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। आज का भारत इसी मंत्र को हकीकत में बदल रहा है।

0: जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में आपने ये गीत सुना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त राधा पाठक। बातें हमने इतनी सारी की हैं और ढेर सारी बातें हमारी बाकी भी हैं। और दरअसल

महिलाएं हैं जो, क्योंकि हमारा ये जो घर आंगन कार्यक्रम है ये खास महिलाओं के लिए है, और हम चाहते भी हैं कि महिलाएं काम करते करते जो दिन भर की थकान होती है वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ थोड़ा सुकून महसूस करें। हम बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं अपनी महिला सखियों के लिए, और हम चाहते हैं कि वो ये सारी चीजें जान पाएं और जागरूक रह पाएं समाज के प्रति। और हम बता दें अपना ईमेल आईडी fmgolga@gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, वन वे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका जवाब ईमेल पर आना चाहिए कि आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में और क्या होना चाहिए, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो ये हुई ना हमारी बातचीत का पूरा पूरा जो स्वरूप है वो यही रहना चाहिए। अब बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आजकल जहाँ देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, घर हो तो पति पत्नी सास ससुर दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची बच्चे भाई बहन सब अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। जी हाँ, सबके हाथों में मोबाइल है, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, कुछ भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपसी बातचीत जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। किसी भी रिश्ते में, हर रिश्ते में यही चल रहा है। अब घर की क्या बात करें, आप बाहर निकलिए, आप किसी भी सरकारी वाहन में आइए, मेट्रो से आते हैं तो देखिए मेट्रो में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाली महिलाएं हो, ऑफिस जाने वाले युवक हो, पुरुष हो, सबके हाथ में मोबाइल है। महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं वो भी काम किया, कुकर में सीटी आने वाली है, सीटी जब तक आएगी तब तक चलो मोबाइल देख लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो ठीक नहीं है। आज की दुनिया में मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, और अगर चाहते हैं सुकून और शांति और परिवार में आपसी बातचीत बनी रहे तो ऐसे में डिजिटल उपवास यानी कुछ समय के लिए स्क्रीन और इंटरनेट से दूरी बनानी ही होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है, डिजिटल उपवास करने से मन को आराम मिलता है और चिंता कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप अगर रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को बाधित करती है। डिजिटल उपवास, इसकी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल उपवास हो, नींद गहरी और बेहतर हो सकती है। यानी आज के जमाने में जो कहते हैं ना उपवास बहुत जरूरी है शरीर के लिए, हफ्ते में एक दिन उपवास रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है, तो ये डिजिटल उपवास भी ना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। इससे रिश्तों में सुधार आता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन से दूर होते हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत बढ़ जाती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होता है। लगातार बैठकर स्क्रीन देखने से आंखों में, गर्दन में, पीठ पर असर पड़ सकता है, तो डिजिटल उपवास से शरीर को तो आराम मिलता ही है, एक्टिव रहने की प्रेरणा भी मिलती है और आसपास आप नजर डाल पाते हैं। अब मेट्रो में आप मेट्रो के सफर का मजा लीजिए ना, गाड़ी में बैठे तो बाहर का मौसम का आनंद लीजिए, लोगों को देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, क्यों मोबाइल में या स्क्रीन देखनी है। डिजिटल दुनिया से हटकर हम खुद के साथ समय बिता पाते हैं, इसे सोचने समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अभी किया कैसे जाए, बहुत मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोजाना कुछ घंटों के लिए फोन से दूरी बना लें, सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें, मतलब जरूरी फोन और मैसेज आप देख लीजिए लेकिन सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म से उनसे दूरी बनाइए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन ऐसा करें, नोटिफिकेशन को सीमित करें। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल उपवास कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइस है। थोड़ी सी दूरी आपको ज्यादा सुकून, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन दे सकती है।

अनुराधा फिल्म में ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। और अब देखिए, ट्वेल्थ के एग्जाम तो हो ही गए थे, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है और सीयूटी के एग्जाम भी चल रहे हैं। बच्चों के रिजल्ट के बाद और बच्चों के दिमाग में ये हो गया, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। नीट का एग्जाम भी होने को है, सीयूटी के एग्जाम चल ही रहे हैं, फिर भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारा करियर क्या हो, क्योंकि बहुत जद्दोजहद चलती है आपके रिजल्ट और आपकी अगली लाइफ के बारे में, क्या आपका करियर होना चाहिए। तो एआई में करियर, हम आपको बार बार बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी है। आजकल कुछ ऐसे भी करियर हैं जिन्हें किसी भी स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो चुन सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स है, एआई, डेटा की समझ रखने वालों के लिए इसकी हर क्षेत्र में जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है। यूआई यूएक्स डिजाइन, एप्स और वेबसाइट के डिजाइन को बेहतर बनाने का काम ये भी कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फुल टाइम करियर बन चुका है। और एआई की जो हम बात कर रहे हैं उसमें है टेक्निकल और इंजीनियर रोल्स हैं, कोर टेक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल के। ये इंजीनियर्स ऐसे एल्गोरिदम और मॉडल बनाते हैं जो डेटा से सीख सकते हैं, इसके लिए पाइथन और मैथ की अच्छी समझ होनी चाहिए। एआई डाटा साइंटिस्ट हैं, इनका काम डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का पता लगाना है, एआई मॉडल को बेहतर बनाना है। एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, ये पूरे एआई सिस्टम का डिजाइन और ढांचा तैयार करते हैं और वो बिजनेस में कैसे काम करेगा ये भी सिखाते हैं। नए जमाने के जो एआई रोल्स हैं, यानी इमर्जिंग रोल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सबसे नया और चर्चित रोल है। इसमें एआई जैसे चैट जीपीटी और भी चीजें हैं, सही से काम करवाने के लिए सटीक और प्रभावशाली निर्देश प्रॉम्प्ट्स लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए कोडिंग से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग जरूरी है। एआई एथिसिस्ट यानी नैतिकता विशेषज्ञ, एआई पक्षपाती ना हो और नैतिक रूप से सही काम करे, ये सुनिश्चित करना इनका ही काम है। फिलॉसफी और लॉ के छात्रों के लिए ये अच्छा क्षेत्र है। एआई कंटेंट क्यूरेटर, एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट की जांच करना और उनसे ह्यूमन टच देना। जी हाँ, ह्यूमन टच भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यही चाहिए होता है कि कोई भी करियर हो लेकिन वो हमें कामयाबी के साथ साथ हमें सुकून भी दे सके।

कुदरत फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब देखिए ना, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, अब महिलाएं ये सोच रही हैं, अब देखिए ना महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और अगर घर भी देखना है, बच्चों की छुट्टियां हो गई तो क्या किया जाए, बच्चे बिजी भी रहे और क्रिएटिविटी भी बनी रहे। तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात लेकर आए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। गर्मियों की छुट्टियां माँ और बच्चों की बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय होती हैं। इस समय को यादगार और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ मजेदार क्रिएटिविटी यानी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे फायरलेस कुकिंग, बच्चों के साथ मिलकर सैंडविच, फ्रूट चाट, लेमनेड और ओरियो शेक जैसी चीजें बनाएं। क्योंकि फायरलेस है, इसमें बच्चों को खतरा नहीं है कि वो जल सकते हैं, उन्हें किचन की बेसिक समझ हो जाएगी। DIY और क्राफ्ट, पुराने सामान से कुछ नया बनाना, पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग, आप घर की एक दीवार को उनके आर्ट वर्क के लिए रख सकते हैं कि बच्चे आप जो बनाओगे ना इस दीवार पे लगाया जाएगा। बनाइए, लगाइए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे गमलों में धनिया, पुदीना और एलोवेरा लगाना सिखाएं, बच्चों को पानी देने की जिम्मेदारी दें, धूप में रखने की जिम्मेदारी दें, बच्चों को गार्डनिंग की समझ आएगी। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, स्क्रीन फ्री मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे लूडो, कैरम, चेस, बिजनेस जैसे खेल दोपहर के समय के लिए बेहतरीन है। ये मत सोचिएगा कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी में लगा दिया, स्क्रीन फ्री मनोरंजन बहुत जरूरी है आज के समय में। कहानी सुनाना, अपने बचपन की कहानियां, दादी नानी की कहानियां सुनाएं, यानी उसी समय को वापस ले आएं जो बीत चुका है। हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी ना, कब कहां इतना स्क्रीन देखते थे, होता ही नहीं था कुछ भी, तो वो समय आना चाहिए, इससे बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। घर को ठंडा और खुशनुमा रखें, इंडोर पिकनिक मनाएं, लिविंग रूम में चादर बिछाकर पिकनिक जैसा माहौल बनाएं, साथ में पसंदीदा स्नैक्स बनाएं और बच्चों के साथ गप्पे मारे हो ढेर सारे, पानी का खेल खेलें, शाम के समय बालकनी या आंगन में टब में पानी भरकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती की जा सकती है। आजकल तो बड़े बड़े जो ये जो पानी में टब आ रहे हैं जिसमें बच्चे आप आराम से खूब एंजॉय करते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी होती है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कोडिंग, पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया जा सकता है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। बच्चों के लिए एक डेली रूटीन जरूर बनाना चाहिए जिसमें जल्दी उठना, थोड़ा होमवर्क करना, थोड़ा खेल का समय, इससे वो अनुशासित रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे। समर कैंप भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और ट्रेन में कहीं घुमाइए, ट्रेन का मजा लीजिए और बच्चों को सफर का आनंद ले, कहीं घूमने

गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में अनोखा रिश्ता फिल्म से। अब गर्मियों की बात चली गई है तो गर्मियों में घर को ठंडा रखना भी एक बहुत बड़ी अब देखिए बच्चे घर में रहेंगे, आप भी घर में हैं, अब घर को ठंडा कैसे रखा जाए। पूरा टाइम एसी चलाना ना तो सेहत के लिए अच्छा है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। बढ़ती गर्मी से आप परेशान हैं, तपती धूप में कहीं बाहर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो दिन भर से तपे घर में चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तेज धूप के कारण दीवारें भी तप रही हैं, घर का तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे करते हैं घर की दीवारों पर जिन पर सीधी धूप पड़ती है उन्हें हरे नेट से ढक दें या शेड लगवा दें। दीवारों को धूप में गर्म नहीं होने देना है ताकि घर का तापमान न बढ़ पाए। घर की बाहरी दीवारों पर हीट प्रूफ पेंट करवाने से भी तापमान कम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप गर्मी में घर को ठंडा रख सकती हैं। गर्मी के दिनों में भारी पर्दे लगवाने चाहिए। गहरे रंग के पर्दे तेज सनलाइट को गर्म हवाओं को कमरे में आने नहीं देते जिससे कमरे का तापमान कम रहता है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, पौधे के अंदर तापमान को कम करने में मदद भी मिलती है। ठंडे पानी से दो बार घर में पोंछा भी लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। घर साफ रहता है तो मौसम और तापमान कमरे का ना ठीक रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। साधारण पीले बल्ब जो है बहुत गर्मी पैदा करते हैं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, ये ठंडे होते हैं। सूती कपड़ों का प्रयोग कीजिए, बेडशीट तकिए कवर सिर्फ सूती ही करें। थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप इस्तेमाल करके घर को ठंडा रख सकती हैं और खुश रह सकते हैं। Yeah!

इतना नहीं।

0: रफु चक्कर फिल्म में ये आपने सुना आशा भोसले और उषा मंगेशकर को। कार्यक्रम घर आंगन से अब राधा पाठक को दे इजाजत, नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
4: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 million जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है. और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है.
3: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation, the world faces a defining choice of either retreating into narrow national approaches or strengthening partnerships. In the article published today in a national daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas including airports and residential colonies. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98 rupees 64 paise per litre, while diesel is priced at 91 rupees 58 paise. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase on May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session today. The Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in. On the sectoral front, IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 6 सेकेंड्स। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मशहूर लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार गिरीश कर्नाड की, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, सफल निर्देशन किया और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। आज गिरीश कर्नाड जी का जन्मदिन है, तो आज हम बात करेंगे उनकी जीवन यात्रा की और आपको सुनवाएंगे उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से।

दोस्तों, गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को माथेरान महाराष्ट्र में हुआ था। एक कोंकणी भाषी परिवार में जन्मे कर्नाड ने 1957 में थारवाड़ स्थित कर्नाटक विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। गिरीश कर्नाड पढ़ाई में काफी रुचि रखा करते थे। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए एक रोड्स स्कॉलर के रूप में वो इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में पढ़ाई पूरी की। वो शिकागो विश्वविद्यालय के फुल ब्राइट महाविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे।

0: से बोलो ना।
1: मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
0: क्या करते हो?
1: प्यार प्यार प्यार करता हूँ।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक, अभिनेता और निर्देशक गिरीश कर्नाड की। कर्नाड की प्रसिद्धि एक नाटककार के रूप में ज्यादा रही। कन्नड़ भाषा में लिखे उनके नाटकों का अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन किया करते थे। खास बात यह भी है कि जिस वक्त उनके समकालीन लेखकों के बीच ऐसी चीज के बारे में लिखने की होड़ थी जो स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नई हो, ऐसे में कर्नाड ने उनसे अलग हटकर ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया और काफी लोकप्रिय हुए और सफल भी रहे। उन्होंने अपना पहला नाटक ययाति 1961 में लिखा। उसके बाद 1964 में तुगलक नाटक की रचना की। तुगलक एक ऐसा नाटक था जिसने कर्नाड को काफी प्रसिद्धि दिलाई और इसका कई भाषा में अनुवाद भी किया गया। उनके द्वारा लिखा गया तले दंड भी काफी फेमस हुआ, जिसका हिंदी में अनुवाद रक्त कल्याण के नाम से किया गया। निर्देशक इब्राहिम अलकाजी और बाद में अस्मिता नाट्य संस्था द्वारा इस नाटक के 1954 से लेकर 2009 तक 150 से ज्यादा मंचन भी किए गए।

दोस्तों बात करें गिरीश कर्नाड के अभिनय और निर्देशन की तो वंश वृक्ष नामक पहली कन्नड़ फिल्म थी जिससे इन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। हिंदी फिल्म उत्सव का निर्देशन भी इन्होंने ही किया था। बात करें इनके अभिनय की तो 1975 में आई फिल्म निशांत, 1976 में आई फिल्म मंथन और जीवन मुक्त और एक था टाइगर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय को काफी सराहा गया। दोस्तों 80 के दशक में आया मशहूर टीवी सीरियल मालगुडी डेज को कौन भूल सकता है। इसमें स्वामी के पिताजी का रोल गिरीश कर्नाड ने ही निभाया था।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, बात करें गिरीश कर्नाड की उपलब्धियों की तो उसकी एक लंबी कतार है, जिसमें मुख्य रूप से सन 1972 में नाटक तुगलक के लिए इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 में पद्मश्री से, 1992 में पद्म भूषण तथा कन्नड़ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करें हिंदी सिनेमा की तो 1980 में फिल्म फेयर पुरस्कार और इसके अलावा इन्हें कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है।

दोस्तों, गिरीश कर्नाड ने वो शोहरत हासिल की जो कई कलाकारों के लिए सपना होती है। 10 जून सन 2019 को 81 वर्ष की आयु में इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बात अभिनय की हो, लेखन की हो या निर्देशन की, गिरीश कर्नाड को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिलियत तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आवारा कुत्तों को जिनकी नसबंदी और टीकाकारी कर दी गई हो वापस शेल्टर्स में भेजने के अपने हुक्म को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आईएमडी ने अगले तीन दिन के लिए कौमी राजधानी में शदीद गर्मी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिले तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत के मैदानों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्की अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेर स्टोर, डेनमार्क के वजीर आजम मेती फरीदे रिक्सन, फिनलैंड के वजीर आजम पेतिरी ओरपो, आइसलैंड की वजीर आजम मोहतरमा क्रिस्टन फरोस्ता दोतिर और स्वीडन के वजीर आजम ओल्फ क्रिस्टर्सन भी होंगे। वजारत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा, माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिले तजदीद तवानाई, पायदारी, समुद्री मईशत, दिफा, खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा कि ताउन से आलमी गैर यकीनी सूरतहाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाज़े होगी। एक मजमून में जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खासतौर पर कही गई है कि बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी सूरतहाल, तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इकतसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के एक वाज़े मुतबादिल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाये हुआ है, दोनों वज़ीरे आज़म ने कहा कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है, लिहाजा बैन अल-अक़वामी ताउन और कसीर मुल्की निज़ाम की अकदार मजीद नुमाया हो गई हैं। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुनूब की एक जिम्मेदाराना आवाज के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाजे संग मील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दत तराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफी जोश व खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पहले की इन हिदायत को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि आवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क्यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वह इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों,

0: मुअम्मर अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशानकुन बताया और कहा कि यह लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीन अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सदर तो लाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इरादा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जाम स्ट्रेटेजिक साझेदारी का अहम सुतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी एतमाद, मुश्तरक इकदार और दिफा सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की एक आला सतह की एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मकाम पर शुरू हो गई है। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़रा आला सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रूपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये फी लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रूपये और डीजल की कीमत 96.07 रूपये, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की कीमत 96.11 रूपये फी लीटर हो गई है। भारतीय रेलवेज ने चेन्नई के नवाही रेल नेटवर्क को उसा देने के लिए अर्ककोनम चेंगल पट्टू लाइन को दोहरा करने के प्रोजेक्ट के लिए 993 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। रेलवेज की वजारत ने कहा है कि यह 68 किलोमीटर तवील रेल लाइन अहम चेन्नई नवाही सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है जो चेन्नई के साहिल को ताम्बरम चेंगल पट्टू और अर्ककोनम से मिलाता है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने कौमी राजधानी में अगले 3 रोज तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री के दरमियान रहा जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। कल रिज इलाके में वाके आईएमडी स्टेशन में दर्जा हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस जबकि सफदरजंग स्टेशन में 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन में 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: मिजोरम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर का काम शुरू हो गया है। एसआईआर से मुतल्लिक एक रोजा तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मिजोरम के आला इंतखाबी अफसर डॉक्टर लाल ओजामा ने आम लोगों और इंतखाबी कमीशन की उम्मीदों को पूरा करने की गरज से इज्तमाही कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी हैं। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी फाइनल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेहर स्टोर, डेनमार्क के वजीर आजम मेते फ्रीदे रिक्सन, फिनलैंड के वजीर आजम, आइसलैंड के वजीर आजम और स्वीडन के वजीर आजम भी होंगे। वजीर आजम मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दौर में बैन अल्अक्वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आवारा कुत्तों को जिनकी नसबंदी और टीकाकारी कर दी गई

0: भाटिया से जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट

0: एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
2: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
3: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर

सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं प्रतिमा शर्मा।
2: बिल्कुल, और मैं हूं गौतम झा, और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं।
1: बिल्कुल, और गौतम, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसा कि अभी समाचारों में भी हम सुन रहे थे कि आने वाले 3 दिन जो है येलो अलर्ट में है, क्योंकि लू चलने की बड़ी संभावनाएं हैं। और ऐसे में फलदार वृक्षों या हरे भरे वृक्ष हों, वो हमारे पंथी के लिए, हमारे राहगीरों के लिए एक बहुत ही बड़ा साधन बनता है छाया का।
2: बिल्कुल, पशु पक्षियों के लिए भी बात कर सकते हैं आप कि उनके लिए भी छायादार वृक्ष बहुत जरूरी है। और हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो किसान की बात कार्यक्रम का नाम ही है, तो और किसानों के जीवन में भी अगर आप देखें, बगान का बहुत ही महत्व है, चाहे आप आर्थिक दृष्टि से देखें और सामाजिक दृष्टि से भी आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य खेती की तुलना में बागवानी से अधिक लाभ प्राप्त होता है, और फल और फूलों की बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरता है।
1: और देखिए ना, फलदार पौधों का बागान केवल खेती नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत निवेश भी है। लेकिन अक्सर सही जानकारी के अभाव में किसान भाइयों को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है, उसमें हम जो आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो है नए बाग लगाने के लिए आवश्यक कदम। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएम शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। इस समय बड़ी भारी गर्मी चल रही है, आप सुन रहे थे समाचार के, आने वाले 3 दिन और भी ज्यादा, और आंधी तूफान भी आते ही हैं इस मौसम में।
3: बिल्कुल।
1: तो इस समय जिन्होंने बागान लगाए हुए हैं, अभी तो हम बात करेंगे जो नए लगाने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल यही है कि जिनके बागान लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह होनी चाहिए इस समय?
3: हाँ, देखिए, जब इतनी गर्मी पड़ती है तो उस वक्त कीड़े और बीमारियों का खतरा नहीं रहता, लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि सिंचाई, जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है ऐसे में, जल प्रबंधन और साथ ही साथ उसका संरक्षण भी, क्योंकि बागों में आपको हर तीसरे दिन या हफ्ते में 2 बार कम से कम सिंचाई इस वक्त आवश्यक है, तो इसका विशेष ख्याल रखें। और साथ ही साथ खास करके जो नीव वर्गीय फसलें हैं, जो रसीले फल होते हैं, उनमें तो पानी की बहुत आवश्यक है, तो हफ्ते में आप 3 बार भी पानी उसमें लगा सकते हैं। साथ ही साथ उस पर कुछ मल्च या पलवार बिछा दें, उससे फायदा ये होगा कि जो पानी आप दे रहे हैं वो जो है काफी टाइम तक रहेगा और नमी का संरक्षण करेगा, और पौधा जो आपका है वो तनाव में नहीं जाएगा। तो जल प्रबंधन का इस वक्त जो है सबसे आवश्यक कदम है, जिसको हमारे किसान भाई गंभीरता से लें, क्योंकि ऐसी गर्मी में अगर थोड़ा सा भी जड़ में इन्फेक्शन है हुआ पहले से, तो वो पौधा जल्दी मर जाता है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो इन सब बातों का ध्यान
1: रखें। हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे फोन नंबर बता दें, जो हमारे श्रोता, हमारे किसान भाई हमसे जुड़े
2: जी,
1: विषय पर जो भी बात करना चाहे तो नंबर बता दें।
2: बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा जी, और जो नए बागान लगाने के लिए इच्छुक हैं हमारे किसान भाई या जो भी, तो वो हमें कॉल करके अपने जहन में जो भी प्रश्न

0: है उनका इस विषय से संबंधित, वो हमें कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधा पूछ सकते हैं। उसके लिए आप दिल्ली से अगर बाहर हैं तो 011 एसटीडी कोड है, वो लगाना ना भूलें, और हमें कॉल करें 2342108183। और जो दूसरा लाइन है हमारा वो है 2342108185।
1: जी बिल्कुल, और कोशिश करें कि विषय से संबंधित ही आप सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, जो नए बागान लगाने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी और पहला कदम क्या होना चाहिए?
2: देखिए, दो तीन बातें बहुत आवश्यक हैं कि एक तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब हम बागवानी के बिजनेस में जाते हैं तो सबसे आवश्यक बात है कि जो पौधा है वो बहुत विश्वसनीय होना चाहिए
0: जी,
2: क्योंकि कई बार हम गलती कर जाते हैं कि नजदीक, या हम दूरी देख के डर जाते हैं, या बहुत महंगा पौधा मिल रहा है, कौन जाएगा कौन लाएगा। तो सबसे आवश्यक बात तो ये है कि आप प्लानिंग से पहले अपने पौधे की बुकिंग जरूर कराएं और यही वही पौधा लगाएं जो पौधा आपके क्षेत्र के लिए सही हो और उसकी वही प्रजाति जिसकी संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई हो। तो अच्छा पौधा, जो ट्रू टू टाइप जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो उस पौधे को आप सही जगह से प्रयोग करें जो आपका विश्वसनीय हो। और उसके बाद शुरू होता है कि जो स्थान, जिस स्थान पर हमें पौधा लगाना है, तो वहां की मिट्टी और पानी किस तरह का है
1: जी,
2: क्योंकि फल के चुनाव में ये बहुत आवश्यक बात है।
1: जलवायु कैसी है?
2: हाँ नहीं, खास करके पानी और मिट्टी में नमक जो होता है ये बहुत नुकसान करता है
0: जी।
2: तो अगर वहाँ नमक है थोड़ा ज्यादा है और बहुत गर्मी पड़ती है, शुष्क है, तो हम वहाँ खजूर या कटहल या जो आपका सीताफल, इस तरह के फलों का चुनाव करेंगे। और जहाँ पे साल्ट ज्यादा है वहाँ पे हम आम नहीं लगा सकते, नींबू वर्गी फल नहीं लगा सकते, अंगूर नहीं लगा सकते। तो वहाँ की मिट्टी और पानी दोनों में सबसे आवश्यक बात है कि नमक की जांच आप जरूर करा लें।
1: तो इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं।
2: पहला काम आप ये करें कि मिट्टी का परीक्षण सही तरीके से, उसका सैंपल लें कि खेत के चारों कोनों से ऊपर से 6 इंच मिट्टी हटा के, और नीचे से आप, क्योंकि फल लगाते हैं तो हम थोड़ा गहरा तक 45 सेंटीमीटर तक भी हम मिट्टी का सैंपल लेते हैं, और फिर उससे एक सैंपल बनाएं चारों कोनों से, सेंटर से लेके, और फिर उस सैंपल को किसी अच्छी प्रयोगशाला में उसकी टेस्टिंग करवाएं कि वहाँ का पीएच मान कितना है। क्योंकि खाद्य तत्वों की जो उपलब्धता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि मिट्टी का पीएच क्या है
0: जी।
2: और मिट्टी के पीएच को हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं कि जैसे गोबर की खाद को हम ज्यादा मात्रा में मिला दें तो उसको हम बफर हमारा बन जाता है, लेकिन जो नमक है, बट खास करके जो पानी का नमक है, क्योंकि आप गड्ढे खोद वक्त मिट्टी को चेंज कर सकते हैं लेकिन पानी को नहीं चेंज कर सकते। पानी जीवन भर आपको उसी पानी से उसमें सिंचाई करनी है, तो अगर वो नमकीन है तो बार बार जितने बार आप पानी देंगे तो जो नमक है वो आपका इकट्ठा होता रहेगा और वो पौधे को चलने नहीं देगा। तो इन बातों को ध्यान रखना बड़ा आवश्यक।
0: डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भूमि की तैयारी, या हम बात करें कि गड्ढों की खुदाई, भराई और दूरी कितना महत्व रखता है बागवानी के लिए?
2: बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो ये है कि जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो अकेली उसमें गहराई नहीं होती
0: जी।
2: मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कितना है वहां का, है ना, उसका पीएच मान, इसी, तो एक तो मिट्टी की ये बहुत आवश्यक बात हो गई। साथ ही साथ क्या होता है कि जहां तक आपने पूछा उसकी दूरी, क्योंकि दूरी बहुत आवश्यक है। अगर आपने बहुत नजदीक लगा दिया, जैसे नींबू है, नींबू को आपने अगर उसकी रिकमेंडेड डिस्टेंस क्लोज लगा दिया तो उसमें इतने कांटे होते हैं कि दोबारा आप उसमें कभी घुस नहीं सकते, तो तुड़ाई कैसे होगी? और पौधे अगर आपस में लड़ते रहेंगे, उनकी शाखाएं अगर आपको छूती रहेंगी तो वहां छाया रहेगी, और छाया में बहुत सारी बीमारियां, फल भी नहीं आते, आते हैं तो उनका रंग विकसित नहीं होता, वो पूरी तरह पकते नहीं है। तो इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार,
3: हरियाणा से बोल रहा था जी।
1: जी हरियाणा से, कौन सा बोल रहे हैं?
3: कृष्ण बोल रहा हूँ जी, कृष्ण सटवी।
1: कृष्ण जी, अच्छा पूछिए सवाल।
3: सवाल ये जी, मेरा पेड़ है काम बदाम का जी।
1: अच्छा,
3: 5-4 साल हो गए जी, लग गया फल नहीं आता जी।
1: बादाम का पेड़ है इनका?
3: अरे एकदम मणका है जी।
2: देखिए ऐसा है, बादाम हमारी जलवायु का फल नहीं है
1: जी।
2: ठीक ठीक है, बादाम अखरोट जो है ये फल जो है पहाड़ी क्षेत्रों का है, जहाँ गर्मी का तापमान 35-37 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। हमारे यहाँ बादाम का पौधा तो आप लगा सकते हैं, हो सकता है उस पर फल भी लग जाए, लेकिन जैसे ही तापमान 38-39 डिग्री के ऊपर जाता है तो वो सारी गिरी जल जाती है, काली हो जाती है, है ना। तो पौधा तो आप लगा सकते हैं लेकिन उससे फल ले पाना असंभव है। तो जो हमारी अपनी जलवायु के फल हैं आपके लिए नींबू।

0: वर्गीय फल है, आम है, अमरूद है, जो हमारे अपने फल है इस जलवायु के लिए, अगर आप उनको लगाएंगे तो बेहतर होगा
1: जी।
2: एक जमन गाते हैं जी, उसके भी नाम से जी तो साल का हो गया जी।
1: चलिए कोई बात नहीं, आपने जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसका ध्यान रखें, क्योंकि जलवायु जहां की जैसी होगी तो फल और वृक्ष उसी तरीके से लगाए जाते हैं।
0: बागवानी जब आप करें तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय होते हैं कृषि के या आईसीआर के अनुसंधान केंद्र होते हैं, एक बार उनसे राय जरूर लें कि कौन सी प्रजाति लगाएं, कौन सा हम फल लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि ये ऐसा व्यवसाय है कि अगर एक बार आपने गलती कर दी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने एक पौधा लगा लिया, 4-5 साल हो गए, तो अब आपने एक बच्चे की तरह उसको पाला और फिर आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये ऐसा व्यवसाय है कि शुरुआती गलती इसमें नहीं होनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल।
2: अच्छा, जामुन का पेड़ है, कई साल का होगा?
0: हाँ देखिए, जामुन का मैं आपको और बताऊं हमेशा कि जब भी हम पौधा खरीदते हैं वो हमेशा उस प्रजाति का होना चाहिए जो प्रजाति हमारे लिए सुविधाजनक है। बीजू पौधा हमेशा बहुत लंबा टाइम लेता है और उसमें रिस्क होता है कि उसका फल खाने लायक होगा कि नहीं होगा। फल तो उस पर आएगा, अभी नहीं आएगा, 5 साल 6 साल 8 साल के बाद आएगा, लेकिन होता यह है कि जो बीजू पौधे होते हैं खास करके, उनकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती, तो वो उस पर फल आएगा वो आप जो है बेचने लायक होगा कि नहीं होगा, ये भी उसमें भी डाउट है, क्योंकि जब अच्छी प्रजाति आप लगाएंगे तो उसमें गूदा ज्यादा होगा, गुठली छोटी होगी, तो उसको खाने का मजा भी आएगा। तो जो भी पौधा आप आगे से लगाएं तो किसी प्रमाणिक नर्सरी से लें।
1: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी डॉक्टर साहब, आगे हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये तो रही, आपने बताया कि गड्ढा कैसा होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्यों आवश्यक होती है, उस पर बात चल रही थी।
0: हाँ, तो पौधे से पौधे की दूरी इसलिए आवश्यक है कि किसी पौधे का जो फैलाव है वो इतना ज्यादा ना हो कि एक की शाखाएं दूसरे में घुस जाए, उससे अगर छाया हो जाएगी, और पौधे जो है हमेशा धूप में अपना भोजन बनाते हैं, तो जो पत्तियां जो शाखाएं जो है आपकी छाया में चली जाएंगी वो प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि वहां खाना नहीं बनता और फल भी वहां छोटे रह जाएंगे, गिर जाएंगे, या उन पर कलर विकसित नहीं होगा, या फिर उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। तो
1: बहुत जरूरी बात हाँ। बताएं डॉक्टर साहब ने।
3: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं सिंचाई पर, क्योंकि इस समय अगर नए बागान लगा लिए हैं किसानों ने तो सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या वैज्ञानिक विधि से सिंचाई करनी है तो कौन कौन सी विधियां होनी
0: चाहिए? देखिए, एक बात तो बहुत मोटी बात समझते हैं हमारे किसान भाई, कोई फल हो जब आप पानी दे रहे हैं, पानी किसी भी सूरत में उसके तने को न छुए, कोई भी फसल हो, ये जो है फंडामेंटल रूल है बागवानी का, कि जब हम सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई जड़ों में करेंगे, तने को नहीं छूने
3: जी।
0: तो दूसरी चीज ये है कि सिंचाई की बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे टपक सिंचाई है जिसको सब लोग रिकमेंड भी करते हैं, उससे पानी की भी बड़ी बचत होती है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, उपज भी बढ़ती है।
1: ड्रिप इरिगेशन
0: जिसको किसान भाई बोलते हैं, तो अगर वो प्रबंध वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कभी भी बहाव विधि से सिंचाई नहीं देंगे कि आपने एक तरफ से खोल दिया और पूरा बाग भर रहा है, उससे क्या पानी का भी नुकसान है और जहां जहां पानी जाएगा वहां खरपतवार भी होंगे, फिर उस पर लागत भी ज्यादा आती है। तो बेहतर है कि उसमें नाली बनाएं सिंचाई के लिए, अगर आपके पास डिप्लीकेशन नहीं है तो उस नाली में आप पानी दें, और बेहतर ये होगा कि दोनों लाइनों के बीच में नाली बनाएं और व्यक्तिगत तौर पर उस नाली से पौधे को दोनों साइड जोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि मान लो एक पौधे में बीमारी आती तो वो दूसरे में नहीं जाती, हर पौधे में व्यक्तिगत तौर पर पानी लग रहा है और जितना पानी देना है उतना ही देना, ऐसा नहीं कि आपने भरा छोड़ दिया। बहुत सारे हमारे आम के बागान बड़े बड़े लोग हैं जिनके बागों में आजकल गोंद निकलने लग गया है या खड़े पेड़ सूख रहे हैं
3: जी।
0: क्योंकि वो उनके पास पानी बहुत है, वो खोल देते हैं फिर वो भर जाता है तालाब की तरह, जड़ के पास अगर डिप्रेशन हो जाएगा तो पानी लंबे टाइम तक भर गया तो फिर उससे बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी देना
1: जी।
3: डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब पौधे लगा रहे हैं तो उर्वरकों का प्रबंधन किस प्रकार से करें कि पौधे स्वस्थ और मजबूत हों?
0: देखिए, हर फल का जो पोषण प्रबंधन है वो अलग अलग है
3: जी,
0: क्योंकि उनके फूल खिलने का समय अलग है तो उनमें खाद डालने का समय भी अलग अलग है।
3: बिल्कुल।
0: तो एक

0: जगह पे आप बाग लगा रहे तो एक बार वहां ढेंचा या कोई हरी खाद जरूर लगा लें, उसी में पलट दें, तो उससे क्या होगा खेत की जो फर्टिलिटी है हाँ उसमें जो खाद तत्व है वो जो है ठीक होंगे। क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है कार्बनिक पदार्थ का मिट्टी की जो संरचना को, जो जो पानी होता है, पानी को पकड़ने की क्षमता जो है कार्बनिक पदार्थ से बढ़ती है। कि आपकी मिट्टी अगर हल्की है तो उसमें पानी नहीं रुकेगा, बहुत भारी है तो ज्यादा रुकेगा। तो कार्बनिक पदार्थ हम इसलिए लगाते हैं, उससे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, और उससे दूसरे खाद्य तत्व भी मिलते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी मिलते हैं,
1: उर्वरा शक्ति भी बढ़ती
0: है। हाँ, उर्वरा शक्ति के साथ साथ फिर बाकी की जो डोज आपकी होती है वो हम उर्वरकों से देते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों को एक और आगाह करना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में नमक की समस्या हो तो वहां पर म्यूरेट ऑफ पोटास जैसी जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि उनमें क्लोराइड होता है तो वो और ज्यादा बढ़ाता है, तो वहां सल्फेट ऑफ पोटास आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। खास करके आम में, आम बहुत है संवेदनशील है लवण के प्रति, नमक के प्रति। तो सब फलों के लिए उनकी संस्तुति की गई है, उनका समय निर्धारित है। जैसे हम कहते हैं आम की अगर जो है हमें पोषण प्रबंधन करना हो तो जून के महीने में, जब जून या जुलाई में जैसे ही तोड़ाई खत्म होती है तो बरसात के साथ हम उसमें पोषण प्रबंधन देखते हैं।
2: जी,
0: नींबू

0: 400 ग्राम फास्फोरस, 400 ग्राम पोटास उसमें मिलाते हैं फल सेट होने के बाद। क्योंकि अगर जड़ सुसुप्ता अवस्था में है, जैसे नींबू वर्गी फल क्या होते हैं कि सर्दियों के दिनों में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उनकी जड़ों की जो सोखने की क्षमता कम हो जाती, सोई होती हैं, तो ऐसे में आप कुछ भी खिलाओगे उनको, कुछ भी डालोगे तो वो जमीन में नीचे चला जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो जब जड़ एक्टिव हो तब हम उसमें खाद दें, और कभी तुड़ाई के आसपास खाद दें तो उसकी जो अवस्थाएं हैं और उसकी जो मात्रा है, ये दोनों की संस्तुति क्षेत्र के हिसाब से, फल के हिसाब से की जा चुकी है, और सही प्रबंधन अगर आप करेंगे तो फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और यहां तक उसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी होगी। जैसे कैल्शियम है, बोरॉन है, जिंक है, तो ये इस तरह के जो वो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आपको देना ही चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप अपना रेडियो सेट थोड़ा सा दूर कर ले क्योंकि जो मेरी आवाज है मुझे बैक होकर आ रही है अब थोड़ा सा। हाँ जी, आप बताइए, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछें।
3: नमस्ते मैडम जी।
2: जी नमस्कार,
3: मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ।
2: जी जी, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका।
3: और डॉक्टर साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने खेत में केले का पेड़ लगा रखा है।
2: हाँ जी।
3: जब उसमें फल लगता है तो जब हम उसको केले को पकाते हैं तो उसका पकने के बाद उसका खट्टा खट्टा केले होते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है?
0: क्या खट्टा हो जाता है?
3: हाँ, केला खाने पर खट्टा लगता है,
2: खाने पर खट्टा लगता है वो केला।
0: अच्छा अच्छा,
2: ठीक है राजेश।
0: राजेश जी देखिए, ऐसा है कि जम्मू में थोड़ा सा एक दो किसान है जिन्होंने वहाँ ग्रैंड नाइन की खेती शुरू की थी, क्योंकि उत्तर भारत के लिए एक वही प्रजाति है जिसको लोग कहते हैं आप लगा सकते हैं। अन्यथा जो केला है, केला में सबसे जो है तुषार जो होता, पाला जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और आपने जो केला लगाया है वो पता नहीं कहां से लगाया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी ऐसी प्रजाति आप न लगाएं कि आपने कहीं सस्ता मिल गया या अफ्रीका मिल गया या कहीं नजदीक मिल रहा है, आपने आलस कर लिया। तो अगर आप कहते हैं कि अगर हम आम बोएंगे तभी हमें आम मिलेगा, तो बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता का पौधा आप लगाएं। ग्रैंड नाइन का अगर आप लगाएंगे तो इस तरह की समस्या नहीं होगी, और जब फलों में हल्का सा पीलापन आए तो उसको तोड़ के आप घर में रख दें, और फिर जब वो पक जाएगा उसके बाद आप उसको खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपके यहाँ पे पर्याप्त नमी हो, क्योंकि केला जो है सूखी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करता, जैसे आजकल की जो गर्मियां पड़ रही हैं केले के लिए उचित नहीं है। तो मुझे पता नहीं कि आप जम्मू में किस बेल्ट से हैं, जैसे राया की बेल्ट है, सांबा की बेल्ट है, ये तो पूरी तरह सूखी बेल्ट है। कुछ क्षेत्र है जम्मू का जहां पे थोड़ा नमी ज्यादा रहती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन जो वेरायटी जिसकी संस्तुति है वहां के विश्वविद्यालय में आप संपर्क करें, और जिस प्रजाति की संस्तुति वो लोग कर रहे हैं आप वही लगाएंगे तो बेहतर होगा।
2: और देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं नए नए अनुसंधान शोधों द्वारा तमाम जो किस्में ही ईजाद करते हैं, और चाहे वो उनकी जलवायु के अनुसार उनको बताते भी हैं।
0: इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए जगह जगह पर सरकार ने जो है केंद्र खोले हुए, क्योंकि वहां की जो लोकल जरूरत है उसके हिसाब से प्रजातियां विकसित की जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से उनकी तकनीकी भी विकसित की जाती है।
2: आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी विषय पर लेकर दोबारा आपके पास आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है और साथियों, आज का हमारा विषय है नए बाग लगाने के लिए आवश्यक कदम। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर एम शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि गड्ढे खोदने हैं, तो किस तरीके से गड्ढे खोदने हैं, किस तरीके से उसकी संरचना बनानी है जिससे कि पौधा सही तरीके से जड़ पकड़े और सही लग जाए?
7: देखिए, मैंने कहा कि बागवानी को बहुत सावधानी पूर्वक उसकी शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर के होता यह है कि किसान भाई पौधा ले आता है, उसके बाद सोचता है कि मुझे लगाना कहाँ है
8: जी,
7: तो ऐसे में पौधे के मरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये जो आजकल का जो समय चल रहा है, ये प्लानिंग का है। यहाँ आपको योजना बनानी है कि मुझे किस खेत में लगाना है और किस तरह से। फिर सबसे पहला काम होगा, जैसे हमने कहा मिट्टी आपने परीक्षण करा लिया, पानी का भी हो गया, फिर होता है कि हमें ये फल लगाना है, इतनी इतनी दूरी पर हमें लगाना। तो सब क्योंकि ये गर्मी का जो मौसम है, ये बड़ा वरदान है गड्ढे के लिए कि मान लो वहां कोई बीमारी है या कोई कीट है अंदर, तो आप क्या काम करेंगे कि एक उसका रेखांकन करेंगे अपने खेत में, कितनी कितनी दूरी पर लगना है, फिर वहां पे 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे। उस गड्ढे को खोद के उसकी मिट्टी बाहर छोड़ देंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन अगर उसमें धूप लग जाएगी तो बहुत सारे कीड़े, बीमारी, अंडे उनके स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सॉइल सोलराइजेशन हम करते भी हैं, जैसे जिस मिट्टी का को प्रयोग करना है, कई बार हम पॉलिथीन की शीट में गर्मी में छोड़ देते हैं ताकि वो उसमें कोई हानिकारक जीवाणु उसमें न रहे, तो उसकी मिट्टी को हम खोद के बाहर कर दें, कम से कम 15 दिन तक उसको ऐसा ही हम सूखने दें, गड्ढे में धूप लगने दें, तो उससे क्या होगा कि उस गड्ढे में वो स्वतः ही सोलराइजेशन हो जाएगी
8: जी।
7: और उसके बाद जब उसमें 10-15 दिन धूप लग जाए, उस वक्त उसके बाद हम उसमें 20 से 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद
8: जी,
7: वो कुछ थोड़ी सी मिट्टी हम कम कर देते हैं और बाकी बची मिट्टी में अच्छी सड़ी गोबर की खाद मिला के हम गड्ढे को भर देते हैं। तो ये हो गया कि जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब यहां से हमारा अगला काम शुरू होगा। तो आपने गड्ढा भर दिया, भरने के बाद हो सके तो एक हल्की सिंचाई दे दें ताकि अगर मिट्टी नीचे बैठती है तो आप मिट्टी और डाल दें, क्योंकि पौधा लगाने के बाद अगर मिट्टी बैठ गई तो आपका पौधा की जड़ें खुल जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तो उसमें एक हल्की सिंचाई या एक बारिश होने का इंतजार करते हैं कि एक बारिश हो जाए और उस वक्त अगर मिट्टी धस रही है नीचे को तो हम उसमें और जो है उसमें मिट्टी डाल सकें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी अगर बहुत हल्की है तो तालाबों की मिट्टी थोड़ी मिला लें और बहुत भारी है तो थोड़ा सा रेता भी मिला लें, तो उससे क्या होगा कि जो है पानी का संचार उसमें ठीक रहेगा,
8: बिल्कुल
7: भरेगा भी नहीं और बहुत जल्दी नीचे भी नहीं जाएगा। तो गड्ढे भरने का काम ये बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि गड्ढा अगर आपने सही तरह खोद के भर दिया है तो आपका पौधा 3 साल में आपसे बड़ा हो जाएगा,
8: बिल्कुल,
7: कि उसका जड़ का विकास इतना अच्छा होता है। तो उससे क्या होगा, अदरवाइज हम छोटा सा गड्ढा करके लगा देते हैं फिर इंतजार करते हैं 8-8, 10-10 साल तक कि पौधे की बढ़वार नहीं हो रही
8: जी,
7: क्योंकि उसको जड़ों को उतनी हवा, उतनी अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए गड्ढे का बहुत बड़ा योगदान है। तो और साथ ही साथ जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो हम इंतजार करते हैं बारिश का,
8: बिल्कुल,
7: कि जैसे ही बारिश होगी तो हमने पौधे पहले से हमें बुक कराने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गड्ढे खोद लिए, पौधे का कोई इंतजाम नहीं हुआ, तब भी बेकार हो गया। तो ये सब बड़ा जो है योजनाबद्ध तरीके से हमें चलना पड़ता है। तो जिस भी संस्थान से आपको पौधे लेने हैं, इस प्रमाणिक नर्सरी से आपको पौधे लेने हैं, उसको आप कह के रखेंगे कि बारिश पहली बारिश होगी तो जुलाई का महीना उत्तम माना जाता है, जुलाई और अगस्त 2 महीने, क्योंकि नमी पर्याप्त रहती है,
6: हालांकि सीजन भी शुरू हो जाता है जी।
7: क्योंकि जो सदाबहार फल वृक्ष हैं, आम, लीची, अमरूद वगैरह, इनको हम फरवरी मार्च में भी लगाते हैं, लेकिन मार्च के बाद आप देख रहे हैं कि तापमान इतना तेजी से बढ़ता है,
8: बिल्कुल,
7: तो वहां आप अगर चूक गए, कहीं पानी नहीं दे पाए।

0: पाए, कोई बात हो गई, आप घर पे से आपको कहीं जाना पड़ गया, तो एक दो दिन की का भी जो अंतराल हो गया तो कई बार मृत्यु दर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये आवश्यक होता है कि हम जुलाई अगस्त में ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप इस सीजन में लगाएं, क्योंकि वातावरण में भी नमी रहती है, जमीन में भी नमी रहती है, तो आप थोड़ी सी केयर कम भी करेंगे तो पौधा आपका मरेगा नहीं इतनी जल्दी। तो ये सब बातें बहुत आवश्यक।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर साहब जैसे एक बार पौधा हमने लगा लिया फिर पौधे बड़े होते हैं तो उसमें कटाई छटाई का भी महत्व है?
0: बहुत आवश्यक है ये। देखिए खास करके मैं बहुत सारे किसान भाइयों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं साहब आपने मौसमी लगवाई थी अब उस पर बड़े बड़े खट्टा आने लग गए। क्यों होता क्या है कि जो कलमी पौधे होते हैं, कलमी पौधे की जहां कलम लगी उसके नीचे से कभी किसी शाखा को अलाउ नहीं किया जाता, आपने लगा दिया और छोड़ दिया, क्योंकि वो नीचे का जो बीजू पौधा है उसकी अपनी जड़ है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तो बार बार आपको उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है कि प्योंद के नीचे से कोई शाखा नहीं निकलनी चाहिए। कम से कम एक साल तक तो आपको बहुत ध्यान रखना है। जब एक बार आपका शाखा बढ़ गया फिर वो नहीं बढ़ने देता है, तो ये बहुत आवश्यक है। एक तो आपने पौधा लगाया, लगाने के तुरंत बाद उसमें आप स्टेकिंग जरूर करें कि पौधा टेढ़ा ना चले।
1: बिल्कुल,
0: और इस तरह से पौधे में खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखें और जल प्रबंधन का ध्यान रखें। तो एक साल तक अगर आप वो पौधा आपका सस्टेन कर जाता तो फिर जो है फिर वो अपने आप मजबूत हो जाता, फिर आप उसकी केयर थोड़ी कम भी करते हैं तब भी वो अपना बढ़ता रहता है।
2: और डॉक्टर साहब जैसे बागबानी की बात हो रही है, हमारे जो नए बाग लगाते हैं या पुराने बाग हैं, बहुत सारे किसान भाई का जो आय का अर्जन इन्हीं से होता है, तो कैसे लाभकारी सिद्ध होती है किसान भाइयों के लिए बागबानी?
0: देखिए जितने भी बड़े बड़े विद्वानों ने डॉक्यूमेंट से कि किसानों की आय को कैसे
2: दुगना
0: किया जाए, नीति आयोग की हम बात करें या वैज्ञानिक लोगों की बात करें, तो उसमें एक शब्द होता है विविधीकरण, कि एक फसल आपने लगाई वो आपकी फेल हो गई तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, और विविधीकरण बगैर फल और सब्जी के पूरा नहीं होता। बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे अंडे का भी है, दूध का भी है, पोल्ट्री का भी है, मीट का भी है, साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर को अगर आप विविधीकरण उसमें लाना चाहते हैं तो फल और सब्जी के बगैर जो है नहीं होता। दूसरा ये है कि हमारे जैसे किसान भाई जिनके पास छोटे खेत हैं, जैसे वो आम लगाने से डरते हैं कि फिर बच्चे क्या खाएंगे, तो जब आपने आम लगाया तो बीच में खाली जगह है उसमें आप दाल लगाएं, सब्जी लगाएं, तो आपको जब तक उससे बाग से आय नहीं होती तब तक आप जो है दूसरी सब्जियां उसमें लगा के
2: आपको दुगना देगी।
0: हाँ, वो आपको जो है तब तक आपको वो।
2: तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जो आसानी से हो जाए?
0: बेल वाली सब्जी न लगाएं,
2: अच्छा,
0: क्योंकि वो पौधे को पकड़ती है, उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, जैसे गोभी है, मटर है, कुछ ऐसे कुछ दूसरी सब्जियां, दूसरी फसलें हैं, चना है, मसूर है, मटर है, दालें बहुत अच्छी, अगर आप दालें लगाते हैं तो उससे आपके पौधे को भी फायदा होगा जो पौधा वहां लगा हुआ है। तो जो छोटी कैनोपी की सब्जियां हैं भिंडी न लगाएं उसमें, तो जो जिनकी कैनोपी छोटी रहती है कि जो पौधे को में अवरोध उत्पन्न ना करें, तो ऐसी फसलें आप उसमें लगा के और ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों के लिए?
0: मैं अपने सारे किसान भाइयों को कहूंगा अगर आप बाग नहीं लगा सकते तो कम से कम एक पौधा अपने परिवार के लिए जरूर लगाएं, ताकि आप स्वस्थ फल खा सकें और आपकी जो किचन गार्डन की जो जरूरतें हैं वो कम से कम अगर आप एक भी नींबू लगा लेते हैं तो आपके साल भर में आप किचन गार्डन से अपना नींबू खा सकते हैं और जो शुद्ध होगा।
2: और साथ ही साथ अगर एक पेड़ भी लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो उससे छाया तो मिलेगी, जैसे कि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना, और ये तो हमारी सरकार भी कहती है
0: कि वातावरण को शुद्ध अगर करना है तो पौधा तो बहुत आवश्यक।
1: डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी जो कि नए बाग लगाना चाहते हैं और जिनका बाग है पहले उनको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक थे फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली
2: से। और हम कहते हैं कि मेहनत की मिट्टी में जब ज्ञान का पानी मिलता है तभी किसान के सपनों का बाग भी खिलता है।
1: जी बिल्कुल,
2: तो वही है जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताई, बहुत सारी जानकारियां दी, आप उनका ध्यान रखें, उसी के अनुसार करें, और कोई भी पौधा खरीदते हैं पहले से बुकिंग करा लें, गड्ढे सही तरीके से करें और सिंचाई व्यवस्था सही बनाए रखें।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और पौधा लें तो आप जो सरकारी संस्थान है वहां से लें। और कार्यक्रम
2: के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर,
2: और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
1: और गौतम झा ने।
2: अब दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओरपो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टोन फ्रॉस्टडॉटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले।
2: नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारे संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किउल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशेष अतिथि श्री हरविंदर मांकड़, जो एक जाने माने कार्टूनिस्ट, चित्रकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। क्योंकि आज है मंगलवार, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं AIR एट 90 के अंतर्गत हमारा स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। सर, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं।
1: नमस्कार, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस आकाशवाणी ने मेरा बचपन सवारा, आज मैं उसी के स्टूडियो में बैठकर आकाशवाणी में आपसे बातें कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। मैं सुनने वालों को बता दूं कि आज के विशेष अतिथि मोटू पतलू कार्टून को रचने वाले हैं, उसके लेखक हैं, जो पहली बार लोटपोट पत्रिका में प्रकाशित हुई। आप लगातार 46 वर्षों से हर सप्ताह मोटू पतलू की नई कॉमिक श्रृंखला रचने वाले दुनिया के एकमात्र कलाकार और लेखक हैं। आपने मात्र 15 वर्ष की आयु में कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। आपको अमेरिका की विक्टोरिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कला और संस्कृति में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप आकाशवाणी के लंबे समय से श्रोता हैं और आकाशवाणी पर प्रोग्राम भी करते आए हैं। आज आप हमारे बीच हैं, रेडियो से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ यहां अब से लेकर 4 बजे तक साझा करने के लिए। सर, ये हमारा सौभाग्य है। एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं, और आपसे जानना चाहती हूं कि जैसा आपने अभी कहा कि आकाशवाणी बचपन से आपके साथ है, आपका साथी है, तो कुछ बातें, कुछ यादें उनके साथ करते हैं शुरुआत।
1: बचपन क्या है, जब मैं अपने बचपन की बात करता हूं तो ये करीब करीब सन बन जाता है 70 और 75 के बीच का।
0: जी,
1: अकेला था, माता पिता काम पे चले जाते थे, तो उस समय और कोई भी चीज मनोरंजन का हमें नहीं साधन मालूम पड़ता था। तो मेरा भाई बना, मेरी बहन बनी, मेरा साथी बनी आकाशवाणी।
0: वाह,
1: मुझे बहुत प्यारा लगता था। सबसे ज्यादा वो उसकी जो सुबह सुबह उठते ही जो सिग्नेचर ट्यून जिसको कहा जाता है,
0: जी जी,
1: वो जब सुबह सुबह बजती थी ऐसे लगता था कि जैसे कोई एक बहुत ही पवित्र किसी मंदिर की घंटियां बज रही हैं।
0: क्या बात,
1: मुझे अच्छी तरह याद है। ये धुन राग शिवरंजनी पर आधारित थी और इसको वाल्टर काफमैन ने तैयार किया था, कंपोजर थे वो।
0: जी जी जी।
1: और बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, क्योंकि मैं बहुत गहरा उसके अंदर जा चुका था, तो मुझे ये मालूम था इसको जो वायलिन बजाया है वो महली मेहता ने बजाया था, जो अच्छा। उस समय के जुबिन मेहता के पिता थे, जो म्यूजिक सिंगर के।
0: जी जी।
1: तो जिस चीज को ऐसे ऐसे लेजेंड्स और ऐसे ऐसे महान लोगों ने रचा हो,
0: बिल्कुल,
1: वो मेरा बचपन उसी के साथ जुड़ा, उसी के साथ उसके प्रोग्राम, उसके गाने, गीत और उसके हवा महल प्रोग्राम, खूबसूरत जयमाला प्रोग्राम, विविध भारती की अगर बात करें तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे, और युववाणी मिले युवकों के लिए जो आता था।
0: बिल्कुल,
1: मैं एक डायरी बना के रखता था और मुझे मालूम होता था सुबह 6 बजे ये आएगा, 6:30 बजे ये आएगा, 7 बजे खबरें आएंगी, जो मतलब जो जो उस समय हुआ करता था।
0: बिल्कुल, जैसे हमारे पास क्यू शीट होती है, आपके पास आपकी डायरी होती।
1: हाँ, उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं ना, तो वो एक डायरी की तरह मैं लिखता था। और मुझे याद है कि वो एक भारी भरकम आवाज,

0: नमस्कार, मैं देवकी नंदन पांडे बोल रहा हूँ। आज के समाचार इस तरह थे। वो जब आवाज आती थी तो ऐसे लगता था कि मानो आप एक अलग ही युग में हैं।
1: जी
0: जी,
1: बहुत खूब सर, आपसे बातचीत का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। आप ही की पसंद के गीत हम आज अपने लिसनर्स को सुनवा रहे हैं। तो पहला गाना जो सर मुझे बता चुके हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। दो रास्ते फिल्म से है, आप ही की पसंद का, ये रेशमी जुल्फें।

0: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: जी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बैक टू बैक दो गाने क्यों सुनवाए, लेकिन इन डायलॉग्स के पीछे भी एक कहानी छुपी है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से जुड़ी। आज आकाशवाणी के संग यादों के रंग में हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि, श्री हरविंदर मांकड़, जो एक जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। मोटू पतलू आपने जरूर पढ़ी होगी, देखा होगा ये कार्टून। इसके रचयिता हैं, इसको लिखने वाले हैं और इसको बनाने वाले भी हैं। तो हरविंदर जी, मैं जानना चाहती हूं कि ये जो डायलॉग्स अभी हमने सुने, इनसे जुड़ी आपके पास एक कहानी है। मैं जान चुकी हूं, मैं चाहती हूं कि हमारे श्रोता भी उसे जाने।
2: देखें, पुरानी बात है, आज आकाशवाणी को अगर 90 साल होने वाले हो गए हैं
1: जी,
2: उसमें से उन 90 सालों में जो यादें मेरे पास हैं, उनमें से ये सबसे खूबसूरत याद है। उन दिनों क्या हुआ करता था, टेप रिकॉर्डर नए नए आए थे
1: जी,
2: प्रचलन में आ गए थे, लेकिन डायलॉग्स, क्योंकि मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज का मैं दीवाना था।
1: अच्छा।
2: एक भारी भरकम आवाज और उसमें एक खास अदा,
1: बिल्कुल,
2: पर हमें वो रिकॉर्ड किए हुए नहीं मिलते थे, मतलब कहीं से इकट्ठी कलेक्शन नहीं मिलती थी। तो जैसे ही आकाशवाणी के रेडियो विविध भारती पे या किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये वाले गाने आते थे, खास तौर पर जैसे अभी आपने सुनाया,
1: बिल्कुल,
2: तो मैं जैसे ही उनका डायलॉग पार्ट आता था वो रिकॉर्ड कर लेता था।
1: अच्छा।
2: और भी काफी फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स पार्ट्स हैं, काफी गानों सिलसिला में हैं और फिल्मों में भी हैं।
1: बिल्कुल।
2: वो रिकॉर्ड करते करते मेरी एक कैसेट के अंदर इनके भी और कलाकारों के भी जब रिकॉर्ड वर्जन जो बीच में होते थे वो मैं अलग अलग पीस रिकॉर्ड कर लेता था और उसकी एक कैसेट मैंने बनाई और ऊपर मैगजीनों से फोटो वोटो काट के उसका कवर बनाया।
1: क्या बात है।
2: तो वर्षों बाद जब मैं अमिताभ बच्चन संग मिला, जब मैंने शोज किए उनके साथ, तो तब मैंने उनको वो कैसेट दिखाई। मैंने कहा सर ये मैं मैनुअल बनाई थी इसको। तो आप सोचिए कि आकाशवाणी के एक सुर ताल के बीच में से निकले हुए वो शानदार लफ्ज मेरे लिए एक इतिहास बने, मेरे लिए गोल्डन, वो एक अचीवमेंट बन गए।
1: बिल्कुल। और ये एक हम कह सकते हैं कि आप फैन हैं अमिताभ जी के और आपने आकाशवाणी आप सुनते आए हैं, आकाशवाणी के भी आप फैन हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपने उनके डायलॉग्स रिकॉर्ड किए और देखिए संजोग आपको उनसे मिलने का अवसर मिला और आप इतने काबिल हैं, ये हम बता ही चुके हैं।
2: ये मोहब्बत है ना। मुझे एक गीत याद आता था, जाने कि लोग मोहब्बत किया करते हैं।
1: जी, जी,
2: तो मुझे अब मालूम पड़ता है कि मोहब्बत इसलिए की जाती है कि जो आपका रोल मॉडल हो एक ना एक दिन पूरी कायनात अगर आप दिल से चाहो तो उस तक ले ही जाती है। जरिया आकाशवाणी बना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए आप आकाशवाणी के भी फैन हैं, तो आप आज यहाँ हमारे स्पेशल गेस्ट बनकर आए हैं।
2: क्या बात है, क्या बात।
1: तो जैसा आपने कहा, आप ही की पसंद का एक और गाना, क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है, तो महबूब की मेहंदी फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सबके लिए भी और सर आपके लिए भी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के संग यादों के रंग प्रोग्राम में, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 खूबसूरत साल। और हमारे साथ इसी उपलक्ष में है एक विशेष अतिथि, श्री हरविंदर मांकड़, जो जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, पटकथा लेखक भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। तो हरविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कमेंट्री से जुड़ा क्या आपका कोई ऐसा याद है या फिर कोई ऐसा वाक्या है जो आप हमारे लिसनर्स के साथ यहाँ बांटना चाहेंगे?
2: देखें, अगर हम बात हिंदुस्तान की करें, सरजमीन हिंद पे अगर सबसे ज्यादा पसंद किए जाना खेल है क्रिकेट।
1: जी जी,
2: क्रिकेट और हॉकी ये हमारी मतलब रूहें रवा हैं, हमारी नसों में बसे हुए हैं।
1: जी,
2: और जब क्रिकेट हुआ करता था ना, तो उस समय जो कमेंट्री रेडियो या ट्रांजिस्टर पे आती थी, आहा हा हा, ऐसे लगता था कि मानो हम मैदान में बैठे हैं और बॉलर बॉल जो है वो मुझसे पूछ के ही करेगा। वो इतनी करीब चले जाते थे।
1: बिल्कुल।
2: सुशील दोषी हुआ करते थे, जो पुराने जानने वाले हैं हिंदी के कमेंटेटर, जसदेव सिंह जी हुआ करते थे, बहुत बढ़िया कमेंटेटर। नरोत्तम पुरी हुआ करते थे, बहुत अच्छे कमेंटेटर। ये लोग कमेंट्री एक इस तरह करते थे कि मानो आपके सामने इन्होंने बहुत बड़ी स्क्रीन खोल दी
1: जी,
2: और आप उसके ऊपर पूरा मैच विजुअल देख रहे हैं।
1: बिल्कुल, आंखों देखा हाल,
2: आंखों देखा हाल। तो ये आकाशवाणी का ही करिश्मा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेलों को, खेल समाचारों को एक अलग ढंग से पेश करते थे ये लोग। खेल समाचार आया करते थे, आप भी आते होंगे, नेचुरली आते हैं, तो उसमें हर खेल के बारे में कैसे उसका कौन जीता, एशियाड होते थे या ओलंपिक होते थे, तो ये आकाशवाणी हमेशा नंबर वन रहा है। और मैं इसकी कमेंट्री के लिए, मैंने एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, मुझे याद है आज, तब खरीदा था बिल्कुल, जो
1: अच्छा।
2: पॉकेट ट्रांजिस्टर जिसको बोला जाता था। और उसको रात को या दिन को, जब भी वो समय, कई बार विदेश में होती थी तो वो रात को कमेंट्री होती थी
1: जी, जी।
2: तो अपने सिरहाने के पास रखा, बस ऊपर चद्दर ली और सुनते रहे सुनील गावस्कर, व्यंग सरकर, वीनू मांकड़
1: जी,
2: आपके ये सारे खिलाड़ी जो उस समय के खिलाड़ी हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी साहब,
1: बिल्कुल,
2: तो वो एक अलग नशा था, एक अलग मजा था। तो आकाशवाणी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने वर्षों के बाद मुझे वो सारी चीजें फिर से याद दिलाने के लिए। वो फिर से मेरे अंदर वही कशिश, वही प्यार, वही मोहब्बत अपने प्रति जताने के लिए और मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: बिल्कुल, आपसे बातचीत यहाँ हम जारी रखेंगे। और मैं बिल्कुल ये एहसास कर सकती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें भी इन बातों में बहुत आनंद आ रहा है। वो जानना चाहते हैं कि हरविंदर जी के पास और क्या खास है हमारे साथ बांटने के लिए। लेकिन उससे पहले हम उनकी यादों के पिटारे में से एक गाना, जो वो हमारे लिए लेकर आए हैं, उसे जरूर सुन लेते हैं। और आप वैसे बता सकते हैं, फिल्म है कुदरत।

0: तो बड़ी दिलचस्प बातचीत आज यहाँ हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं कि आज का स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में हमारे साथ हैं श्री हरविंदर मांकड़ जी, और बहुत सारी अपनी सुरीली यादें वो हमारे साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कि बचपन से आप आकाशवाणी के साथ जुड़े हैं, एक लिसनर की तरह आप सुनते आए हैं, और आपने कई बार आकाशवाणी पर प्रोग्राम भी दिए हैं, तो कहीं आपकी लेखनी में, आपके किसी कैरेक्टर में जो आप कार्टून बनाते हैं, उनमें आकाशवाणी सुनते हुए या यहाँ के कुछ प्रोग्राम सुनते हुए या कुछ नाटक सुने जब आपने, तो क्या वो इन्फ्लुएंस हुए उनसे, आपकी सोच प्रभावित हुई और आपने कोई कैरेक्टर ऐसा बनाया कुछ भी?
1: सही पकड़े हैं आपने, पकड़ लिया। क्या है कि आकाशवाणी का एक प्रोग्राम आया करता था, हवा महल। वो नाटक हुआ करते थे, मतलब इसको प्ले बोलते हैं, कॉमेडी के ज्यादातर हुआ करते थे।
0: जी, जी।
1: 10 से 15 मिनट का होता
0: बिल्कुल,
1: था
0: बिल्कुल।
1: और केपी सक्सेना जी और बहुत सारे जो उस समय के अच्छे व्यंगकार हुआ करते थे, उनकी कहानियां उनके लिखे होते थे। जब ऐसा होता है ना, बचपन में आप ये चीजें सुनते हैं तो सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो मैनरिज्म रह जाता है, कोई करेक्टर रह जाता है। तो जब मैंने मामा जी कॉमिक सीरीज बनाई थी तो उसमें एक करेक्टर था यांगू।
0: अच्छा।
1: वो मुझे केपी

0: सेना साहब के एक कहानी थी चरोंजी का समथिंग कुछ, मुझे आज
1: हाँ
0: पूरा शायद नाम
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: याद आ रहा मुझे उसका। तो वो उसमें वो एक यांगू नाम का लड़का था कि जो हमेशा एक ही चीज के जब पीछे पड़ जाता था तो उसको तब तक चुप नहीं कराया जा सकता था जब तक लाइट ना चली जाए, मानिए घर की, जैसे रेडियो है।
1: जी
0: तो आकाशवाणी की तरह मैंने उसका नाम रख के यांगू को हमने आकाशवाणी बना दिया कि कॉमिक के अंदर, कि वो जब बोलना शुरू करता है तो सिर्फ सब सुनते सब इंटरेस्ट से हैं, लेकिन उसको
1: जी
0: चुप कैसे कराया जाए ये किसी को मालूम नहीं होता था स्वयं मामा जी के।
1: वाह
0: तो ये चीजें आकाशवाणी ने ही मुझे दी हैं, मतलब ऑल इंडिया रेडियो कहें आकाशवाणी कहें, क्योंकि बहु जन हिताय बहु जन सुखाय अगर कोई किसी का नाम या टैगलाइन होती है तो सोचिए कि कितने सोच समझ के वो चीजें थी, जो आज तक मेरा ख्याल है अब 40-50 साल हो गए उस बातों को, 55 साल
1: बिल्कुल
0: हो गए,
1: जी।
0: जहन में है, जहनियत में है। तो ऐसे हवा महल और ऐसे नाटक अब तो बहुत सारे, जिसको हम स्किट कहते हैं या रील
1: जी
0: कहते हैं, ये
1: जी जी
0: आकाशवाणी सदियों पहले कर चुका है इन
1: बिल्कुल
0: चीजों
1: जी
0: को,
1: बिल्कुल
0: उसी से इंस्पायर होके आज लोग बना रहे हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये इतिहास की एक चीज बन चुकी है और उसका जन्मदाता आकाशवाणी है।
1: क्या बात है। तो ऐसा लग रहा है हमें कि स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ एक जो है आरजे ही है आज। आप ही की पसंद का अगला गीत अमर प्रेम फिल्म से मैं सुनवा रही हूं सभी लिसनर्स को। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के संग यादों के रंग। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और मेरे साथ हैं जाने माने कार्टूनिस्ट, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक भी, और वो हैं श्री हरविंदर मांकर। हरविंदर जी, हम आपके जीवन से जुड़ी और आकाशवाणी आपके जीवन से कैसा जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें आज आपके साथ कर रहे हैं, आपकी यादों को जान रहे हैं बहुत करीब से। तो ओ मेरी महबूबा, ये गाना आपके दिल के बेहद करीब है, ये मुझे पता चला अभी ब्रेक के दौरान। तो इससे जुड़ी क्या कहानी है और वो कहानी आकाशवाणी से कैसे जुड़ी हुई है?
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने वो तार हिलाई है जो मेरे अंदर तक पूरी बज गई। ये फिल्म शायद आई थी 70-75 के आसपास, मुझे थोड़ा नहीं उसकी नॉलेज ज्यादा, और मैं 11-12 साल का था। तो हम लोग ये सुबह 9:30 बजे उन दिनों आकाशवाणी पे शायद ये पहला स्पॉन्सर सॉन्ग आया करता था डेली, धर्मवीर फिल्म का,
0: जी जी,
1: ओ मेरी महबूबा।
0: अच्छा,
1: मैं इतना ये रफी साहब का गाया था और मुझे

बहनों और भाइयों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल का सफर। और जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो मोहम्मद रफी साहब का गाया है और धर्मवीर फिल्म का है, ओ मेरी महबूबा। देखिए, इसको सुनिए और अपनी अपनी सभी जहां जहां आपकी मोहब्बत है, प्यार है, उसे याद कीजिए ना, ओ मेरी महबूबा।

0: जी आज तो खूबसूरत गीतों का साथ रहा और बहुत सारी मजेदार बातें हमने आज श्री हरविंदर जी के साथ यहाँ की। और सर, जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैसे मैं अपने लिसनर्स को पहले बता देती हूँ कि सर एक बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप आकाशवाणी 90 वर्ष इस साल पूरे कर रहा है, इस उपलक्ष्य में आप आज यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आप FM गोल्ड के जरिए हमारे लिसनर्स को क्या कुछ मोटिवेशनल बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे?
1: देखें, 90 साल अगर कोई संस्था या कोई शो, आकाशवाणी जैसी चीज अगर रहती है और पूरे गरूर और पूरे एकदम आत्मसम्मान के साथ रहती है तो उसमें कुछ तो बात होगी। वो बात है पॉजिटिविटी, वो बात है अच्छी चीजें करना। आकाशवाणी ने हमें सिखाया कि जिंदगी को मुस्कुरा के कैसे जीना है, हालातों से लोहा कैसे लेना है। हालात ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो आकाशवाणी कोई कम हुआ, वो उसी ही जोश से आज भी खड़ा है। क्योंकि रीजन ये है कि सब कुछ बदलता है, समाज बदलता है। आप अपना एक फोकस, जो भी सुनने वाले हैं, अपना एक फोकस तय कीजिए, टारगेट तय कीजिए। बच्चों को भी एक अच्छी चीजें दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, बड़ों की इज्जत दीजिए, माँ बाप की सेवा करना सिखाइए, जो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कार, भारतीय खाना और शुद्ध खाना, ये जो जंक फूड ने आके जो हम सबकी जिंदगी के अंदर एक बवंडर ले आए हैं, उससे बचिए। बच्चों को कहिए कि अच्छे रहें, और अगर देखना है उनकी उड़ान को तो ये जोश रखिए कि जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें और इतनी मजेदार बातें अपनी जिंदगी की, आकाशवाणी से जुड़ी और कुछ बातों के बीच में कुछ मोटिवेशन से जुड़ी बातें, बहुत सारी चीजें हमारे साथ यहाँ आज शेयर की। इसके लिए मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आगे भी ऐसे ही स्पीकर्स आते रहेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोहर स्टोर्क के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड

0: के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टोडेटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योर फ्रॉस्टोडेटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयोजित भारत व्यापार सुधार सम्मेलन में कही। श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि व्यवसायों को उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्विक विकास को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे केवला झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चिंगलपट्टो दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज, बुरी तरह बीमार या खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन देने की भी अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 5वें और लखनऊ 10वें नंबर पर है। प्लेऑफ के मद्देनजर ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo this afternoon. The Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark will also be taking part in the summit. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With trade and economic

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे करे जुवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market.

0: आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.svpupa.gov.in/vacancies। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज IDS जयपुर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निषिबद्ध राजस्थान में अनुसंधान में संलग्न एवं स्वायत्त प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर कुछ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। लेखा कार्यपालक, ये पद का नाम है। पदों की संख्या होगी एक और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। पदों की प्रकृति होगी संविदागत आधार पर और श्रेणी है अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 62,000 रूपए और PF। कनिष्ठ कार्यालय सहायक, एक पद यहाँ पर भी रिक्त है। 18 से 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए और ये स्थायी पद होगा, अनारक्षित है। ये ग्रेड पे 2400 के लिए है। 18 से 40 वर्ष में एक और पद रिक्त है, वो है कनिष्ठ कार्यालय सहायक का, संविदागत आधार पर अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 33,000 रूपए प्लस PF। चालक, एक स्थान रिक्त है, 18 से 40 वर्ष स्थायी होगा, ये अनारक्षित है। इसमें आपका ग्रेड पे होगा 2400। एक स्थान यहाँ रिक्त है, 18 से 40 वर्ष की उम्र स्थायी अनारक्षित और ये ग्रेड पे 1700 के अंतर्गत आते हैं। आयु में छूट पर राजस्थान राज्य सरकार मानकों के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्थान IDS JGB निर्माण के अनुसार आयु में मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो है www.idsg.org/vacancies। इस विज्ञापन के प्रसारण के 15 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो IBM में सामान्य केंद्रीय सेवा अराजपत्रित राजपत्रित समूह बी के स्तर 7 के अंतर्गत सहायक भंडार अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक निकायों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विभाग में इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख होगी इस विज्ञापन के प्रसारण के 60 दिनों के अंदर। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, रोजाना की तरह चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे।

0: ये जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनुजा।
1: यस हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून सरफिरोजी। वी ऑल नो दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑन अ टूर टू द नॉर्डिक रीजन एंड रेफरिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर बीइंग ऑनर्ड देयर, इट इज हार्ट वार्मिंग एंड अ वेलकम जेस्चर बाय स्वीडन एंड नॉर्वे. Were they conferred their highest civilian and state honours on the Indian Prime Minister during his bilateral visit to the Nordic region day before yesterday and yesterday as well, bringing his total international accolades to 32. The recognition has bolstered his political standing as supporters and the ruling party highlight his global popularity and rising international clout as well. Political representatives in India have praised the development, stating that the accolades elevate India's global prestige and signify how the country is acknowledged and respected on the world stage nowadays. PM Modi also dedicated these prestigious honours to the people of India and the historic friendships his country shares with the Nordic nations. Isn't it, Sir Firozi?
0: Bilkul, Anuja.
1: It's a matter of great pride. And now shall we begin with a real parikrama? Let's begin with the news making headlines at this hour of the day, Sir Firozi.
0: बिल्कुल अनुजा, बात हो रही थी पीएम मोदी की यात्रा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
1: Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty.
0: सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार।
1: IMD shows yellow alert for heat wave in national capital for the next 3 days.
0: और IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से।
1: And Sir Firozi, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Fair Play Day. We welcome you all to our special segment dedicated to a brand new global celebration, that is World Fair Play Day, which is observed for the very first time on 19th of May 2025. Now, when we hear the words fair play, most of us immediately think of sports, a footballer helping an injured opponent, a cricketer walking off the field honestly, even before the umpire gives a decision, players shaking hands after an intense match. But fair play is much more than that. It is about respect, honesty, equality, kindness, discipline, and of course, humanity. And today's program will explore how sports and fair play can transform not just the games, बट सोसाइटी इटसेल्फ।
0: बिल्कुल अनुजा, और बात करें वर्ल्ड फेयर प्ले डे के इतिहास की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जुलाई 2024 को अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 19 मई यानी आज के दिन को विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में घोषित किया। और ये प्रस्ताव दोस्ती, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेशन और खासतौर पर भेदभाव रहित व्यवहार जैसी खेल भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। खेल महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को सहयोग देते हैं और युवाओं को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सो लिसनर्स, लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज फेयर प्ले? Fair play means following the rules honestly, respecting teammates and opponents, accepting victory with humility, accepting defeat with dignity, and rejecting violence, cheating, racism, and doping. Fair play reminds us that how we win matters just as much as winning itself.
0: बिल्कुल अनुजा, जैसा कि आपने कहा कि फेयर प्ले जो शब्द है उसे सुनकर खासतौर पर हमारे दिमाग में स्पोर्ट्स ही आता है, पर हम सभी को पता होना चाहिए कि आज सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि हर जगह निष्पक्षता यानी फेयर प्ले की जरूरत है, चाहे वो स्कूल हो, आपके वर्क प्लेस हो, ऑनलाइन आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं या ओवरऑल सोसाइटी की बात हो। जब लोगों के साथ बराबरी और सम्मान से पेश आया जाता है तो लोग ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनते हैं, और खेल हमें ये सबक अपने आप सिखा देते हैं। खेलों को अक्सर इंसानियत की यूनिवर्सल भाषा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहे कहीं से भी आए हों, खेल हमें तुरंत आपस में जोड़ देते हैं। ब्राजील में फुटबॉल मैच, भारत में क्रिकेट, यूएसए में बास्केटबॉल, केन्या में एथलेटिक्स, अलग अलग खेलों की भावनाएं एक जैसी होती हैं। इनमें एक जैसी खुशी होती है, टीम स्पिरिट होता है, जीतने का पक्का इरादा, और खेल मनोरंजन से हटकर हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी होते हैं।
1: And at a time when many young people spend hours on phones and computers, sports do encourage active and healthy lifestyles. Sports also build mental strength. They teach us confidence, patience, focus, discipline, and resilience. Athletes learn how to handle pressure, recover from failure, and keep trying despite setbacks. That's a lesson valuable in every aspect of life. Other than this, sports also teach teamwork. In sports, no one succeeds alone. Players learn how to cooperate, how to communicate, the trust, the leadership and responsibility. Whether you are on a football field or in an office meeting later in life, teamwork remains essential, isn't it?
0: बिल्कुल अनुजा, और खेल यानी स्पोर्ट्स की जो सबसे खूबसूरत बातों में से एक है वो ये है कि ये अलग अलग कल्चर और सीमा के पार लोगों को भी एक साथ लाते हैं। जब एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करते हैं तो हमें मैच के दौरान स्टेडियम में या खेल के मैदान में इन देशों के बीच की दोस्ती भी दिखती है। अलग अलग बैकग्राउंड के फैंस एक साथ जश्न मनाते हैं, जो ये साबित करता है कि स्पोर्ट्स यानी खेल दूरियों को कम कर सकते हैं।
1: Talk about some moments where fair play touched hearts around the world. There have been athletes who stopped running to help injured competitors. There have been teams who refused unfair advantages even when victory was at stake. And there have been players who used their fame to fight racism, discrimination and injustice. These moments remind us that sports are not just about trophies. They are about character.
0: बिल्कुल अनुजा, जो सच्चे विजेता होते हैं उनके लिए सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि उनकी कैरेक्टर, उनकी वैल्यू के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। और खेल वैश्विक विकास लक्ष्यों में भी योगदान देते हैं। वर्ल्ड फेयर प्ले डे कई सतत विकास लक्ष्यों का भी समर्थन करता है जिन्हें SDGs के नाम से भी जाना जाता है।
1: Yes, and these sustainable development goals, they include good health and well-being. Quality education, that sports teach life skills such as discipline and teamwork, gender equality, sports empower women and girls and challenge stereotypes. They also reduce inequalities. Sports include people from all backgrounds and abilities. Peace, justice, strong institutions, fair play promotes all these things, respect, justice and peaceful communities as well.
0: यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारों, स्कूलों और खेल संगठनों को इस दिन को मनाने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि खेलों के माध्यम से हम सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देने में युवाओं की खासतौर पर बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अनुजा, ऐसा ही कहा जाता है कि जो आज के युवा हैं वो कल के नेता हैं। जब बच्चे खेलों के जरिए ईमानदारी, समावेश और सम्मान जैसे मूल्यों को सीखते हैं तो वे बड़े होने पर भी उन को अपने जीवन में बनाए रखते हैं। और कैसे स्कूल और माता पिता निष्पक्ष खेल को बढ़ावा दे सकते हैं अनुजा?
1: Yes, just to look into the few points, they promote participation over unhealthy competition, celebrating effort and also teamwork, and teaching children to respect everyone equally. And listeners, sports should be accessible to everyone, boys and girls, rich and poor, able-bodied persons and persons with disabilities. The spirit of fair play means nobody should be left behind. Inclusive sports create inclusive societies.
0: बिल्कुल अनुजा, और श्रोताओं, फेयर प्ले सिर्फ एथलेटिक फील्ड के लिए नहीं है। आप दूसरों की बात सुनकर, दूसरों की मदद कर, भेदभाव से बचकर, एग्जाम या वर्कप्लेस पर ईमानदार रहकर और खासतौर पर बुलिंग के खिलाफ खड़े होकर भी फेयर प्ले की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।
1: एंड दैट्स द रियल मैसेज ऑफ वर्ल्ड फेयर प्ले डे, नॉट जस्ट play fair in sports but also live fair in life. Dear listeners, every game teaches us something. Sometimes we win, sometimes we lose.
0: बिल्कुल अनुजा, लेकिन हर बार जब हम ईमानदारी और सम्मान के साथ खेलते हैं तो एक इंसान के तौर पर भी हम बेहतर बनते हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि असफलता अस्थाई होती है लेकिन आपकी कड़ी मेहनत मायने रखती है।
1: Of course, whether you are a professional athlete, a student, a coach or simply someone who enjoys playing for fun, remember, Fair play makes sports beautiful, and sports make life healthier, happier, and more united. Let's play fair, live fair, and build a

0: better world together.
1: और श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर और जानेंगे कि अपने हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात के कच्छ की सदियों पुरानी पारंपरिक कॉपर बेल हस्तकला को जीआई टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। यह ऐतिहासिक कला अब ग्रामीण कारीगरों की किस्मत बदलने के साथ साथ विश्व स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ा रही है।
2: गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले की सदियों पुरानी पारंपरिक कॉपरबेल हस्तकला को जीआई टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और अनूठी पहचान मिली है। कच्छ की यह अद्भुत और ऐतिहासिक कला आज एक बड़ा वैश्विक ब्रांड बन चुकी है, जिससे स्थानीय ग्रामीण कारीगरों को वैश्विक बाजार में अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिला है। लोहे के कबाड़ से बेहद मधुर और सुरीली गूंज पैदा करने वाली ये कलात्मक घंटियां अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के आलीशान घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है। जीआई टैग मिलने के बाद इन घंटियों की मांग विदेशों में काफी तेजी से बढ़ी है और वर्तमान में इन्हें 500 से अधिक नई और आधुनिक डिजाइनों में तैयार कर बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है। कच्छ का झूरा गांव इस ऐतिहासिक कॉपर बेल हस्तकला का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां कई पीढ़ियों से कारीगर परिवार लोहे के कबाड़ को बड़ी कुशलता से हथौड़े से पीट कर सुंदर घंटियों का आकार देते हैं। इस निर्माण प्रक्रिया के तहत सबसे पहले घंटी की मुख्य बॉडी कैप और हैंडल तैयार किया जाता है और फिर उस पर तांबे या पीतल की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद इसे भट्टी में पूरी तरह तपाकर अंतिम रूप दिया जाता है और अंत में कारीगर अपने पारंपरिक अनुभव से घंटी के भीतर एक अत्यंत मधुर रणकार पैदा करता है। इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने में राज्य सरकार की गर्वी गुर्जरी संस्था, कार्यशालाओं और लोन योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और नई पीढ़ी के युवा भी इस गरिमापूर्ण व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परिक्रमा के लिए भूट से परेश मारू।
0: एंड सर फिरोजी, स्पाइसेस दे सर्व टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड।
1: बिल्कुल।
0: एंड अमंग स्पाइसेस द चिली पेपर होल्ड्स द टॉप स्पॉट। Our country boasts a wide variety of chili peppers. In the Parbhani district of the Marathwada region lies a village called Kapsi, which is currently making headlines thanks to its red chilies. Let's listen to what our correspondent has to say.
3: भारत में आज भी कई लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती किसानी ही है। किसी भी गांव के पास खेतों में जाकर देखें तो कई तरह की फसलें दिखाई देती हैं। लेकिन परभणी जिले में कापसी नाम का एक गांव ऐसा है जहां के अधिकतर किसान मिर्च की पैदावार लेते हैं। लगभग 1200 आबादी के इस गांव की उगाई लाल मिर्च इन दिनों काफी चर्चा में है। गाँव में 450 हेक्टेयर की कुल खेती में से पूरे क्षेत्र पर खरीफ मौसम में केवल मिर्ची की पैदावार ली जाती है। इस पैदावार के लिए लगने वाले 100% बीज यही की मिर्ची के होते हैं, जो इन किसानों ने पारंपरिक रूप से कई सालों से संजोए हैं। हर वर्ष लगभग 25 जुलाई के बाद बुवाई शुरू होती है और जनवरी के मध्य में मिर्ची तैयार होती है। हरी मिर्च को पौधों पर ही पकने के लिए रखा जाता है। सुर्ख लाल रंग आने पर ही मिर्ची की तुड़ाई होती है। इस काम के लिए आसपास के कई गांवों की महिलाएं आती है, जिन्हें दिन भर 14-15 किलो मिर्च तोड़ने के बाद मेहनताने के रूप में 1 किलो मिर्च या 350 रुपए दिए जाते हैं। तोड़ने के बाद इस मिर्च को घरों के छतों पर कम से कम हफ्ता भर के लिए सुखाया जाता है। गांव में हर एकड़ में 8 से 9 क्विंटल तक मिर्च का उत्पादन होता है और सूखी मिर्च को लगभग 350 से 380 रुपए किलो तक दाम मिलते हैं। कापसी गांव के किसान पहले अपनी मिर्च को आसपास के गांव में ही बेचते थे। कई व्यापारी सीधा इनके खेतों में जाकर किसानों से मिर्च खरीदते भी थे, लेकिन किसानों को इस मिर्च के तब अच्छे दाम नहीं मिलते थे। कुछ युवा किसानों ने कुछ वर्ष पूर्व मुंबई और दूसरे शहरों के मार्केट में जाकर अपनी मिर्च बेचने का निर्णय लिया और उन्हें उसके अच्छे दाम मिले। आज कापसी गांव की मिर्च को मुंबई के साथ साथ आखाती देशों से भी अच्छी मांग है। इस बार खरीफ मौसम में कापसी गांव ने 1200 क्विंटल मिर्च की उपज की है। तीखी लाल मिर्च के माध्यम से इस गांव के किसानों के जीवन में मिठास आई है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
1: हर साल की तरह इस बार भी गोवा में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और युवाओं में संग्रहालयों के प्रति रुचि बढ़ाना इसका उद्देश्य था। एक रिपोर्ट।
4: गोवा विज्ञान केंद्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस समारोह के दौरान गोवा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक देखने को मिली। माई ओन कलेक्शन नामक प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 18 मई तक किया गया, जिसमें पुराने सिक्के, 50 देशों की मुद्रा, मिनिएचर, चॉकलेट रैपर

0: के विविध संग्रह और कई अनोखे संग्रहणीय वस्तुएं प्रदर्शित की गई, जिन्हें हॉबी कलेक्टर्स ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि
1: हमने म्यूजियम डे इस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था माय ओन कलेक्शन, जो गोवा के बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीज स्टैम्प से लेके ट्रेडिशनल गिफ्ट आइटम्स जो है उसका बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पे लगाया था। हमने गोवा सरकार की तरफ से जो प्राइवेट म्यूजियम है उनके लिए दो स्कीम अनाउंस किए थे, एक वन टाइम ग्रांट्स ऑफ द 5 लाख रुपीज वो आज से हमने स्टार्ट की टू मेंटेन द प्राइवेट म्यूजियम, ये भी स्कीम आज हमने स्टार्ट की है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि संग्रहालय पर्यटकों और युवाओं को गोवा की विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राज्य के निजी संग्रहकर्ताओं और संग्रहालयों को सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों में ले जाने की अपील की, ताकि उनमें जिज्ञासा और सीखने के प्रति रुचि विकसित हो सके। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: And in the sports news today, in IPL cricket, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.A. Chidambaram Stadium. And if we talk about some business news, benchmark domestic equity indices reversed their intraday gains and ended with marginal losses today. The Sensex dropped 114 points to close at 75,201. While the Nifty dipped by 32 points to settle at 23,618. However, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The mid-cap 100 jumped 0.9%, while the small-cap 100 surged almost 1.2%. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
3: और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
4: वी रिमेम्बर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, नाना साहेब पेशवा द सेकंड, हु वाज बोर्न ऑन द 19th of May 1824 इन बिठूर, कानपुर डिस्ट्रिक्ट। अ पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, नाना साहेब लेड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन कानपुर। ही फोर्स्ड द ब्रिटिश गैरिसन इन कानपुर टू सरेंडर, गेनिंग कंट्रोल ऑफ कानपुर इन 1857।
5: नाना साहेब्स बर्थ नेम वाज नाना गोविंद the Dhundu Pant. He, along with his brother, was adopted by Peshwa Baji Rao II, who was childless. Nana Sahib grew up with Tantya Tope and Rani Lakshmi Bai of Jhansi. After the death of Peshwa Baji Rao II, the British refused Nana Sahib's rightful claim to be the next Peshwa. Nana Sahib sent his envoy Azimullah Khan to England in 1853 to plead his case with the British government. However, Azimullah Khan was unable to convince the British.
4: Nana Sahib challenged the British policy and joined forces with the independence activists. In June 1857, Nana Sahib, along with his commander Tatya Tope, captured the British entrenchment at Kanpur. However, within 1 month, the British were successful in recapturing Kanpur by defeating Nana Sahib's forces. The British tried to capture Nana Sahib, but he escaped. With the suppression of the First War of Independence, Nana Sahib was believed to have moved to Nepal. It is not known how, when, or where he died. But the valor of Nana Sahib continues to echo through the folklore of the region. We salute the great Indian freedom fighter.
5: We also remember revolutionary freedom fighter Purna Talukdar, who took part in the Chittagong revolutionary movement. After the Chittagong Armory raid, the British Army and the police were trying to arrest the revolutionaries behind the raid. They surrounded the house of Purna Talukdar on 19th of May 1930, where some revolutionaries were believed to have taken shelter. Three persons attempted to escape, but two of them were shot dead. Purna Talukdar, the owner of the house, was one of them. We salute the great Vitthal Das.
4: Vitthal Das volunteered to take part in a public meeting of volunteers during the civil disobedience movement at Esplanade Maidan, Mumbai, on the 19th of May 1930.
5: The British police lathi charged the volunteers to stop them from taking part in the meeting.

0: She was posthumously awarded the Padma Bhushan in 2006.
1: श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री

0: सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्ट डॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The 3rd India-Nordic Summit began in the Norwegian capital, Oslo, today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, are participating in the summit. The meeting is aimed at strengthening sectoral cooperation between India and the Nordic countries following the previous summit held in Copenhagen, Denmark in 2022. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: The Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when India-Norway relations were upgraded to green strategic partnership. It will help Norwegian companies to innovate and invest in sectors like green hydrogen, blue economy and circular economy. India will also be participating in Nor Shipping 2022. 2027 with an India

यूं तो हम अपने आप में गुम थे, यूं तो हम अपने आप में गुम थे, सच तो ये है कि वहां भी तुम थे। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सबका आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां ये समय है गाते गुनगुनाते का। और गाते गुनगुनाते में आपका और हमारा साथ रहता है बड़ा ही दिलचस्प, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आती हूं जिनके जवाब आप मुझे ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजते हैं, और फिर कैसे ये सफर अपने अंजाम तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, रब ने बना दी जोड़ी से।

क्या बात है, कितना सुरीला गाना सुखविंदर सिंह की आवाज में। तो भाई पहला सवाल आपके लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है। 90s की फिल्म से जुड़ा ये सवाल है आपके लिए। 90s में एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म आई जिसके हीरो को इस फिल्म से बहुत बड़ी सफलता मिली, और अगर हम ये कहें कि असल में उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी पहचान इसी फिल्म के साथ बनाई तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब्बास मस्तान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और जतिन ललित के म्यूजिक ने इस फिल्म को और भी स्पेशल बना दिया। और इस फिल्म का जो नाम है ना, मानो बाद में जो हीरो हैं इस फिल्म के, आने वाली फिल्मों में वही पहचान उनकी बन गई, यानी कि इस फिल्म के नाम से हीरो की एक खास पहचान बनी। फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई क्योंकि इसमें सस्पेंस भी था, एक्शन भी था और खूब सारा एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि हीरो का डांस, एक्टिंग सब कुछ काबिले तारीफ रही। तो अगर आप पहचान चुके हैं मैं कौन सी फिल्म का जिक्र यहां कर रही हूं, तो आपको fmgoldairdelhi@gmail.com पर अपना आंसर यानी कि फिल्म का नाम लिखकर भेज देना है जल्द से जल्द। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये एक और बहुत ही प्यारा सा गाना।

एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर जानेंगे कि किसने सबसे पहले सही आंसर हमें लिखकर भेजा है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपराजिता के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, उसके बहुत सारे आंसर मैं देख पा रही हूं और लग रहा है लगभग सभी ने सही जवाब दिया है। वैसे लगभग नहीं, सभी ने सही जवाब दिया है, ऐसा देखकर पता चल रहा है। बाकी हो सकता है बीच में एक दो जो जवाब है वो गलत भी हो। तो पहला सही जवाब हमारे पास नवीन भाटिया साहब का पहुंचा है मोतीनगर दिल्ली से। इसके बाद कुशाग्र अग्रवाल दूसरे नंबर पर सही जवाब लिखकर भेजते हैं और इसके बाद इदरिस सैफी ने हमें बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। तो आप तीनों ने सबसे जल्दी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर सही जवाब हम तक लिखकर भेजा है, तो बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। इसके बाद भी सही जवाब आए हैं अमित नरूला, नागेंद्र ठक्कर, अनिल सरोड़े, मृदुल शर्मा गाजियाबाद से लिखते हैं और अजिंक्य बम वडोदरा से हमारे साथ हैं। वैशाली बम ने भी इनके साथ सही सही लिखकर भेजा है। डीबी राणा नेहरू बिहार से पहचानते हैं फिल्म का नाम। गिरीश बम भी हैं वडोदरा से। और इसके बाद मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है। और देखते हैं किसने सही जवाब लिखकर भेजा है। तो यही सही जवाब हमारे पास पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि फिल्म का नाम है खिलाड़ी। ये फिल्म 1992 में आई जिसमें अक्षय कुमार, आयशा जुल्का और दीपक तिजोरी ने जो है एक्टिंग की। और एक और हिंट बड़ा अच्छा हमने दिया आपको कि ये जो फिल्म है इसका जो नाम है इसी नाम के साथ अक्षय कुमार को ज्यादा पहचाना जाता है। और ऐसा भी है कि इनकी कई फिल्मों में खिलाड़ी जो है वो टाइटल का पार्ट बना। तो बिल्कुल इस फिल्म से आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन अगले सवाल की बारी अब आ गई है। तो अगला क्लू आपके लिए है महेश भट्ट की एक फिल्म से जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया। ये एक रोम कॉम फिल्म है जो खिलाड़ी की ही तरह सुपरहिट हुई और 1993 की ये सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में जो है वो गिनी जाती है। अगर फिल्म की हीरोइन की बात करें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म से उन्होंने खूब काम जो है नाम कमाना शुरू कर दिया। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इस फिल्म की चुलबुली सी अदाकारा को ही मिला। और तो और अलका याग्निक को बतौर प्लेबैक सिंगर इस फिल्म के एक गाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो बहुत सारे हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप बिल्कुल पहचान चुके होंगे फिल्म का नाम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो आप अपने आंसर जो हैं वो fmgoldairdelhi@gmail.com पर जल्द से जल्द टाइप करके भेजें। तब तक मैं आपको खिलाड़ी फिल्म से एक गाना सुनवा रही हूं। जी हाँ, वही खिलाड़ी फिल्म जिसे आपने बिल्कुल सही पहचाना था टाइम रहते। तो इसी तरीके से इस सवाल का जवाब भी जल्दी से जल्दी लिखकर भेजें और पहले दूसरे स्थान पे आए, है ना।

जी, तो आपके जो जवाब हैं वो हमें मिल रहे हैं और पहला सही जवाब जो है वो हमारे पास पहुंचा है, कहां से ये बता देते हैं। तो सबसे पहला सही जवाब, वैसे तो कुछ जवाब आए हैं लेकिन वो सही नहीं है। तो पहला सही जवाब अमित नरूला ने हमको लिखकर भेजा है, इसके बाद नागेंद्र ठक्कर ने दूसरे नंबर पर सही सही जवाब लिखकर भेजा है यानी कि फिल्म का नाम, और तीसरे नंबर पर नवीन भाटिया साहब है मोती नगर से। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद प्रणव शिंदे मुंबई से बिल्कुल सही पहचानते हैं, इदरिस सैफी, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अजिंक्य बम ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है, मृदुल शर्मा है गाजियाबाद से, आपने बिल्कुल सही पहचाना, और इसके बाद सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी और शांति मुखी सोनीपत से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, देखिए टाइम की बचत पूरी की है, HHRPK, हम है राही प्यार के, ये है फिल्म का नाम। और वैशाली बम, डीबी राणा ने बिल्कुल नहीं दिया है सही जवाब, लेकिन नाम जो है हमने शामिल कर दिया क्योंकि आपने पिछला जवाब सही दिया था तो हमें लगा आपने ये भी सही दिया होगा, हालांकि आपने लिखकर भेजा इस बार दिल है कि मानता नहीं, जो कि सही जवाब नहीं है। तो हम है राही प्यार के बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है, इसे आप जरूर देखें अगर अभी तक नहीं देखा है। तो इसमें आमिर खान, जूही चावला और कुणाल खेमू, इन सब ने एक्टिंग की, और कुणाल खेमू हालांकि इसमें बच्चे के रोल में नजर आए हैं क्योंकि ये बहुत पहले की फिल्म है और बहुत खूबसूरत ये फिल्म है। जूही चावला की एक्टिंग इसमें बहुत ही अच्छी है, और अगर किरदार की बात करें तो आमिर ने इसमें राहुल मल्होत्रा का जो है वो रोल प्ले किया है, और जूही चावला वैजयंती अय्यर के रोल में नजर आई हैं। तो इस फिल्म से आपको गाना जरूर सुनवाएंगे, गाने सभी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मैं आपको एक गाना सुनवाऊंगी, और मेरी कोशिश रहती है कि हर फिल्म से अलग अलग तरह के गाने आप तक पहुंचाए जाएं। तो इस फिल्म में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो एक गाना उनमें से मैंने आपके लिए चुना जरूर है, लेकिन इससे पहले कि मैं गाना सुनवाऊं मैं आपसे अगला सवाल भी पूछ लेती हूं ताकि आप लोग साथ में गाना सुनते सुनते इसका जवाब जो है वो मुझे टाइप करके भेज दें। तो ये भी 90s की एक फिल्म है और एक ही मल्टी स्टारर फिल्म है। अब भाई मैं आपके लिए सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में जो हैं वो आज ढूंढ कर लाई हूं, तो ये भी एक सुपरहिट फिल्म ही है, अब तक ये तीसरी सुपरहिट फिल्म है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं आज गाते गुनगुनाते में। इस फिल्म में नदीम श्रवण की जो जोड़ी है उन्होंने अपना संगीत दिया, बहुत ही खूबसूरत संगीत रहा इस फिल्म का। कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, इन सब ने इस फिल्म में जो है वो गाने गाए हैं, और क्या खूबसूरत रंग इस फिल्म में भर दिए हैं अपनी आवाजों के साथ। एक्टिंग की अगर बात करें तो इस फिल्म के हीरो को बेस्ट मेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, और गाते गुनगुनाते की आज की ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। फिल्म में जब हीरो की एंट्री होती है ना, ये आपके लिए एक और हिंट है वैसे, फिल्म में जब हीरो की एंट्री होती है तो वो एक खास अंदाज में होती है, और इस स्टंट को जो है वो देखने वालों ने, दर्शकों ने खूब सराहा भी है और खूब पसंद किया, और कई फिल्मों में इसे दोहराया भी गया। तो अगर आप पहचान चुके हैं कि ये फिल्म कौन सी है जो 90s में आई, तो इसका नाम आपको टाइप करके भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। यह है हमारा ईमेल आईडी, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो बता दें कि हम कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उनके हिंट्स दे रहे हैं। अगर आपने फिल्म का नाम पहचान लिया है तो आपको टाइप करके हमारी ईमेल आईडी पर इसे सेंड कर देना है। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं हम है राही प्यार के से एक बहुत ही मजेदार गाना अलका याग्निक की आवाज में।

0: वैसे कुमार सानू ने और अलका याग्निक ने मिलकर इस फिल्म में 3 गाने गाए हैं, लेकिन इस गाने में कुमार सानू की आवाज नहीं है, वो है घूंघट की आड़ से, यूं ही कट जाएगा और मुझसे मोहब्बत का। इन गानों में इन दोनों की आवाज है। इस गाने में आपने अभी अलका याग्निक की आवाज सुनी। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, वापस आऊंगी और फिर जानेंगे कि किसने सही सही आंसर्स हमें लिखकर भेजे हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी बिल्कुल, ये गाते गुनगुनाते सफर चल रहा है और कितने दूर आ गए हैं हम पता भी नहीं चलता। हाँ, ऐसे ही होता है जब आप एकदम जल्दी से जवाब लिखकर हमें भेजते हैं और हम उनमें से सही जवाबों को शामिल करते हैं। तो पहला सही जवाब जो है, मुझे पता है आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मैं कह रही हूं कि जवाब शामिल करेंगे और मैं कुछ और बात करने लग जाती हूं। नागेंद्र टक्कर ने पहला सही जवाब लिखकर भेजा, दूसरा अमित नरूला ने, तीसरा सही जवाब लिखा नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर से। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगला जो जवाब आता है वो प्रणव शिंदे ने लिखा सही, और इद्रिस सैफी भी बिल्कुल सही बताते हैं फिल्म का नाम। ललित कुमार बिल्कुल सही सही बताते हैं, अनिल सरोड़े हैं हमारे साथ, और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना। विकास दीक्षित का हमें मैसेज मिला है गुड़गांव से, आप भी बिल्कुल सही सही बताते हैं। और हमारे पास सही जवाब आता है बिप्लव का, आप क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से हमें जवाब लिखकर भेजते हैं। कुछ मिक्स रिस्पॉन्सेज भी हैं, जैसे किसी ने दीवाना लिखकर भेजा, हालांकि जो फिल्म है उसका नाम है फूल और कांटे। जी हाँ, और इसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम है सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी, आप शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजते हैं। डीबी राणा साहब नेहरू विहार से बिल्कुल सही बताते हैं। मृदुल शर्मा गाजियाबाद से हैं, मृदुल आपका बहुत बहुत स्वागत, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपका नाम अपने प्रोग्राम में लिया है। अगर आप नए लिसनर हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे एफएम गोल्ड परिवार में। जी हाँ, वैशाली बम हैं बड़ोदरा से हमारे साथ, बिल्कुल सही पहचानते हैं। और सही जवाब देने वालों में अजिंक्य बम का भी नाम आता है, मुझे लगता है आप एक ही परिवार से हैं, गिरीश बम का भी मैसेज आया है ना, ऐसा लगता है बड़ोदरा से ही हैं ये भी। सुदर्शन, अनीता, अच्छा इनका नाम शामिल हो गया है लेकिन आपने ईमेल दोबारा भेज दिया। तो फूल और कांटे ये जो है इस फिल्म को

प्यार तुम्ही से किया है प्रेमी आशिक आवारा, जिसे देख मेरा दिल धड़का। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म के गाने हैं। तो एक गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ इस फिल्म से, और यही उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गाना बहुत पसंद आने वाला है। कुमार सानू और अनुराधा।

इसी के साथ अपराजिता को दीजिए यहीं विदा। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, अपनों का और अपना खूब खास ख्याल रखिए। गर्मी है, पानी पीते रहें और मौसमी फल और सब्जियों का सेवन जरूर करें। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टेड आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की

0: संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम के कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The 3rd India-Nordic Summit was held in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, participated in the summit. With the Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, now in force, the summit aimed to deepen trade and investment ties between India and the Nordic region. Key areas of focus included technology and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi held bilateral meetings with his counterparts from Iceland, Finland and Denmark. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing his visits to UAE, the Netherlands and Sweden. From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the 5th and final leg of his Five Nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
0: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour. And the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Addressing the media in Jagdalpur, Mr. Shah said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Stressing the need for complete integrity and transparency in the conduct of the examination, Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. Meanwhile, the top court also dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines, as it observed that the right to live with dignity encompasses the right to move freely without the threat of harm from dog bite attacks. In West Bengal, Trinamool Congress candidate Jahangir Khan today announced the withdrawal of his nomination for the by-election to the Falta Assembly constituency to be held on Thursday. Mr. Khan in a statement said his decision was aimed at ensuring peace and development in the region and welcomed the special package announced for Falta by the new BJP-led government. With Khan out of the fray, the contest will now be among BJP candidate Debangshu Panda, Congress nominee Abdul Razak Mullah, and CPIM candidate Sambhunath Kurmi. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a 3-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In a social media post, Mr. Singh said the visit is aimed at further strengthening India-Republic of Korea defence cooperation and strategic partnership. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a post on social media post, cited an aide to Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. In cricket, the Indian squads for the Test and ODI series against Afghanistan were announced today with several notable changes across both formats. Wicketkeeper batter Rishabh Pant has been removed as vice-captain of the Test side and also dropped from the ODI squad. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the Test team to be led by Shubman Gill. And that is the end of this news bulletin.

स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है सदाबहार गीतों का और सदाबहार गीतों में आज आपके साथ है विभा। नमस्कार।

0: ये गीत हमने सुना फिल्म संजोग से लता दी और मुकेश साहब की आवाज में, और वो लिखे राजेंद्र कृष्ण ने। और अब सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना से एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: लागा गोरी गुजरी

सदाबहार गीतों में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार और 6:30 पर आप सुन सकेंगे मार्केट मंत्र। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्तलेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट सुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमति प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. आज के इस अंक में श्रोताओं देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: नमस्कार.
1: चर्चा शुरू करेंगे आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices end with losses. Sensex declines over 100 points. Nifty settles at 23,618. Major Asian stock markets close mixed and global crude oil prices fall.
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,618 पर बंद हुआ. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुख रहा और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे.

0: गिरावट दर्ज की गई।
1: Benchmark domestic equity indices reversed their intraday gains and ended with marginal losses today. Sensex dropped 114 points to close at 75,201, while Nifty dipped by 32 points to settle at 23,618. However, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. Mid-cap 100 jumped 0.9%, while the small-cap 100 surged almost 1.2%. Earlier, the markets opened marginally higher amid mixed global cues. Both the stock market indices traded with gains for most of the session, but in the final hour of trading, they turned negative, dragged down by profit booking.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक बैंक 2.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.7% और टाइटन के शेयरों में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 4.8%, एचसीएल टेक 2.7% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयरों में 2.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, focused IT rose over 3.2%, IT climbed 3.2%, and realty added over 1.3%. Among the top losers, the top 10 banks as well as private banks shed over 0.5%, services lost 0.3%, and metal dropped almost 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,590 companies advanced, 1,596 companies declined, and 166 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.25 पर चल रहा था। प्रकाश, आज हम जब बाजार को हमने जब देखना शुरू किया तो हमें लगा कि बाजार जो है सकारात्मक गति से है ना, सकारात्मक रुख में वो जा रहा है, लेकिन फिर हमने देखा कि थोड़ी सी गिरावट आई। तो इसे आप कैसे देखते हैं?
2: तो इसमें मार्केट का जो रुझान था, सुबह आपको पॉजिटिव दिखा, बाद में वो जो थोड़ा भी राइज है सोल्ड अप हो गया। तो जब सोल्ड अप हो गया तो ये समस्या जो है वो आज की, या ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ हुई है आज, ये एक पैटर्न सा बन गया है मार्केट में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट में, और वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और उसका जो असर है वो हर सेक्टर्स पर पड़ रहा है। चूंकि हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, फर्टिलाइजर का, गैस का, हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो अपना वाटरवेज है हॉर्मूज का, ये बंद हुआ पड़ा है
0: जी।
2: तो उसके चलते ये फ्लिप फ्लॉप है, और मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट को बीच बीच में कॉन्फिडेंस की थोड़ी उम्मीद नज़र आती है, लेकिन वो उम्मीद जो है वो तुरंत कोई ना कोई फिर कोई बयान आ जाता है या कोई ऐसा सिग्नल मिल जाता है। मार्केट इज डेस्परेट कि मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव दीजिए, लेकिन होता क्या है कि फिर वो एक उम्मीद बनती है और फिर उम्मीद जो है इवेपोरेट हो जाती है। तो ये समस्या चल रही है, तो वही समस्या आज भी दिखी। तो जो जो एक माहौल है बिकवाली का, तो कोई ना कोई खरीद भी रहा होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक सेंस ऑफ कोई पॉजिटिविटी मार्केट में है नहीं।
0: हमने कल देखा, कल के अगर हम आंकड़े देखें तो एफआईआई में थोड़ी खरीदारी हुई, तकरीबन 2,813 करोड़ रुपए से थोड़े ऊपर, और आज हम देख रहे हैं तो जितनी कल खरीदारी हुई उतना ही आज बाजार से जो है वो पैसा निकल गया है।
2: आज एफआईआई के आंकड़े आज तो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कल काफी पैसा डाल रहे थे, तो वहां भी ओवरबॉट हो रहा था, थोड़ा बहुत शफलिंग हो सकता हो रहा हो।
0: लेकिन ये निवेशकों के मन में एक डर का माहौल बनाता है कहीं ना कहीं. और क्या आपको लगता है कि आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसे समय में जो बाजार का जो एक जो एक जो, जो कहते हैं कि जो सेंटिमेंट है वो नकारात्मक दिशा में है, जो कि प्रभावित कर

0: है दूसरे तरीकों से कि बाजार में पैसा आप न लगाएं?
1: नहीं, पैसा ऐसा है कि कॉशियस रहना पड़ेगा आपको. आपको मालूम है ना भाई, जो चीज विश्व स्तर पे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है तो है, आपको तो देखना है ना. और हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है
0: जी,
1: वो ऐसा है कि हम लोग, हमारी एनर्जी जो हमारी ऊर्जा है उसमें हम लोग काफी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है. और जब इतना इम्पोर्ट डिपेंडेंट हमारी एनर्जी पे हम लोग एनर्जी के सेक्टर में हैं, तो हमारा फिर रुपया इम्पैक्ट होता है. जब रुपया इम्पैक्ट होता है तो उसका भी एक अपना असर पड़ता है. तो ये सारी चीजें मिल के जो है एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को के लिए चैलेंज हो जाती.
2: वी ऑल्सो सीइंग दैट देयर वाज शॉर्ट कवरिंग इन द आईटी इंडेक्स, देयर वाज बाइंग अ सपोर्ट, द निफ्टी आईटी वेंट अप बाय 3.23%. सो डिस्पाइट द प्रॉफिट बुकिंग, देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एज वी सॉ टुडे. एफआईआईज, यू आर राइट, दे वर नेट सेलर्स इन द मार्केट टुडे टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 2,500 crore rupees. डीआईआईज वर इन फैक्ट buying into the market 3,802 crore rupees. Those figures have come in now as far as the equity market is concerned. But just coming back to information technology, which has taken a beating despite good fourth quarterly results, we are seeing short covering, we are seeing buying in this counter right now. Will that continue?
1: I doubt, because what happened today, you're right, technically the sector must have been oversold. And there is some tailwind when it comes to rupee depreciation. It is supposed to be a tailwind for the IT sector because it's a net exporters. So exporters benefit whenever the rupee depreciates.
2: Also, the US dollar has strengthened today. One got the impression that when that happens, you know, then commodity prices tend to fall, especially when you're looking at
1: precious metals.
2: And for that matter, there is also a change in strategy for the hedge funds in terms of whether they buy into the equity market or they sell in the equity market.
1: Well, those factors would be at play. But when it comes to the Indian market, the challenges do remain. And well beyond the sectoral kind of outlook, we have to see. After all, today is IT, but the banking remains in challenge. You know, a lot of other sectors remain in challenge. So these things will continue, I'm afraid, till there is a ray of hope from the Middle East.
0: तो प्रकाश जी, ऐसी परिस्थिति में जब इतनी अनिश्चितता से बाजार घिरे हुए हैं और वैश्विक स्तर पर इतनी अनिश्चितताएं अलग अलग मोर्चों पर, आपने अर्जुन ने पूछा कि चैलेंजेस की बात उन्होंने की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमारे श्रोता और हमारे जो निवेशक हैं जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके जहन में भी ये सवाल रहता है कि इस समय पर ऐसे कौन से क्षेत्र विशेष हैं जहां पर हमें अपना पैसा लगाना चाहिए आपके लिहाज से?
1: देखिए, जो इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स की जब बात कर रहे हैं, तो उनको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए.
0: जी, किस तरीके से?
1: हाँ, तो एक तो आप म्यूचुअल फंड में बने रहिए.
0: जी,
1: म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, वो एक प्रोफेशनल होता है, वो बारीकियां जानता है, वो उस पर ट्रस्ट रखिए. दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि जो फिक्स्ड इनकम आपके जो होते हैं, जैसे बैंक का एफडी है, उसमें अब इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद नहीं है, तो वो भी आपको एक सेफ सिक्योर तरीका है, आप वहाँ भी जा सकते हैं. और फिर आप जब आप खरीदते हैं शेयर्स, तो हड़बड़ाहट में मत लीजिए. एक दिन में अगर चढ़ाव हो गया, मार्केट चढ़ गई, या थोड़ा सा होप लगने, तो आप भागिए मत. आप नज़र रखिए कि भाई मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा अपने आप को रोक के रखिए, थोड़ा अपने आप को कॉशियस होके चलिए. पैसा तो आपका है ना, तो आप उसका ध्यान रखिए, आप अपना उसका ध्यान से. कोई नहीं कहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, ये एक प्रॉब्लम आई है, चली भी जाएगी महीना दो महीना में. अभी वो ट्रंप साहब तो बोल रहे थे कि आई एम होपफुल, लेकिन वो जब होपफुल बोलते हैं तो आधे घंटे बाद कुछ और ही बयान आ जाता है, तो ये समस्या तो रहेगी. तो ये हमको सबको यूज टू होना पड़ेगा, और जब माहौल चैलेंजिंग है तो अपने आप को थोड़ा सा सावधान, और
0: पेशेंस के साथ,
1: पेशेंस भी, और अवेयर रहिए. आप अपने आप को सावधान रखिए, क्या हो रहा है, सूचित रखिए.
0: जी, आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अभी हमने घरेलू बाजार की बारीकियों के बारे में बातचीत की, और अब रुख करते हैं एशिया और यूरोपियन बाजार की तरफ.

0: अनुबंध वाला सोना 0.3% बढ़कर 1,59,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.8% घटकर 2,74,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रकाश जी आपसे सोने और चांदी के भाव पर।
1: सोना हम लोगों ने तो हम तो चाहते हैं सोने का इम्पोर्ट कम हो क्योंकि इम्पोर्ट में काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज का है, तो हम तो चाहते हैं कम हो क्योंकि चूंकि हमने कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाया इस पर। लेकिन अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी भी आज देखिए थोड़ा गिरा हुआ है सोना इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे यहाँ चढ़ा हुआ है बिकॉज डॉलर थोड़ा ऊपर गया है, तो यही सब वजह है।
2: The US dollar index is at 99 which has gone up and right now gold is trading at 4,520 US dollars and it's fallen by $38 as we speak. Silver is also trading at $75.70 per troy ounce and that's fallen by almost $2. Do you see the fall to continue?
1: Well, it depends. It's an interplay between bond yields in the US, inflation prospects there. So the feeling is that the inflationary pressure is very much there.
2: Do you think there'll be discipline in our market not to consume gold and silver?
1: Well, our market, we were never indisciplined anyways.
0: दिलचस्पी
1: है क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक भी तो सोना खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, तो दिलचस्पी तो है। आफ्टर ऑल प्रेशियस मेटल है, रिजर्व्स किसके पास अच्छे नहीं लगते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी कार्यक्रम में आने और मेरे और अर्जुन के तमाम सवालों के जवाब देने के।
1: मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।
2: And let's have a look at the closing headlines. Benchmark domestic stock market indices end with losses. Sensex declines over 100 points. Nifty settles at 23,618. Major Asian stock markets close mixed and global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ओर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और

0: तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल 1 दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said India and Nordic countries have decided to give their relations the form of Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the remarks while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark also took part in the media briefing. Prime Minister Modi said, with this green technology partnership, they will connect Iceland's expertise in geothermal and fisheries, Norway's expertise in blue economy and Arctic, and all Nordic countries' expertise in maritime and sustainability to India's skills to ensure a better future for the entire world.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said to provide energy and speed to India's relations with Nordic countries, they formed this format 8 years ago.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the 5th and final leg of his 5-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

0: is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour, and the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment, and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Addressing the media in Jagdalpur, Mr. Shah said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. In West Bengal, Trinamool Congress candidate Jahangir Khan today announced the withdrawal of his nomination for the by-election to the Falta Assembly constituency to be held on Thursday. Mr. Khan, in a statement, said his decision was aimed at ensuring peace and development in the region and welcomed the special package announced for Falta by the new BJP-led government. In a statement, the Trinamool Congress said Jahangir Khan's withdrawal was his personal decision and not that of the party. With Khan out of the fray, the contest will now be among BJP candidate Devangshu Panda, Congress nominee Abdul Razak Moella, and CPIM candidate Shambhunath Kurmi. In cricket, the Indian squads for the Test and ODI series against Afghanistan were announced today with several notable changes across both formats. Wicketkeeper batter Rishabh Pant has been removed as vice-captain of the Test side and also dropped from the ODI squad. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the Test team to be led by Shubman Gill. In IPL cricket, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl against Lucknow Super Giants in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit, scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. And that is the end of this news bulletin.
2: सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
2: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पांच नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
3: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक

0: बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं, और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए,
1: जी
0: इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था, और थर्ड समिट जो ऑस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े,
1: जी
0: सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, एआई को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में,
1: जी
0: क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है,
1: अंशु
0: तो
1: जी
0: कैसे
1: आप
0: आगे बढ़े,
1: को मैं यहां पर
0: फोकस रहा जी।
1: रोकना चाहूंगी, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेज बढ़ाएंगे।
1: सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है, इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
0: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहां एक सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन, हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, कहा हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। और यहां पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है, तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का वो इस प्रकार की रेजिलियंट, फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, बहुत बड़ा

0: विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है
1: बिल्कुल।
0: जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: सो
0: जी
1: अंशु जी,
0: सुनिए।
1: जो आप विस्तार की बात कर रही हैं, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा, जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है, उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ, उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो है वो की पार्टनर्स हैं। ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
2: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
1: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहां विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है।
0: तो अनु जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशंस है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट हैं ये समाप्त हो। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग करते हैं। यूएनएससी में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, इशू बेस्ड इंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और नॉर्डिक की तमाम देश जो हैं सोनू जी, वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
1: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
0: बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बनके उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो $19 बिलियन से $20 बिलियन तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक $30 बिलियन तक ले जाना करना चाहते हैं और इसमें एक किस प्रकार से 100 बिलियन USD का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा यदि हम देखें पूरे विश्व में तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए FDI बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से, देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहां पे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलकर साथ में होस्ट करें। तो यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
1: सो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलेटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में वो 4 गुना बढ़ा है और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। सो अब जो ये बायलेटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहां इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
0: निश्चित
1: संक्षेप में बताएं। जी
0: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहां है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं।
1: और निवेश कर रहे हैं। जी, सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहां की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
3: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सुन रहे हैं आप सांझ ढले और इस सुहानी शाम में मैं हूं आपके साथ विभा शुभ संध्या। सांझ ढले में हम वो गीत सुनते हैं जो बेशक पुराने हैं पर दिल के बेहद करीब हैं, या यूं कहें सुनहरे दौर के कुछ ऐसे गीत जो आज भी दिल को उतनी ही ताजगी देते हैं जितनी अपने समय में देते थे। तो शुरुआत करते हैं राज कपूर और माला सिन्हा अभिनीत साल 1958 की फिल्म परवरिश के गीत से, आवाज लता दी और मन्ना दा साहब की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

फिल्म रंगोली से ये गीत सुना आपने किशोरदा की आवाज में। सांझ चले सुन रहे हैं आप विभाग के साथ और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें है थोड़ी शरारत और थोड़ी सी मस्ती। ये गीत है साल 1955 की कॉमेडी फिल्म बाप रे बाप का, जिसमें किशोर कुमार का चुलबुला अंदाज और आशा जी की नटखट आवाज का एक परफेक्ट मेल है और इसका प्लेफुल डायलॉग स्टाइल इसे बेहद खास बनाता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सांझ ढले का आखिरी गीत उस फिल्म से जिसने इतिहास रचा। जी हाँ, साल 1958 की सुपरहिट मधुमति। इस फिल्म ने पुनर्जन्म की कहानी को एक नया आयाम दिया। संगीत सलिल चौधरी का, बोल शैलेंद्र के और लता मंगेशकर की दिलकश आवाज में पेश है इसी फिल्म का ये गीत।

0: सांझ रैले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ DND फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ DND फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी में जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राजमार्ग निर्माण में लाखों टन शहरी कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी का भी धन्यवाद दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
2: केंद्र की डबल इंजन सरकार ने मिलकर के जो एग्जाम्पल सेट करना होता है, दिल्ली आज उसका सर्वोच्च फायदा उठा रही है। और मैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए लाखों टन हमारा जो वेस्ट था वो आपने इन सड़कों के, इन हाईवेज के बनाने में उसका इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे दिल्ली शहर को हुआ। इस पूरे फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिल्ली बहुत सुंदर बनने वाली है।
1: श्री गडकरी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी।
3: नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली NCR का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। ये जो दिल्ली NCR में आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा।
1: राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित बनाने की दिशा में अग्रसर दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र शुरू करने जा रही है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिक अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और साथ ही नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। इसमें लोगों से यह पूछा गया है कि संग्रह केंद्र कहाँ कहाँ बनाए जाने चाहिए तथा इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
5: वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं, पीपल के नीचे रखाते हैं, तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूँ इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सके, बाद में जिन्हें रिसाइकिल फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए।
4: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मिशन अब केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत को आकार दे रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। श्री सूद ने कहा कि बैठक में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत की बढ़ते व्यापार व्यवस्था को समर्थन देने, संपर्क को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और निर्बाध आवाजाही मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में परिधान, निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष प्रेमल उदानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र कौशल विकास के उपायों को मजबूत करना, कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना और उद्योग की क्षमता के उपयोग में सुधार लाना था। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और श्रमिकों को सहायता देने वाले तंत्र के लिए सहयोगात्मक मॉडलों पर भी विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी करके नागरिक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए ताकि परीक्षा की

0: संधू ने विश्वविद्यालय को एक ऐसा स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की सलाह दी जो व्यवहारिक वित्तीय रूप से सक्षम और लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। उपराज्यपाल ने संस्थान से ये भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की गंभीर चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा संक्रमण, सीवेज प्रबंधन और यातायात जाम के लिए विशिष्ट और किफायती समाधान विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को तेज करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उपराज्यपाल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें औद्योगिक विकास, व्यापार संवर्धन, द्वारका में निवेश के अवसर और दिल्ली में कारोबार करने की सुगमता को मजबूत करने के उपाय शामिल रहे। श्री संधू ने आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के संबंध में श्री गोयल के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एरो सिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 4 परिसर का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार नई तकनीकों और हरित अवसंरचना मॉडल को समझने तथा अपनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परिसर में हाई इफिशियंसी डिजाइन और कार्बन ऑफसेट्स के जरिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है जहां प्रदूषण कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सरकार और दिल्ली परिवहन निगम की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ मुफ्त यात्रा की एक सुविधा ही नहीं है बल्कि ये महिलाओं को एक गरिमापूर्ण, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी भर में आवासीय कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं के लिए इन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना ने महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है और उन्हें सार्वजनिक बस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे यात्रा का माहौल ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन गया है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवली निगम।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया है। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि आयुष ग्रिड सरकार की दूरदर्शी डिजिटल पहल है। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम मुख्यालय से 8 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया। श्री वाही ने कहा कि इन मशीनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के अंतर्गत खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनें राजधानी की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 मंत्रालयों के सचिवों, महारजिस्ट्रार कार्यालय, जनगणना आयुक्त और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी दूसरा परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: आयोग ने कहा है कि सितंबर 2023 में जारी पहले परामर्श पर संबंधित अधिकारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आयोग ने लगातार प्रयासों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान की है। आयोग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित परामर्श जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में जेंडर आधारित विविधता को शामिल करना, जेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने संबंधी कानूनों की समीक्षा, समावेशी कानूनी ढांचा तैयार करना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल

0: और कार्यस्थल पर समावेशिता शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारतीय रेलवे ने विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में पहले 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस क्रम में शेड द्वारा सबसे तेज 100वां लोको कवच, 200वां लोको कवच और 300वां लोको कवच को पूरा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने आज एक बैठक के दौरान कार्रवाइयों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 दिनों में 125 निरीक्षण किए गए। राजधानी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ DND फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में NEET UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्डिक देशों ने अपने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल, प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी का रूप देने का निर्णय किया है। श्री मोदी ने आज ये बात नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। इस दौरान नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पर्यावरण अनुकूल भागीदारी से आइसलैंड की भूतापीय ऊर्जा और मत्स्य क्षेत्र में विशेषज्ञता, नॉर्वे की समुद्री अर्थव्यवस्था और आर्कटिक क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा सभी नॉर्डिक देशों की समुद्री और सतत विकास से जुड़ी विशेषज्ञता को भारतीय क्षमताओं से जोड़ा जाएगा ताकि पूरी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टियन फ्रॉस्टडेटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेते फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के लिए रोम के लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर

0: दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी का दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। उधर आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 83 रन बना लिए हैं। मैच की शुरुआत में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi said, India and Nordic countries have decided to give their relations the form of Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the remarks while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd Inter-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said, with this green technology partnership, they will connect Iceland's expertise in geothermal and fisheries, Norway's expertise in blue economy and Arctic, and all Nordic countries' expertise in maritime and sustainability to India's skills to ensure a better future for the entire world.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said, to provide energy and speed to India's relations with Nordic countries, they formed this format 8 years ago. He said, in past 10 years, their bilateral trade has increased about 4 times.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: From Oslo, Prime Minister Modi since left for Italy on the 5th and final leg of his 5-nation tour. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Stressing the need for complete integrity and transparency in the conduct of the examination, Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. In West Bengal, Trinamool Congress candidate Jahangir Khan today announced the withdrawal of his nomination for the by-election to the Phalta Assembly constituency.

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मधुरिमा में। आज आपकी मेजबान हूं मैं यानी विभा। नमस्कार। आज मधुरिमा में हम सुनेंगे दो अलग अलग रागों पर गीत। तो पहला गीत आधारित है भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बेहद लोकप्रिय और भावपूर्ण राग, राग भैरवी पर, जिसे अक्सर संगीत की माँ भी कहा जाता है। यूं तो ये सुबह का राग है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं साल 1971 की फिल्म तेरे मेरे सपने का गीत, जिसमें संगीतकार सचिन देव बर्मन ने राग भैरवी का प्रयोग कर इसे भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम बना दिया।

इसी कड़ी में आज का हमारा अगला गीत है साल 1964 के फिल्म संगम से, जो अपने भव्य चित्रण और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्रेम, दोस्ती और भावनाओं का सुंदर संगम देखने को मिलता है और इस गीत में राग भैरवी दिल की गहराइयों को छूने का काम करता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभा के साथ। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे दो अलग अलग रागों की और गीत सुनेंगे दो अलग अलग रागों पर, तो बारी है दूसरे राग की जो है राग पहाड़ी। राग पहाड़ी की जड़ें बिलावल थाट से जुड़ी मानी जाती हैं। ये हमें पहाड़ों की ठंडी हवाओं और लोक संगीत की सादगी का एहसास कराते हैं, और इसी एहसास को अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा अगला गीत जो है फिल्म आदमी और इंसान से, राग पहाड़ी पर आधारित।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स 10 के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स 10 के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में ड्रॉ खेलकर आगे बढ़े। और भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले आज जो खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि टेस्ट में केएल राहुल और एक दिवसीय फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है। हालांकि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो युवा यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ एम सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे को इस टीम में स्थान मिला है। एक दिवसीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को श्रृंखला में मौका दिया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा। अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली भी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज का हिस्सा है। मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैंप।
0: तो आईपीएल के इस रोमांच के बाद भारतीय टीम फिर क्रिकेट के मैदान में उतरेगी सफेद जर्सी और नीली जर्सी में, और सबकी नजरें स्वाभाविक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को देखने के लिए होंगी, और फैंस की भी यही दुआ होगी कि रोहित शर्मा जल्दी फिट हों और नीली जर्सी में मैदान पे चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएं। और अब रुक करते हैं आईपीएल क्रिकेट का, जहां जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में 1 विकेट खोकर 137 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है और वो चाहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द जीता जाए और किसी तरह प्लेऑफ की जो दौड़ है जिसमें एक ही स्थान बचा हुआ है उसमें अपनी दावेदारी कुछ और मजबूत की जाए। दूसरी तरफ लखनऊ है जो इस प्रतियोगिता के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि चाहेगी कि जाते जाते कुछ अच्छी विदाइयां और कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़े अच्छे आने वाले सीजन के लिए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल।
2: आईपीएल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद अपनी दो और प्लेऑफ की टीमें मिल गई हैं। कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खुद तो प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का किया, साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में स्थान फिक्स कर दिया। और इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन के 27, शिवम दुबे के 26, कार्तिक शर्मा के 32 और डेवाल्ड ब्रेविस के 44 रन का योगदान शामिल रहा। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 3 और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कल ईशान किशन मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 47 गेंद में 70 रन की पारी खेली। किशन का बखूबी साथ हेनरिक क्लासन ने दिया, जिन्होंने 26 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: कल जब हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी तो हमारे सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची, और जब कल का मैच खत्म हुआ चेपॉक स्टेडियम में तो एसआरएच खुद तो गई और अपने साथ ही गुजरात को भी प्लेऑफ में लेके चली गई है। अब स्थिति यह है कि प्लेऑफ के लिए इस गाड़ी में 4 में से 3 सीटें भर चुकी हैं, एक स्थान अभी भी खाली है, जिसके लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां पंजाब है जो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है, चेन्नई और दबे पांव से दिल्ली और कलकत्ता भी अभी उम्मीद और समीकरण बैठा रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी की 4थी सीट पे जगह बना करके अहमदाबाद तक का सफर तय किया जाए। और अब क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है, जहां कुआलालंपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने मिले जुले परिणामों के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का हाल।
3: महिला सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबले में अश्मिता चालहिया ने चीनी ताइपे की पा यूपो को 21-23, 21-16, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। वहीं आकर्षि कश्यप को दक्षिण कोरिया की पार्का उन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मिक्स डबल्स के क्वालिफायर मुकाबले में एन सिक्की रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने मलेशिया के दातू अनिफ इसाक दातू असरहा और क्लारिसा सेन को 21-15, 21-17 से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टूमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से मात देकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में कनाडा की क्रिस्टल लाई और जैकी डेंट ने अश्वनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी को परास्त करते हुए प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त कर दिया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज आज से हो गया है और कई क्वालिफायर्स खेले गए, और जो भारत के लिए सबसे अच्छा नतीजा रहा वो ये रहा कि भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत को कल भी कई अहम मुकाबले खेलने हैं, कई भारतीय स्टार खिलाड़ी कल कोर्ट पे उतरेंगे, और इन खिलाड़ियों की जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी विशेष। विशेष, ये बताइए कि कल भारत के लिए नजरें जो हैं किन खिलाड़ियों पर होने वाली हैं, खासकर सिंगल्स में।
4: जी शक्ति, कल कई भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। इनमें पुरुष सिंगल्स

0: में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, थरुण मनेपल्ली और किरण जॉर्ज पर नजरें होंगी। महिलाओं के सिंगल्स में कई युवा खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती रखेंगे। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, देविका सिहाग तथा ईशा रानी बरुआ, अस्मिता चालिहा, मानविका बंसोड़ और अन्य भारतीय खिलाड़ी से काफी उम्मीद होंगी।
1: जी बिल्कुल, अस्मिता ने आज क्वालिफायर्स के जरिए पहले राउंड में प्रवेश किया है। सिंगल्स का हाल रहा, डबल्स में कल भारत को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी?
0: देखिए, डबल्स में महिलाओं में पांडा बहनें अपना दमखम दिखाएंगी, वहीं मिक्स डबल्स में ऋत्विका, शिवानी गड्डे रोहन कपूर के साथ खेलती नजर आएंगी। जबकि एक नई जोड़ी भारत के लिए है, जिसमें अशित सूर्या और अमृता प्रथमेश अपनी चुनौती पेश करेंगे।
1: जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई युवा खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खासकर पांडा बहनें काफी संतुलन के साथ जो है उतरती हैं और एक बहुत अच्छा तालमेल दिखाई देता है, जहाँ पे श्वेत पर्णा और रूपर्णा पांडा जब भी कभी अपने मुकाबले खेलती हैं। और अब बैडमिंटन के बाद बात करते हैं शतरंज के कुछ दावपेचों की, जहाँ भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के पांचवें दौर में अमरीकी वेस्ली सॉ के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अपने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी है। वह 3.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। कीमर के बाद प्रज्ञानानंदा और नीदरलैंड के अनीश गिरी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और अब चेस के बाद रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में 6-3 से एक शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। जबकि भारत की अंडर 18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला टीमें दोनों ही कल अपने अपने सीरीज के जो हैं चौथे मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। और अब रुक करते हैं फीफा का, जहां फीफा धीरे धीरे वापस, फीफा का बुखार जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है फीफा विश्व कप की, कई टीमों ने अपने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं खिलाड़ियों के। इसी कड़ी में फीफा विश्व कप 2026 में नेमार को ब्राजील की टीम में शामिल किया गया है। नेमार 2.5 साल बाद अपनी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी की लोकप्रियता का कोई मतलब बैरियर नहीं है। शानदार खिलाड़ी जब भी उतरते हैं उनको, उनसे उम्मीदें होती हैं दर्शकों को, उनके फैंस को। और अब तक 128 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 79 गोल उन्होंने किए हैं। तो कोई दो राय नहीं कि एक बहुत शानदार खिलाड़ी वापसी करता हुआ फीफा जैसी बड़ी प्रतियोगिता में नजर आएगा। उधर प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल FC कल बर्नेल FC पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में ऊपर आ गया है। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ड्स ने किया। इंडियन ओपन सफरिंग टूर्नामेंट का आयोजन 29 से 31 मई तक मैंगलुरु में होगा। ये प्रतियोगिता जापान में इस साल के आखिरी में होने वाले एशियाई खेलों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा मंच मिलेगा, जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम जामा पहना सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारतीय सफरिंग महासंघ SFI के तत्वाधान में किया जाएगा। और ISL की बात कर लेते हैं, जहां ISL फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहम्मदन FC को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स FC ने गोवा FC को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद में SRT 10 अल्टीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये सेंटर देश में खेल संस्कृति बढ़ाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
2: SRT 10 और अल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहां पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन।
1: तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सचिन ने कही कि भारत अब एक स्पोर्ट्स लविंग देश से एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ खेल को देखना ही नहीं, उसमें कैसे बढ़ सकते हैं उसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। कई खेल जहाँ भारत अब तक प्रतिभागिता नहीं करता था, वहां बढ़ रहा है और लगातार अच्छे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। सचिन ने युवा पीढ़ी को सीख देते हुए ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी खेलने जाओ तो सफल हो जाओ, लेकिन हर बार आपको नई तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है।
3: We want our children to be successful, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी and above all बच्चों को freedom देना पड़ेगा। हर बार आप खेलने जाओगे तो successful नहीं रहोगे, मगर हर बार तैयारी करके जा सकते हो। Okay? Success is never guaranteed, but your preparation and योर डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि टू टिक ऑल दोज बॉक्सेस।

0: वो तुम्हारे हाथ में है।
1: जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे, और ये शानदार सेंटर अब युवाओं को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और सचिन की बात की तो बात करते हैं उनके एक फैन की भी, कि साहिल उद्यानवी का शेर है कि हजार बर्क गिरे आंधियां उठें वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन की कहानी पर जो अब सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है, बिना हाथों के अपना भविष्य लिखने वाले इस खिलाड़ी की फिल्म अनआर्म्ड शोल्डर की घोषणा कांस फिल्म फेस्टिवल में कर दी गई है। अपने सामने खड़ी हर चुनौती को अपने मजबूत इरादों से बौना साबित कर देने वाला एक खिलाड़ी आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। आइए सुनते हैं अपने फिल्म की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी ने क्या कहा और क्या अपने अनुभव साझा किए।
2: मैं बहुत मुश्किलात उठाने पड़े जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा रहा, अपने आप को मजबूत किया, और कभी मैं ये नहीं सोचा था मैं यहाँ तक इन मुकाम पर पहुँचूं, लेकिन ये कभी मैंने जहन में नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो मेहनत है, वो सपना है जो मैंने अपने जहन में लेकर ये किया कि मैं एक दिन, ऐसा भी एक दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, मैं क्रिकेटर बनूँ। जब मैंने सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी और सचिन सर ने मुझे मतलब इतने तैयारी की, तो मैं वो बयान कैसे करूं। और इस फिल्म
1: जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा लम्हा था उनके लिए। श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के

0: स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण

0: उपलब्धियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में

0: जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेट

0: मंथन।
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
2: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में और 40% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
1: जी।
2: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
1: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
2: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए।

0: कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
1: शिशिर जी, अभी आपने जैम की बात की, तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर लें, MSME संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से MSME इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
0: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि MSME जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए, और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा क्या है, और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर MSME को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है, और इन MSME को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
1: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और MSME को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है, और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलके $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से MSME दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
0: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, GST रजिस्ट्रेशन को लेकर के। GST में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड SSE हैं। अब अगर आप प्री GST रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी, अब 1,60,00,000 है। और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। GST की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए, और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी GST के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास GST का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका GSTN है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा GSTN है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं
1: आता, आसानी होती है।
0: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको GST का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप, अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं। ये तो वो संख्या है जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई

0: देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है।
1: जी
0: अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
0: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का 2 बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का। अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं? अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास है जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दे। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका

0: मुद्दा भी मिला, वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% एमएसएमई का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: मंथन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने के लिए फैसला लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की नई पहलों की तलाश करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकोई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2021-31 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबिस से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में विशेष पैकेज की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स

0: Northern India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. In IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 221 runs for Rajasthan Royals at Sawai Man Singh Stadium, Jaipur, chasing the target. Rajasthan Royals were 56 for nil in 5 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 2% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय के बाहर हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने इबोला वायरस के तेजी से फैलने पर चिंता व्यक्त की। मृतकों की संख्या 131 हुई। और मनोज कुमार शर्मा को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज देर रात इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा

0: की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। दक्षिण अफ्रीका स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि रूसी राष्ट्रपति 12 से 13 सितंबर तक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इबोला वायरस का प्रकोप कई सप्ताह पहले शुरू हुआ था। मंत्रालय के अनुसार इस प्रकोप के कारण अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: कांगो के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर काम्बा ने कहा कि इस बात की जांच जारी है कि क्या मौतें और 513 संदिग्ध मामले वास्तव में इस बीमारी से जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने प्रकोप के तेजी से फैलने और बढ़ते पैमानों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि एजेंसी की आपातकालीन समिति आज बाद में बैठक करेगी। अब तक बुनिया, उत्तरी कीवू, विद्रोही नियंत्रित राजधानी गोमा, मोंग बवुलु, बुटेम्बो और नियाकुंडे में मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने इस कोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निगरानी बढ़ने के साथ मामलों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर हैं। यह यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेचिंग दौरे के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद हो रही है। क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीरिया में आज दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय भवन के बाहर बम विस्फोट में एक सैनिक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैनिकों ने दमिश्क के मध्य बाबशर्की जिले में एक बम बरामद किया था जिससे विस्फोट करने की तैयारी थी। जब वे इसे निष्क्रिय करने के प्रयास कर रहे थे तभी पास ही एक कार में विस्फोट हो गया। मंत्रालय ने बताया कि विस्फोट रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक भवन के बाहर हुआ लेकिन उसने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। किसी ने भी तत्काल इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बल घटना की जांच कर रहे हैं। लेबनान ने कहा है कि हिजबुल्ला के साथ जारी संघर्ष में इसराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार कल तक 3,020 लोग मारे जा चुके थे जो युद्ध विराम के बावजूद हिंसा में एक और बड़ी वृद्धि का संकेत है। 2 मार्च को ईरान समर्थित शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद संघर्ष तेज हो गया है क्योंकि इसराइल ने कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता को मार डाला था। नेपाल की संसदीय सुनवाई समिति PHC ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा को उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। परंपरागत रूप से नेपाल की न्यायपालिका में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा रही है जिसे संस्थागत स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर होने के बावजूद डॉ शर्मा को वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल, कुमार रेग्मी और हरिप्रसाद फोयाल से ऊपर रखते हुए इस पद के लिए चुना गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और

0: डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय के बाहर हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने इबोला वायरस के तेजी से फैलने पर चिंता व्यक्त की। मृतकों की संख्या 131 हुई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. In Damascus, one killed and a dozen injured in bomb blast outside Syria's defense ministry. WHO Director General Tedros Ghebreyesus expresses concern over rapid spread of Ebola outbreak as death toll rises to 131. And Manoj Kumar Sharma appointed as new Chief Justice of Nepal Supreme Court. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said in past 10 years, bilateral trade between India and Nordic countries has increased about 4 times.
2: 10 वर्षों में हमारा bilateral trade लगभग 4 गुना बढ़ा है। Nordic देशों के investment fund भी भारत की rapid growth में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक Nordic देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते trade and investment भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said, the two sides have a clear and a united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने हर श्रृंगार। आज के हर श्रृंगार में अर्पना आपके साथ है। स्वागत करती हूँ आप सभी का। वक्त हो गया है 10:31 और 15 सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हर श्रृंगार बाजीगर फिल्म के गीत के साथ। आवाज है आशा जी की और साथ दिया है विनोद राठौर ने। आप सभी का फिर से स्वागत करती है अर्पना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किताबों में और चेहरे पर क्या लिखा होता है ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जब आंखों में झांक कर देखते हैं तो आंखें झूठ बोल नहीं सकती और सच निकल ही आता है। अब देखिए ना, जब से देखा इन आंखों में झांक कर कोई और आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए हैं दीवाने कि अब कोई और अपना सा नहीं लगता। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज होगी, बरसात फिल्म से गीत होगा।

प्यार दोस्त, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस नहीं बल्कि खूबसूरती से व्यक्त भी किया जाता है। जब दिल में किसी के लिए खास जगह बन जाए तो लफ्ज खुद ब खुद शायरी का रूप ले लेते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज और साथ है के एस चित्रा का, फिल्म का नाम है लव।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म

0: वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वक्त हो गया है 10:50 और 4 सेकंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, हर श्रृंगार, और आज आपके साथ है अर्पना। तो चलिए, अगला गीत भी है उसके बारे में आपको बता दूं, अलका याग्निक की आवाज है, साथ है कुमार सानू का, फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

आती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब भी तेरे बिना रात होती है, दीवारों से अक्सर बात होती है, सन्नाटा पूछता है हाल हमारा, हमी से और बस तेरे नाम से ही हमारी बात की शुरुआत होती है। लता जी की आवाज में अगला गीत होगा शक्ति फिल्म से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और 11:10 पर होगा गीत मेरे मनमीत, संग्रहूंगी आपके मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए और 11 बजे समाचार। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है 11:11 और 5 सेकेंड। तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध गीत के साथ। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म चोरी चोरी से गीत होगा और इसके बाद आप सुनेंगे फिल्म दिल्ली का ठग से गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में। फिल्म में अभिनय किया था किशोर कुमार और नूतन ने। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गीत मेरे मनमीत में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। आने वाले दो गीतों के बारे में आपको बता दूं, गीता दत्त की आवाज में अगला गीत आप सुनेंगे मदन मोहन का संगीत है, फिल्म का नाम है भाई भाई, और इसके बाद होगा फिल्म पेइंग गेस्ट से गीत, आवाज है किशोर कुमार की और

गीत एसडी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। तो इन दो गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर। और वक्त हो गया है 11:20 और 9 सेकेंड।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम है दिलेख मंदिर और संगीत है शंकर जय किशन का। वक्त हो गया है 11:35 और 8 सेकंड। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत, आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड है 100.1 MHz पर।

मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई कव्वाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी हुई लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में आपने सुनी मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, और आप सुन रहे हैं

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत और आज आपके साथ है अर्पना। अगले जो दो गीत आने वाले हैं वो दोनों गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और दोनों का संगीत आर डी बर्मन का है। पहला गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है अलग अलग। और इसके बाद जो दूसरा गीत आएगा वो है शब्बीर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है बेताब। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। ये दोनों गीत जैसे मैंने बताया आनंद बख्शी के लिखे हुए हैं और संगीत आर डी बर्मन साहब का है।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मनमीत का आज का ये आखिरी गीत होगा फिल्म नसीब से। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ संगीत गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। हंसते मुस्कुराते रहिएगा और आकाशवाणी के संग रहिएगा हमेशा। अर्पणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और गीत के बाद समाचार एफएम गोल्ड पर जरूर सुनिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार

0: डॉ राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की भी कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। उधर आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 3 देवियां, आवाज है किशोर कुमार की।

चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ ज़्यादा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, अपने होने का ही अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। कौन समझेगा, कौन समझेगा यहाँ सच की तह तक जाकर, हम तो बस बीच के किरदार किए जाते हैं। दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अगला गीत फिल्म का नाम है जिद्दी, आवाज है लता मंगेशकर की।

कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बत में कब इतना हिसाब होता है। कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना, बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना। उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। उसे पता ही नहीं कि प्यार की बाजी जो हार जाए वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना। उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं, जयती।

कहते हैं प्रेम को लिखना, प्रेम को कहना और प्रेम को बयां करना इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। प्रेम को लेकर किसी ने कहा कि प्रेम कोई शब्द नहीं जिसे लिख पाओगे, प्रेम कोई अर्थ नहीं जिसे समझ पाओगे, ये तो धड़कनों में बहता स्पंदन का सफर है, बह गए तो बस बहते चले जाओगे। और प्रेम में परिपक्वता तभी आती है जब हम ये स्वीकार कर लें कि हर संबंध पर अधिकार नहीं होता, प्रेम की स्वतंत्र वृत्ति ही उसकी खूबी है। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। यहाँ छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, आवाज है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो

0: थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार और उज्जवल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo, yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड दैट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

दिल में ना कोई गुलाब रखे, मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। रिश्तों की रोशनी को ना बाजार बना दे, रिश्तों की रोशनी को ना बाजार बना दे, हर लफ्ज अपने अर्थ का।

सच्चा हिसाब रखे। मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे। कागज पे जो लिखा है वो अर्पण सा शुद्ध हो, कागज पे जो लिखा है वो अर्पण सा शुद्ध हो, हर पंक्ति अपने प्रेम का निर्मल खिताब रखे, हर पंक्ति अपने प्रेम का निर्मल खिताब रखे। मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, और नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। अगला गीत, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने की इस महफिल में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाज है लता मंगेशकर की।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। वक्त नदियों को उछाले की उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले की उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हमराज, आवाज है महेंद्र कपूर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।

0: परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन्स गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड that the relations between India and Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand. No compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी, कुछ कही कुछ अनकही, यादों का पुल जो पाट देता है हमारे बीच की गहरी अनंत खाई जैसी दूरियों को। उस पुल के किनारे उग आई हैं मेरी बातें, उस पुल के किनारे उग आई हैं हमारी बातें, फूलों की तरह जिनकी खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें, खुशबुओं की तरह से खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें। ये पुल एक आश्वासन है कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि यादों के पुल टूटा नहीं करते, यादों के पुल टूटा नहीं करते। अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धर्म कांटा, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। वो नाम जो धड़कनों में उतर गया था चुपके, अजीब है कि अब उसका ख्याल नहीं आता। मैं अपने ही साये से बात करती रहती हूँ, मैं अपने ही साये से बात करती रहती हूँ, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता। कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है लोफर, आवाज है आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital, Rome, on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sudhir Gupta has been appointed as the chairperson of the committee. The panel comprises 21 members from the Lok Sabha and 9 members from the Rajya Sabha. Members from the lower house include Kamaljit Sehrawat,

मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। बहुत से गीत और उनकी पंक्तियाँ दिल में जाके बस जाती हैं। ये गीत आपने सुना प्रोफेसर फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। मोहब्बत की तड़प ये कह रही है ना तड़पाओ, और सताने को अब तो विराम दो।

0: सच्ची मोहब्बत में वाकई ही असर होता है जो एक दूसरे की बात दोनों के दिलों तक पहुंच जाती है। खैर आपको बता दूं कि ये गीत राजकुमार फिल्म से था, हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे आराधना फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों पे निखार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और युगल गीत आप सुन रहे हैं हम रही कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला गीत तेरे मेरे सपने फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। नीरज के ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है SD बर्मन ने।

दोस्तों, कुछ गीत तो वाक्य में ही हमारे मन को मोह लेने वाले होते हैं। जी चाहता है जब भी सुने साथ साथ गुनगुनाते भी रहें।

हरियाली और रास्ता है। इस फिल्म से आपने अभी गीत सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे नया दौर फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम रही कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गीत अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

जहाँ लगन लग जाती है वहाँ छूटती नहीं है। ये गीत आपने सुना काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, आप पहचान जाएंगे इसकी धुन सुनकर और इस गीत में अपनी बात को कहने का अंदाज ही अलग है। लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ गीत है और फिल्म का नाम है चोरी चोरी। शैलेंद्र की शब्द रचना है और तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने।

आपके पीछा तो वही करेगा ना जो आपका अपना होगा। अरे कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ अनाड़ी फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र की बोल है, शंकर जय की शंकर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations.

अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए फिर से मेरा नमस्कार।

ये था किशोर कुमार का गाया हुआ मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ चिराग फिल्म से, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है और मजरू सुल्तानपुरी ने शब्दों में पिरोया, धुन बनाई है मदन मोहन।

0: फूल बने अंगारे, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना।

वाकई में ही दोस्तों, हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हों तब भी लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर बुरा रास्ता मिल जाए तब तो मालूम ही है कि लोग कुछ कहेंगे। इसलिए जहां आपको लगे, आपका दिल माने कि आप सही हैं, वही काम कीजिए। ये गीत था अमर प्रेम फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी की रचना थी और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी का गीत है और रोशन का संगीत।

अब अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गीता दत्त की आवाज में। भाई भाई फिल्म से राजेंद्र कुमार ने गीत को लिखा है, धुन तैयार की है मदन मोहन ने। दोस्तों बहुत गीत ऐसे लगते हैं बहुत समय बाद सुन रहे हैं लेकिन आज भी दिलो दिमाग में तरोताजा रहते।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों, दोस्ती में ही ये उम्मीद की जाती है कि हमारा साथ वक्त पर कोई ज़रूर देगा। बहुत कम लोगों में से आप किसी पर अपना हक जता सकते हैं, वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं। जुर्म फिल्म से ये गीत था, साधना सरगम और कुमार सानू का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गुमराह फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी की रचना है और रवि का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था मेरे महबूब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफी। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और जयदेव का संगीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा की आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। India and the Nordic nations.

दोस्तों समय हुआ है 5:11 और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहाने।